नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉ श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं।

0: गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत भूमि यह वह पवित्र धरती है जहां ऋषि मुनियों ने कठोर तप, साधना और ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के उच्चतम आदर्श स्थापित किए। इस भूमि पर सत्य, अहिंसा, त्याग और धर्म के मूल्यों का जन्म हुआ, जिसने पूरे विश्व को

भगवान शब्दों से अधिक भावनाओं को समझते हैं, इसलिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य उन तक पहुंचती है। यह आवश्यक नहीं कि हर प्रार्थना तुरंत पूरी हो, लेकिन भगवान हमेशा अपने भक्त के लिए उचित और सही मार्ग का चयन करते हैं।

जो समय ईश्वर के स्मरण और अच्छे कार्यों के बिना बीत जाता है वह व्यर्थ चला जाता है। संत कबीर कहते हैं, हमें अपने जीवन के हर पल का सही उपयोग करना चाहिए और भक्ति व अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। आइए सुने संत कबीर की ये रचना।

राधा रमन गिरधारी, यह नाम सुनते ही मन में प्रेम, माधुर्य और भक्ति की एक दिव्य लहर उठती है। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि वह अनुभूति है जिसमें राधा का निष्कलंक प्रेम और श्री कृष्ण की करुणा एक साथ झलकती है। आइए हम इस पावन नाम का स्मरण करें।

0: तो श्रोताओं, ये था आज का वंदना कार्यक्रम। आलेख एवं संकलन निहारिका श्रीवास्तव का था। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख रोमी सेन का, वाचक स्वर मनीष सोनी के।
1: अहंकार और विनम्रता इंसान के अंदर चलने वाली दो सबसे पुरानी लड़ाइयां हैं। एक हमें ऊपर उठाता हुआ महसूस कराता है तो दूसरा हमें जमीन से जोड़े रखता है। मजेदार बात यह है कि दोनों का ताल्लुक मैं से है, पर एक मैं ही सब कुछ हूँ ये कहता है और दूसरा मैं कुछ भी नहीं कहकर सब कुछ पा लेता है। अहंकार वो दीवार है जो हमने अपने और सच्चाई के बीच खड़ी कर ली है। ये वो आवाज है जो हर वक्त कान में कहती है कि तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे बेहतर हो। अहंकार वो दीवार है जो हमने अपने और सच्चाई के बीच खड़ी कर ली। ये वो आवाज है जो हर वक्त कान में कहती है कि तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे बेहतर और तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। अहंकार में इंसान खुद को केंद्र मान लेता है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी सोच, उसके फायदे, उसकी इज्जत के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। समस्या ये नहीं कि हमें खुद पर गर्व है, समस्या तब होती है जब गर्व कब अंधेपन में बदल जाए पता ही नहीं चलता। अहंकार आंख का वो मोतियाबिंद है जिससे हमें सिर्फ अपनी बड़ाई दिखती है, दूसरों की अच्छाई धुंधली हो जाती है। रावण ज्ञानी था, बलशाली था, शिव भक्त था, कमी सिर्फ एक थी, मैं। वो मैं इतना बड़ा हो गया कि पूरी लंका जला बैठा। इतिहास में जितने भी बड़े पतन हुए उनके पीछे तलवार से ज्यादा अहंकार की धार थी। अहंकार जन्म कैसे लेता है, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा है, ये सोच ही बीज बो देती है। दो लोग वाह वाह कर भी दे तो तीसरे से उम्मीद बांध ही लेते हैं कहीं मैं कमतर ना पड़ जाऊं, इसलिए ज्यादा दिखने का नाटक। जब हमें पता ही ना हो कि हम हैं कौन तो पद, पैसा, रूप इन सबको ही मैं मान लेते हैं। अहंकारी इंसान की सबसे बड़ी पहचान वो सुनता नहीं है, वो सिर्फ जवाब देने के लिए रुकता है। उसके लिए हर बातचीत जंग है जिसे जीतना है। सलाह उसे अपमान लगती है और आलोचना दुश्मनी। धीरे धीरे लोग उससे कतराने लगते हैं और वो इसे अपनी रौब समझकर और अकड़ जाता है। विनम्रता क्या है? विनम्रता कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो कहती है मुझे सब पता नहीं और ये ठीक है। खाली घड़ा ही तो छलकता है, भरा हुआ घड़ा हमेशा शांत रहता है, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह सदाबहार। विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यही है कि सच को स्वीकार करना कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, कि सूरज के सामने दिया अपनी लौ पर घमंड नहीं करता। हनुमान जी का उदाहरण देखिए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, चाहे तो पल में लंका राख कर दें, पर जब श्री राम के सामने आते हैं तो कहते हैं मैं सेवक हूँ। ये झुकना था, गिरना नहीं, और इसी झुकने ने उन्हें अमर कर दिया। अहंकारी कहता है मुझे पता है, विनम्र पूछता है और क्या सीख सकता हूँ। अहंकारी बहाना ढूंढता है, ट्रैफिक था, सिस्टम खराब है, और विनम्रता जिम्मेदारी लेती है। अहंकार स्टेज पर अकेला खड़ा होना चाहता है, विनम्रता माइक उन सबको देती है जिनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँची। अहंकार महंगा सौदा है,

0: की ही क्यों ना हो, विनम्रता दरवाजे खोलती है। कृष्ण सुदामा के पैर धोते हैं, यह विनम्रता है, पर महाभारत में अधर्म के खिलाफ शस्त्र भी उठाते हैं, यह स्वाभिमान है। शमशान जाकर सोचो, जो आज अकड़ रहे हैं कल यहां मिट्टी होंगे और क्या साथ लेकर जाएंगे। फर्क सिर्फ नजरिए का है, पर नतीजा जमीन आसमान का। पेड़ कितना ही फलता है उतना ही ज्यादा झुकता है, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है आंधी में सबसे पहले। अहंकार शोर है और विनम्रता संगीत। शोर ध्यान खींचता है 2 मिनट, संगीत याद रहता है ता उम्र। चुनाव तुम्हारा है, तुम शोर बनना चाहते हो या संगीत। और हाँ, यदि ये चिंतन सुनकर आपको लगे कि ये तो मेरे बारे में नहीं, किसी दूसरे के बारे में है, तो वही अहंकार ने फिर दस्तक दे दी है साहब, इसलिए मुस्कुराओ, उसे पहचानो और दरवाजा बंद कर दो। विनम्रता की शुरुआत वहीं से हो जाएगी।
1: अहंकार और विनम्रता, इस विषय पर केंद्रित था आज का चिंतन कार्यक्रम। आलेख रोमी सेन, वाचक मनीष सोनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। खेती की बातें में लीजिए अब सुनिए टमाटर की उन्नत खेती पर विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी। जानकारी का वाचन कर रही हैं तुलसा दरगैया।
2: किसान भाई नोनी, अभी जुलाई को महीनो चली रो न, इना मौसम में अपना किसान भाई सब्जी भाजी की भी खेती करत, तो टमाटर की खेती का बारे में आज हम बात करांगा। किसान भाई नोनी, टमाटर की सफल खेती का लेना अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाए, जिसको पीएच मान 6 से 7 का बीच हुए, तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा रहे। एक कारण हमको उन्नत किस्मों को चुनाव करा, न 25 से 30 दिन की स्वस्थ पौधा तैयार करा, न एक काम हम टपक सिंचाई ड्रिप या मल्चिंग को उपयोग भी करी सका। अब एक काम बात करा उन्नत किस्म न की, तो अपना क्षेत्र का मौसम न बाजार की मांग का अनुसार अपन संकर किस्म को चुनाव करी सका। खेत की तैयारी का लेना, अपन खेत की 3 से 4 बार अच्छी जुताई करी न मिट्टी का भुरभुरी बनाई लेवा। अंतिम जुताई से पहले प्रति एकड़ 10 से 15 टन सड़ेल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अच्छी तरह मिले देवा। बरसात का मौसम में पानी भराव से बचना का लेना, 1 फीट ऊंची अपन क्यारी न बनावा। नर्सरी में 25 से 30 दिन पुराना पौधा तैयार होने का बाद ओखर मुख्य खेत में हम रोपी देवा। न 2 पंक्ति न का बीच करीब 4 से 5 फीट, न पौधा न का बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी रखा। खरपतवार नियंत्रण ने नमी बने न रखना का लेना मल्चिंग पेपर को उपयोग करा। टपक सिंचाई का माध्यम से पानी न तरल उर्वरक देनु फायदामंद रहे। किसान भाई नोनी, अधिक उपज न अच्छी गुणवत्ता वाले फल का लेना मचान या सुतली विधि से पौधा न का सहारा दई न अपन बांधनु जरूरी छे। अब एक काम, कीट व्याधि न को भी प्रकोप हो, कीट न की न रोग न की बात करा, तो झुलसा रोग से बचाव का लेना 8 से 10 दिन का अंतराल पर मेंकोजेब को छिड़काव करा। सफेद मक्खी न दूसरा रस चूसक कीट न का नियंत्रण का लेना इमिडा क्लोरोपीट को उपयोग करा। टमाटर का बीज न का सीधा खेत में नहीं बोते हुआ हम पहले नर्सरी में बोवाएं, कि जब पौधा 4 से 5 सप्ताह यानी कि 10 से 15 सेंटीमीटर का हुई जाए तब इनका हम खेत में प्रत्यारोपित कराए। न नर्सरी तैयार करते समय टमाटर नर्सरी का लेना 10 से 15 सेंटीमीटर उठेल क्यारी न हमको बनानी चाहिए, जेका सिकाई होगा कि क्यारी न जो ज्यादा सी आवश्यकता से ज्यादा पानी रहेगा वो जमा नहीं होने को। क्यारी न कोई भी दशा में 90 से 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 गज या 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी नहीं हुए, नहीं तो निंदाई गुड़ाई बीज बुवाई न सिंचाई करने में अपन का परेशानी आवेगा। नर्सरी से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज बोवा न फिर उनका मट्टी से ढकी देवा। टमाटर का पौधा न की लंबाई 5 मीटर होनी चाहिए, 1 एकड़ का लेना 80-25 क्यारी न की जरूरत पड़े। बीज न की बुवाई का पहला 8 से 10 ग्राम कार्बोफुरान 3 g प्रति वर्ग मीटर का हिसाब से जमीन में मिलावा, न 2 ग्राम केप्टान प्रति किलोग्राम बीज का हिसाब से उपचारित करी न बुवाई करा। बीज न का 5 से 7 सेंटीमीटर फासला पर कतार न बोवा, न जसो बीज न को अंकुरण हुए ओकाम केप्टान का 0.2% घोल से क्यारी न को उपचार करा, न नर्सरी में पौधा की फवारा से सिंचाई करा। बीज की मात्रा की बात करा तो एका लेना 1 एकड़ भूमि में बुआई का लेना अंकुरण तैयार करना का लेना करीब 100 ग्राम बीज न को हम उपयोग करी सका। फसल का मृदा जनित रोग न कीट न से बचावना का लेना बुआई से पहले हम बीज का उपचार थायरम 3 ग्राम या कार्बेंडाजिम 3 ग्राम बीज का साथ करा। रासायनिक उपचार का बाद बीज न का ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करा, एक छाव में रखा ने एक ही बुवाई का लेना उपयोग करा। अब कदी बात करा खाद न रासायनिक उर्वरक की, तो टमाटर की खेती का लेना खेत की तैयारी सही समय पर अच्छी तरह से हुई जाए

0: गोबर की खाद 10 टन प्रति एकड़ डाला न मट्टी में अच्छी तरह मिलाई देवा, नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 25 किलो न पोटास 25 किलो की मात्रा प्रति एकड़ में अपन उपयोग करा। दूसरी उर्वरक न पोषक तत्व न अपन मिट्टी परीक्षण का आधार पर करा। भाई बहनों इन्हीं सब बातों को ध्यान रखेगा तो हमारी टमाटर की फसल अच्छी आओगा, नहीं को हमको भरपूर उत्पादन भी प्राप्त होएगा। किसान भाई बहनों हमारो आपसे यज कहनु थो।
1: टमाटर की उन्नत खेती, इस विषय में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी का वाचन कर रही थी तुलसा दरगैया, कार्यक्रम खेती की बातें में। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं अब वक्त है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग सुनने का।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर आप श्रोताओं के पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे कार्यक्रम आपका पत्र में। श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगे कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश। कार्यक्रम में आपके मेल का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी नोट करें। हमारा मेल आईडी है आपका पत्र इंदौर @gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, apkapatraindore@gmail.com। कंपेयर्ड फिल्म संगीत 8:30 से प्रसारित होगा। लोक संगीत में चंद्र प्रकाश सोनवे के गाये लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 9 से। शाम 6:45 पर लोक संगीत में हम आपको बुंदू खां और साथियों के गाये राजस्थानी लोकगीत सुनवाएंगे। सुगम संगीत में पंकज उदास की गायी गजलों का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15 पर। सुगम संगीत में शाम 6:30 आज आबिदा परवीन की गायी रचनाएं सुनवाई जाएगी। सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन होगा दिन में 10:05 से। 10:05 से 11 के मध्य होने वाले इस कार्यक्रम में आप फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का स्टडी कोड 0731। आइए अब आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 11 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं दोपहर 12, दोपहर 2 और 2:30 से। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। 1:30 पर आप लोक संगीत सुनेंगे और 1:45 का समय होगा सुगम संगीत का। और आइए श्रोताओं, आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दे दें। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 युवाणी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में आज का मुख्य आकर्षण है एक ही फिल्म से क्रम। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत आप शाम 5:45, रात्रि 8:30 और चित्रगीत में रात 9:15 से सुन सकते हैं। शाम 6 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना जा सकता है। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में आज कुत्ता काटने व जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें इस विषय पर सीमा चावरिया से प्रियंका पटवारी की बातचीत कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। साथ ही कार्यक्रम में घरेलू व्यंजन और घरेलू नुस्खे भी होंगे और लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा आज रात्रि 8 से सुनी जा सकती है। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर होगा सुर्खियों में कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 चर्चा का विषय है कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 आप

सुनेंगे नाटक बोल कहां से आया तू। निर्देशन एवं प्रस्तुति संजीव मालवीय की है। रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा कैलाश गंधर्व का वॉयलिन पर बजाया राग बिहाग। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। एक बार फिर हम आपको बता दें, 7:20 से आपका पत्र कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में हम आपके मेल का इंतजार कर रहे हैं। हमारा मेल आईडी है aapkapatraindore@gmail.com। और श्रोताओं, 6:55 होने को है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

परीक्षापत्र प्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्यांकनं कृत्वा पश्चिमबंगाल प्रशासनेन विरोध प्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानाम एकोन सप्तति किलोग्राम भार वर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। अपरंच भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंह ग्लासगो नगरे पुरुषाणाम पंचपंचाशत किलोग्राम भार वर्गे प्रागुपांत्य चक्रे मुआले म्वेंगो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्य पदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपांत्य चक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: और मिलकर परिणाम देने के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित शासन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि भारत की जनता प्रत्येक निर्णय और नीति के केंद्र में रहनी चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई। पीठासीन अधिकारी संध्या रॉय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। भारत समुद्री नाविक उपलब्ध कराने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। वैश्विक जहाजरानी उद्योग में भारत ने 3,11,936 समुद्री पेशेवरों का योगदान दिया है। बीआईएमसीओ, आईसीएस, सी फेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार अब वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत का 12.16% का हिस्सा है। केंद्रीय

0: सरकार जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक जहाजरानी मार्गों को प्रभावित कर रहे बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच संघर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापारिक जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, आपको हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के संबंध में सूचना दे दें, इस गुरुवार यानी 30 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 के मध्य होगा सजीव फॉर इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। कल होने वाले इस कार्यक्रम का विषय है हेपेटाइटिस और अन्य लीवर से जुड़ी बीमारियां और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर अमित अग्रवाल जो कि हेपेटोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। इसके अलावा ये कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को सुबह 10:32 से 11:02 के मध्य। प्रश्न पूछने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224 2710223 और 2710224 इंदौर का एसटीडी कोड 0731 यानी 0731। तो फोन करना ना भूलें गुरुवार दिनांक 30 जुलाई 2026 को 10:32 से 11:02 के मध्य। ये कार्यक्रम विविध भारती इंदौर FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा और इसे आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से भी सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
5: क्या
4: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
5: वो कैसे?
4: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: पर सुनेंगे कैसे?
4: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
0: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
1: वही दोपहर 1 बजे।
0: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
2: प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग सुनिए प्रत्येक गुरुवार सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी इंदौर पर। प्रायोजक संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल।
3: 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज फिर होगी पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा। 10 साल तक कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे वन्य जीव संरक्षण वाहनों का लोकार्पण। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। ये विधेयक कल कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में पेश किया था। इसमें 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के जैसे कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। विधेयक में हर राज्य में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर केंद्र सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में वित्त, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों की भावी कार्ययोजना की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का हर निर्णय आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं को इससे जोड़ने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत के साथ मिलकर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य अतिथि में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वन्य जीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण करेंगे और संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। वे विभागीय प्रकाशनों का विमोचन और वृत्तचित्रों के टीजर भी रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित राज्य वन प्राणी बोर्ड के सदस्यों का अभिनंदन करेंगे। वहीं गुरु पूर्णिमा के मौके पर आज पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरुपर्व मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में गुरु पूजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर उज्जैन के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी सहभागिता करेंगे। इस पर्व का मुख्य आकर्षण भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होगा, जिसके तहत 102 मेधावी विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक भारतीय गुरु परंपरा के शिल्पी महर्षि सांदीपनी का लोकार्पण भी किया जाएगा। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जबलपुर में सुबह से ही ग्वारी घाट और तिलवारा घाट के नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और खंडवा स्थित प्रसिद्ध श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में भी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। करीब 3 साल से तैयार निषादपुरा रेलवे स्टेशन का कल औपचारिक शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां से मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके नियमित ठहराव की शुरुआत की। इसके साथ ही निषादपुरा भोपाल का 4th रेलवे स्टेशन बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दिल्ली से उज्जैन और इंदौर जाने वाले ट्रेनों को इंजन या ट्रैक बदलने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्टेशन क्षेत्र के विकास का

0: नया केंद्र बनेगा।
1: हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जिस गति से काम चल रहा है, रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है, और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है, और यहाँ पे रानी कमलापति, हिरदाराम मुख्य स्टेशन, अब निषादपुरा एक के बाद एक चार चार सोगा चारों दिशा से मिलकर आ रही है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने 8 IAS अफसरों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने कल शाम इसके आदेश जारी किए। शहडोल कलेक्टर बनाई गई मिशा सिंह की पोस्टिंग बदलकर अब उन्हें नगरी विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त बनाया गया है। वहीं पार्थ जायसवाल को शहडोल, मृणाल मीणा को छतरपुर और कुमार सत्यम को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को अब राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था ई विकास को वैध ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा कि ये व्यवस्था केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है, जिसमें अदालत सीमित मामलों में ही हस्तक्षेप कर सकती है। कृषि आदान विक्रेता संघ ने याचिका में कहा था कि ग्रामीण इलाकों में कमजोर इंटरनेट के कारण किसानों को दिक्कत हो रही है। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस प्रणाली से खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर रोक लगेगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि तकनीकी समस्या होने पर जिला कलेक्टर अस्थायी रूप से पुरानी ऑफलाइन व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इंदौर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कल एक साथ करीब 2.25 लाख नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में शहर के विद्यार्थियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने सभी प्रतिभागियों को सामूहिक शपथ दिलाई। इंदौर पुलिस ने पिछले साल 85,000 लोगों को शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब उसने खुद ही तोड़ दिया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के प्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि की पुष्टि की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई यानी कल मतदान होना है। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इसका मकसद मतदाताओं में सुरक्षा का भरोसा जगाना और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना था। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग और टेंट जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। भाजपा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर आज से समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान अगले 20 फरवरी तक 5 चरणों में चलेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि अभियान की शुरुआत आज समरसता दीपोत्सव से होगी, जिसमें प्रदेश के 21,000 स्थानों पर दीप जलाए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में वाराणसी से गुरु रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी लाई जाएगी, जिसके बाद समरसता यात्रा, संत संपर्क अभियान और छात्रावास संपर्क अभियान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम तथा रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 4 इंच तक पानी गिर सकता है। देवास, सीहोर और हरदा सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है। ये सिस्टम ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ेगा और प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य हिस्सों में भारी बारिश करवाएगा। अब रुक करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की खबर का। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीते। हरजिंदर कौर ने कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया, वहीं गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में प्रिया घंघास, प्रीति पवार और जादूमणि सिंह ने सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक पक्का कर लिया है। वहीं धावक विशाल टीके भी 400 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में नवनिर्मित आर्बिट्रेशन एवं मीडिएशन सेंटर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा और लिफ्ट क्रमांक 5 के लोकार्पण कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने किया। अशोकनगर की जनपद पंचायत परिसर ईसागढ़ में सुरक्षा जवान भर्ती शिविर का आयोजन कल किया गया, वहीं आज चंदेरी और कल जनपद पंचायत अशोकनगर में भर्ती की जाएगी। झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत मेघनगर

स्थित बाफना फाइबर्स परिसर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडोरी के राष्ट्रीय राजमार्ग 543 तथा डिंडोरी मंडला मार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के प्रभावित किसानों को कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कल मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। स्टार्टअप इंडिया द्वारा तेजस योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर तथा जिला प्रशासन के सहयोग से आज आयोजित किया जा रहा है और सिंगरौली कलेक्टर के निर्देशों पर सिंगरौली मेडिकल कॉलेज परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट तथा बिलियर्ड्स कोर्ट समेत कई सारी खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज फिर होगी पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक पर चर्चा। 10 साल तक कैद और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक। तकनीकी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे वन्यजीव संरक्षण वाहनों का लोकार्पण। और मौसम विभाग ने आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मेल बॉक्स में पड़ी हुई अनंत चिट्ठियां, अनंत सुख दुख कहती अनंत चिट्ठियां। कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार करती चिट्ठियां। नमस्कार श्रोताओं, आप श्रोताओं की चिट्ठियां और मेल हम तक पहुंच गए हैं और ज़्यादा मेल और चिट्ठियों का हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। और आप श्रोताओं की चिट्ठियों और मेल का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में उपस्थित हैं आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार सालनी जी, आपकी शब्दों की फुहार ने हमारे श्रोताओं के दिल को जीत लिया है।
0: बिल्कुल सर।
1: और देखिए, ऐसे रिमझिम फुहार में इस प्रकार कि आपने जो बातें की हैं वास्तव में लाजवाब है। ऐसा लगता है कि घन झूम उठे गगन में, रिमझिम फुहार है, ठंडी हवा चली तो आई बहार है, छाई घटा है, काली प्यास है धरती, नित प्रेम के तराने कोयल पढ़ती है, पुरवैया सरसराए, पंछी भी हैं गाए, देखो ये मस्तो वाले तीन कितने आए हैं, हर एक साक झूमे, हर पात हरियाला, भाया है मन को ये मौसम, ये रूप मत वाला।
0: बहुत सुंदर कविता है।
1: और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हम अपने श्रोताओं के लिए काफी मुस्तैदी से उत्तर देने के लिए तैयार हैं।
0: बिल्कुल।
1: और कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम अपने श्रोताओं के बतला दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है
0: जी।
1: और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और उसकी विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए इसके उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन लोगों को बाघ के प्रजातियों के समाप्त होते अस्तित्व के प्रति जागरूक
0: किया जाता है।
1: और 2010 से यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।

0: इस दिन का मुख्य उद्देश्य है मनाने का कि लोगों के मध्य बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है और एक विश्वव्यापी प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करना है, जिससे बाघों और उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा की जा सके। और देखिए 29 जुलाई 2022 को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह 2022 की मेजबानी की गई थी।
1: जी जी।
0: और एक चीज हम अपने श्रोताओं को और बतला दें कि 29 जुलाई 2026 को बुधवार को आषाढ़ पूर्णिमा है, इसे गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन में सुख शांति और खुशहाली आती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से मन को शांति मिलती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य और अपने गुरुओं के प्रति आदर और कृतज्ञता जाहिर करते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। देखें नर्मदा में कितने श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, और इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति मिलती है एवं दान करने से अक्षय फल मिलने की ऐसी मान्यता है। और आषाढ़ पूर्णिमा पर अन्न, जल, वस्त्र और धन के दान का विशेष महत्व दिया गया है। और एक चीज हम अपने श्रोताओं को और शेयर करना चाहेंगे कि खंडवा में गुरु पूर्णिमा का पर्व दादाजी धुनी वाले मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: जी।
0: और जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु बड़े दादाजी श्री केशवानंद महाराज और छोटे दादाजी श्री हरिहरानंद महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं, और इस दौरान पूरे शहर में अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत करीब हजारों निशुल्क भंडारे चलते हैं।
1: जी।
0: पूरे भारतवर्ष में ये अनूठा रूप से मनाया जाता है और 2-3 दिनों तक चलते रहता है।
1: जी जी।
0: और भीड़ और दर्शन, और इसमें करीब करीब 10 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं और कतारों में लगाकर धुनी माई में नारियल अर्पित करते हैं, और शोभा यात्रा हाथों में निशान जिसको ध्वज कहते हैं इसे लेकर ढोल नगारों की गूंज के साथ भजलो दादाजी का नाम का जाप करते हुए दरबार तक पहुंचते हैं। और बहुत ही ये अनूठा दृश्य होता है। हमें तो 4 साल देखने का अवसर प्राप्त हुआ जब हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र में पदस्थ थे।
1: जी जी।
0: और हमने भी भक्तों के लिए स्टॉल लगाए थे और सभी करीब करीब सरकारी विभाग हो या खूब मन से भक्तों की सेवा करते हैं। ये अपने आप में अनूठा है, तो इसका लाभ लें। और सभी श्रोता जो है, अब खास करके देखे इस दिन पंचोलिया जी भी, संजय पंचोलिया जी भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ सेवा करते हैं।
1: जी जी।
0: और इनके साथ जितने भी हमारे क्षेत्र के, चाहे श्रीमाली जी हैं या हुगमचंद कटारिया जी हैं और जितने भी आनंद जोशी जी हैं, सारे लोग मिलके भक्ति भाव से दादा की सेवा में लगे हुए रहते हैं। वास्तव में जो मानव सेवा का जो धर्म है, ये सबसे बड़ा धर्म है।
1: जी। और कहते हैं ना कि सर धन्यवाद कहना,
0: और इसके बारे में हम विशेष अपने इस क्षेत्र के श्रोताओं से सुनेंगे। हम चाहेंगे कि खंडवा और आसपास के श्रोता हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, वे हमारे व्हाट्सएप करें और क्या स्थितियां चल रही है तरोताजा से, हमारे देश विदेश के जो श्रोता हैं, दादाजी का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है शेयर करें। इंतजार करेंगे आपके मेल का।
1: मेल आईडी
0: बिल्कुल बता दीजिए।
1: हमारा मेल आईडी है आपका पत्र indore@gmail.com, apkapatrindore@gmail.com, सभी लेटर्स स्मॉल लिखने हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर 9993290063, जो राजेश सर का नंबर है, आप इस पर भी व्हाट्सएप करके अपने विचार हम तक भेज सकते हैं और हम आपके विचारों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: एक बार पुनः सुन लें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9993290063। ये लाइव प्रसारण के दौरान आप साप्ताहिक गतिविधियों, जो आपने सप्ताह भर कार्यक्रम सुना, उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल दीजिए, कार्यक्रमों में किस प्रकार सुधार चाहते हैं। और हम अपने श्रोताओं को एक बात और

0: याद दिला दें कि मंगलवार और गुरुवार और शनिवार तीन दिन आगे जो है 1 अगस्त से हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम है
1: जी।
0: भारत सरकार कृषि मंत्रालय का जो स्पॉन्सर प्रोग्राम है 7:20 से 7:30 to 8 तक
1: जी
0: शाम में ये इसका प्रसारण किया जाएगा और इसके अलावा विविध भारती में भी एक दिन इसका प्रसारण किया जाएगा।
1: तो किसान श्रोताओं के लिए
0: किसान श्रोताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। समसामयिक गतिविधियों और कृषि गतिविधियों से जानकारी से भरे ये कार्यक्रम जो है आपको सुनने का मिलेगा
1: जी।
0: तो अब देर न करते हुए एक एक करके प्रतिक्रिया लेना शुरू करते हैं। ये पहला मेल,
1: सबसे पहला मेल आया है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ये लिखते हैं कि हमें दिनांक 23 जुलाई 2026 का संस्कृत कार्यक्रम दिव्य धारा बहुत अच्छा लगा।
0: इस कार्यक्रम में
1: डॉक्टर वंदना प्रजापति की वार्ता विकसित भारतस्य निर्माणे संस्कृतस्य योगदानम इन्हें बहुत अच्छी लगी और ये इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ ही कहते हैं कि हमें आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में देखिए ये जो वार्ता थी और देखिए संस्कृत तो विरासत है
1: जी।
0: और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं ने इसका आनंद लिया और ज्ञान अर्जन किया
1: जी।
0: आपने हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: है अनिल बामनिया जी का और जी। ये लिखते हैं कि आपका पत्र प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार।
1: प्रशंसा एवं सुझाव, महोदय जी दिनांक 26 जुलाई को हमारे मेहमान कार्यक्रम में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय से मुकाम सिंह चौहान जी ने जो चर्चा की है वह हमें बहुत अच्छी लगी। मानो इस कार्यक्रम को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं भी इस हिंदी निबंध की ओर आकर्षित हो गया हूँ। मुझे विश्वास है कि ऐसे ही व्यक्तियों को लाया जाए जिससे हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा की और वास्तव में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी की जो संग्रह है वास्तव में ये लाजवाब है और हिंदी के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार, समीक्षक और कला इतिहासकार रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इनकी रही है
1: जी।
0: और वास्तव में इस प्रकार का जो कार्यक्रम जो प्रसारित किया गया एक उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सीख है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का जो जन्म हुआ था हरदा मध्य प्रदेश में हुआ था और भारतीय कला पर लेखन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका नाम है। भारतीय कला पर उनकी 12 कृतियां प्रकाशित है और इसके अलावा 6 संपादित, 3 अनुमोदित और 74 ललित निबंध की पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। तो इतने जो
1: मध्य प्रदेश
0: और इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से हमारे वार्ताकार द्वारा जो जानकारी दी गई वास्तव में प्रेरणा स्वरूप है और प्रेरणा आज भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का जो विभूति पैदा हुए हैं वास्तव में ये प्रेरणा स्तंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक और मेल हमारे पास आया है प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी और तनुजा जोशी। ये लिखते हैं कि दिनांक 20 जुलाई सोमवार को गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में डॉक्टर प्रीति छड़ीदार जी एवं सुषमा व्यास जी द्वारा धर्मेंद्र सिंह मौर्य जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता एवं शतरंज खिलाड़ी हैं, डॉक्टर सुनील सोमानी सेरा डगरिया मध्य प्रदेश की उभरती शतरंज खिलाड़ी, अक्षत खंपरिया इंटरनेशनल मास्टर के साथ चर्चा उभरती प्रतिभाओं के लिए लाभदायक लगी। दिनांक 23 जुलाई को संसद कार्यक्रम दिव्य धारा में डॉक्टर वंदना प्रजापति जी की वार्ता श्रेयस्कर रही। 25 जुलाई को कार्यक्रम विकसित होता भारत के अंतर्गत प्रीति जोशी के साथ डीएसपी अजय पंडित जी के साथ वार्ता भी बहुत जन उपयोगी लगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए काफ़ी गुणी लोग हैं और इनके जब इनके बारे में जानने को मिलता है तो वास्तव में अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है
1: जी।
0: महापुरुषों की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि

0: लिखे हैं दीपिका पालीवाल जी यूएस अमेरिका से हैं, अरुल पालीवाल जी एवं मास्टर सामवेद सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं
1: जी।
0: तो देखिए हमारी जो आवाज है और दादाजी की जो आज पर्व है, ये पर्व की गूंज जो है हमारे देश की सीमाओं को लांघते हुए ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुंच गई है। और इन्होंने आगे लिखा है कि आदरणीय इंदौर के सभी कार्यक्रमों को हम यहाँ सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर से हैं, भरपूर आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी कार्यक्रम बहुत रोचक और ज्ञानप्रद है। इस पत्र में जो व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने भेजा है, हम सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करते हैं। एक विशेष बात, हम अपने यहाँ के परिचितों को भी आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए प्रेरित करते हैं
1: जी। ये तो बहुत अच्छी
0: सिडनी में तो इन्होंने लोगों को जोड़ रखा है
1: जी।
0: और प्रेरित भी कर रहे हैं। और यूएस अमेरिका में भी हमारी बेटी और दामाद भी रेडियो ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं और वो भी लोगों को सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के लोग जब विदेश में जाते हैं तो एक अपनापन कैसे, तो रेडियो एक सशक्त माध्यम है इस माध्यम से। और चूंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आकाशवाणी के सभी केंद्रों को न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से जोड़ दिया है, डिजिटलाइज कर दिया है, जिसके कारण जो है हर एक क्षेत्र की देश की जो सांस्कृतिक विरासत हो या ऐतिहासिक विरासत हो, जितने भी यहाँ का दूसरे देशों को जानने का यहाँ के लोगों को मौका मिलता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो इससे एक जो वैश्विक जो परिवेश पर हमारा देश जो ऊपर जा रहा है, ये अपने आप में अनूठा है। आप हमारे मेहता जी, आप हमारे केंद्र को ध्यान से सुनते हैं और आज भी आपको सुनने को मिल गया होगा कि खंडवा में दादाजी धूनी वाले का जो पूरा पर्व मनाया जा रहा है, वास्तव में ये पर्व जो है भारत की सीमाओं को लांघते हुए अब देखिए कहां तक पहुंच गया।
1: बिल्कुल सही,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: अगला मेल
1: है प्रवीण श्रीमाली जी का, कबर कॉलोनी बढ़वास से। ये लिखते हैं कि 24 जुलाई को इंदौर परिक्रमा सुना, जो कि इंदौर की गतिविधियों पर केंद्रित था। सुंदर प्रस्तुति मुकाम सिंह जी की थी। इस दिन सुबह 8:30 बजे कवि गोष्ठी के अंतर्गत विजय जोशी, राधेश्याम पांचाल, आरती गोस्वामी, दिलीप मांडलिक कविवरों की रचनाओं ने हमारा मन मोह लिया, साधुवाद। 26 जुलाई को वसुंधरा अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सिमरन जी से बहुत कुछ जानने को मिला। 26 जुलाई को विविध भारती पर प्रातः 10:31 से कारगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुना, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत था। बर्फ से ढकी हुई उन चोटियों पर आज भी गूंजती है भारतीय वीरता की कहानी, जिसने दुनिया को बता दिया भारत अपनी सरजमी की रक्षा हर कीमत पर करना जानता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा।
1: उम्दा पेशकश पद्मश्री जी की थी, उन्हें दिल से साधुवाद। 27 जुलाई को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, डॉक्टर APJ कलाम एवं महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि पर सभी महानुभावों के विचार दिल को छू गए। कार्यक्रम की अनूठी प्रस्तुति प्रीति जी की थी, उन्हें सर धन्यवाद। 28 जुलाई को सुनहरे पल के अंतर्गत फिल्म अभिनेत्री आयशा जुल्का के गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम मनोरंजक लगा। इसी दिन सुबह 8:30 बजे खेल पत्रिका भी सुना, बेहद पसंद आया। दोनों कार्यक्रमों की अनूठी सुंदर पेशकश के लिए माजदा जी का दिल से हार्दिक साधुवाद। इसी दिन शाम को चॉइस टाइम में अमृता जी ने मौसम के अनुरूप गीतों को सुनवाया, उस पर हमारे शहर में भी रिमझिम बारिश हो रही थी, इसके लिए भी ये धन्यवाद दे।
0: और अभी रिमझिम फुहार चल भी रही है
1: जी।
0: तो देखिये आपने हमारे सभी कार्यक्रमों की प्रशंसा की और देखिए कारगिल विजय पर जो हमने कार्यक्रम प्रसारित किया, वास्तव में हमारे जो देश के लोगों हैं उनमें एक जज्बा पैदा हो जाता है देशभक्ति के प्रति, तो कितनी बड़ी बात है। लोग प्रेरित होते हैं, लिखते हैं और अपने को भी सुशोभित करते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं। यही तो रेडियो की जो है वैश्विक स्तर पर जो लोगों को बांधे हुए है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे बीच संदीप ठाकरे जी व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ गए हैं और ये हैं जनसंपर्क अधिकारी नेपा लिमिटेड।

0: नेपानगर से। इन्होंने लिखा है, गुरु पूर्णिमा पर्व पर पूरे आकाशवाणी इंदौर को इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दिए हैं और इस सुंदर भोर में आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं बड़े बुफर पर। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रसारण चल रहा है
1: जी।
0: और वास्तव में ये सशक्त लेखनी के हस्ताक्षर हैं और इनके कई कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के माध्यम से प्रसारित हुए हैं, आकाशवाणी खंडवा के माध्यम से प्रसारित हुए हैं और हम चाहेंगे कि आप जो है अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से लोगों को जुड़ते रहें और प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप ठाकरे जी। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है, ये लिखने वाले हैं ये भैरूलाल बाख्तरिया जी, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, एक किसान श्रोता हैं। लिखते हैं, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता दोनों महानुभावों को हमारा नमस्कार, आकाशवाणी परिवार को गुरु पूर्णिमा पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन से लेकर आज तक रेडियो हमारा साथी रहा है, सूचना शिक्षा साहित्य और मनोरंजन के साथ साथ एक तरह से आकाशवाणी ने एक गुरु की भूमिका निभाई है, अतः आकाशवाणी भी हमारा गुरु ही है
1: जी।
0: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या इन्होंने एक सुंदर वाक्य लिखी है आकाशवाणी के लिए। वसुंधरा में हमारी इंदौर की स्वच्छता और कचरा संग्रहण और उसके उचित निष्पादन के संदर्भ में जो वार्ता प्रसारित की गई काफ़ी अच्छी लगी। वास्तव में देखिए, हमारा पूरे देश में स्वच्छता के मामले में इंदौर नंबर वन है और अपशिष्ट प्रबंधन की बात करें तो इसकी क्या कहना है,
1: कचरे हर तरह से नंबर वन
0: है। कचरे से भी लोग इतनी वैरायटी उत्पाद बना दिए हैं कि गिनाया नहीं जा सकता है। और आगे लिखे हैं, वसुंधरा में इंदौर की कार्यक्रम का जो प्रसारण किया गया वास्तव में दिल को छू लिया। और एक जिज्ञासा है कि वसुंधरा कार्यक्रम की जो संकेत धुन में आवाज है, समुद्र जिसके वस्त्र हैं, पर्वत जिसके स्तन, ऐसी विष्णु पत्नी पृथ्वी को मेरा सत सत नमन है। हे माँ, पैरों से स्पर्श करने के लिए तू मुझे करना। यह आवाज तो सुधा शर्मा जी का है, साथ में संस्कृत में श्लोक गायन है।
1: बहुत ध्यान से सुनते हैं।
0: समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श
1: क्षमस्व।
0: और वास्तव में यह आकाशवाणी इंदौर के किस कलाकार की है, ये इन्होंने ये लिखा है और ये जो श्लोक है काफी अच्छा लग रहा है।
1: कार्यक्रम के
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उपयुक्त, बिल्कुल ये एसटी है।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ है, ये है, आप दोनों महानुभावों को नमस्कार करते हुए इन्होंने लिखा है, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया का सप्रेम नमस्कार इन्होंने करते हुए आगे लिखा है, प्रेषित किया है। और आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हम जालौन में सुन रहे हैं और किसान होने के नाते किसानवाणी कार्यक्रम का ज़्यादा हम इसे सुनते हैं और फिर लाइव फोन इन में सहभागिता भी निभाते हैं
1: जी।
0: गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगता है। राजेश पाठक जी का उत्तर देना सदैव रास आता है, अगले बुधवार को पुनः मिलेंगे। क्या बात है, हम तो आपके दिलों में हैं, आप तो जब याद करें हम एयर पर आपके साथ उपस्थित हैं। आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और देखिए, खास करके ये जो मौसम है, किसानों के लिए मौसम है और किसानों के लिए हम तरह तरह की जानकारियां प्रेषित करते हैं। और जहां तक हमें याद है, इस केंद्र को मैं 1 अक्टूबर 2025 को ग्रहण किया हूं और इसके बाद से लेके आज तक हमने एक भी कार्यक्रम को पुनः प्रसारण नहीं किया है
1: जी। ये बहुत बड़ी बात है।
0: और इस क्षेत्र में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और हमारे किसान श्रोता सभी लोगों ने सहयोग दिया
1: जी।
0: किसानों के लिए जो जानकारी प्रसारित किया जाता है मौसम के अनुरूप होना चाहिए और समसामयिक सुझाव यही किसानों के लिए उपलब्धि है, कब उन्हें सचेत करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है। तो ऐसी जो जो रेडियो एक दोस्त के रूप में जो उभरा है इन्हीं कारणों से उभरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए हैं, ये लिखने वाले हैं, नाम आगे बताएंगे। ये लिखे हैं, अज्ञानता के अंधेरे को जो दूर भगाते हैं, सही और गलत का फर्क जो हमें सिखाते हैं, किताबें तो बस पन्ने पलटती है जीवन के, असली इंसान तो गुरु ही बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं देते हुए आगे लिखा है, आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार, और पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला, बहुत ही उम्दा लगा। आपके यहाँ से सभी प्रोग्राम उम्दा के साथ, सदाबहार के साथ लिखे हैं, और थोड़ा सा हिंदी और सटीक और अच्छे लिखे, जैसा लिखा है वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। मनोरंजन से भरपूर लग रहे हैं, और सभी कार्यक्रम की जो सफल प्रस्तुति थी इन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और सभी प्रस्तुतकर्ता को इन्होंने धन्यवाद दिया है, और आवाज़ और शैली बहुत ही अच्छी है, सुनने में बहुत मज़ा आता है। आपके यहाँ से सारे प्रोग्राम से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, हमारे परिवार को भी प्रेरणा मिलती है, और मुझे बहुत पसंद आता है, खास करके सुनहरे पत्र प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प है। हम आपके दिलों से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: और आगे जो लिखे हैं, श्री माली जी लिखे हैं, गुरु पूर्णिमा पर नर्मदा जी के प्रातः दर्शन किए हैं, और देखिए हम आपको जो है सुनवा रहे हैं, इतनी अच्छी इन्होंने किया है,

0: और साथ साथ माँ नर्मदा प्रवाहित हो रही है, आप भी देख रहे हैं शालिनी जी,
1: जी।
0: और इस बीच इस तरह का जो गुरु की महिमा है वास्तव में अपने आप को मन को आह्लादित कर देती है।
1: नर्मदा जी के दर्शन
0: और देखिए नर्मदा जी के स्नान भी कर रहे हैं और श्रीमाली जी पूरे श्रोताओं के लिए इन्होंने एक वीडियो एक बहुत ही गुरु की महिमा के साथ इन्होंने भेजा है। वास्तव में आज खंडवा की जो पावन धरती है वो धन्य हो चुकी है। तो इस तरह से जैसा हमने शुरू में ही निवेदन किया था एक सुंदर वीडियो के साथ इन्होंने श्रीमाली जी ने आपके बीच रूबरू हुए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमाली जी। और हमारे बीच एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिखने वाले हैं हनुमंत सिंधे जी, ऋषिकेश सिंधे जी, ग्राम सिरटे, जिला सांगली, महाराष्ट्र से। लिखा है 27 जुलाई 2026 को, गुड मॉर्निंग इंदौर, प्रोग्राम हमें काफ़ी अच्छा लगा। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी के पुण्यतिथि के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी। देश की प्रगति में कलाम जी का मौलिक योगदान है। जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं और मोहम्मद रफ़ी जी की पुण्यतिथि और पार्श्व गायन में रफ़ी जी का जो कार्यक्रम इसमें जो प्रसारित किया गया बहुत ही अच्छा लगा। और ये लिख रहे हैं प्रीति जोशी जी की प्रस्तुति जो थी काफ़ी अच्छी लगी, प्रसारण के लिए धन्यवाद दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधे जी। पूरे परिवार के साथ आप हमारा कार्यक्रम को आनंद ले रहे हैं। अब अगला मेल,
1: अगला मेल है हसीना बी मंसूरी जी का।
0: जी,
1: ये लिखती हैं कि आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। पिछले सप्ताह असीम कैथवास जी और शालिनी जी द्वारा आपका पत्र बहुत ही रोचक लगा। साथ ही दिनांक 11 जुलाई को खेती गृहस्थी कार्यक्रम बहुत ही उम्दा लगा। बारिश के दिनों में अपने बच्चों का ध्यान किस तरह से रखा जाए, उन्हें बाहर नदी में फिसलने वाली जगहों पर जाने से रोका जाए, इससे जुड़ी जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी। साथ ही उज्जैन के लखनदास बैरागी जी से पशुपालन और उनका रखरखाव विषय पर बातचीत भी बहुत उपयोगी लगी। किस तरह से पशुओं का ध्यान रखा जाए, उनका खान पान कैसा हो, किस तरह की नस्ल हो, उनका टीकाकरण करवाते रहें, इस विषय पर जानकारी हमने बड़े ध्यान से सुनी।
0: देखिए हम जो पशुपालन के विशेषज्ञ हैं, इसके जो वैज्ञानिक हैं, उनकी जानकारी तो हम प्रसारित करते ही रहते हैं और उनकी जानकारी को हमारे किसान भाई कैसे अमल करते हैं, कैसे करते हैं। वास्तव में लखन जो बैरागी जी ने जो प्रस्तुत किए, अपने अनुभव जो प्रस्तुत किए, लाजवाब थे। और हम तो चाहेंगे कि इसी तरह किसान भाई जो है ज्ञान अर्जन करें और उस ज्ञान अर्जन को व्यवहारिक रूप में लाएं, तभी सार्थकता है
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे क्या लिखते हैं?

0: इसके अलावा प्रीतेश मिश्रा जी का मेल हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, जय राम जी की, हम श्री बालाजी हाईटेक सिटी खरगोन से श्रीमती दीपिका मिश्रा और पंडित प्रीतेश मिश्रा हैं। हम आकाशवाणी सुनते हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। हमारा पुत्र और पुत्री भी बचपन से सुन रहे हैं। एक बात समझ नहीं आई, प्रातः प्रसारण प्रारंभ होते समय दिन की जो गणना बताई जाती है वह कैसे बताई जाती है? जैसे आज बताया शक संवत 1948 की श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई 2026 बताया है, जबकि आज तो पूर्णिमा है और श्रावण कल से प्रारंभ होगा। कृपया इसमें भी परिवर्तन कर वास्तविक और प्रचलित तिथि बताया करिए। रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, धन्यवाद।
1: देखिए, यहाँ शक संवत और विक्रम संवत
0: जी, उसको लेकर
1: कन्फ्यूजन है। तो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम जो होता है, जो आकाशवाणी का जो ट्रेडिशन है, वे होता है शक संवत से
0: जी, इस वजह से इन्हें कन्फ्यूजन है।
1: हाँ, लेकिन दोनों ही जो है अपने आप में है। शक संवत का अलग महत्व है, विक्रम संवत का अलग महत्व है
0: जी।
1: फिर भी हम अपने श्रोताओं को तरोताजा तो कर ही देते हैं
0: जी।
1: आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है आकाशवाणी की, उसके अनुसार जो है ये चली आ रही है, शुरू से ही चली आ रही है
0: जी। शक संवत की तिथि हम बताते हैं
1: जी। हमारे बीच एक और पोस्टकार्ड आया है, पटेल नगर मालोट पंजाब से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजुरिया जी, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप जाजुरिया और बेबी आरजू जाजुरिया लिखते हैं कि मनभावन कार्यक्रम जो है और चॉइस टाइम कार्यक्रम जो है और विविध भारती के कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। गांधी चौक रोपर पंजाब से ही। इसके अलावा लिखे हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक जी लिखते हैं कि हमें जो है मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत जो फिल्म संगीत के आपकी पसंद कार्यक्रम जो हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तरबी, जरीना तरबी, मुबारक तरबी, परवेश तरबी जी और रोजमीन सभी ये लिख रहे हैं कि चॉइस टाइम कार्यक्रम जो है काफ़ी अच्छा लगता है। और बरूड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं बाबा साहेब बरोदे मीनाक्षी चरपे, रजनी जी और कार्तिक और युवराज जी लिख रहे हैं कि हमारा मानभावन कार्यक्रम और जो फिल्म संगीत के कार्यक्रम हैं ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेबई से गुलदास मानिकपुरी जी, लक्षणपुर से शिवनाथ साहू जी, पिपरिया से दुर्गा राम साहू जी, ये छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं, ये लिखते हैं चॉइस टाइम कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, हम बहुत ही शिद्दत और मुद्दत के साथ विविध भारती के कार्यक्रम सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे पास एक व्हाट्सएप संदेश आया है, ये लिख रहे हैं, आकाशवाणी इंदौर मालवा किसान किसानों के बीच बहुत ही पहचान रखने वाले और जानकारी से उत्प्रोत आकाशवाणी इंदौर का कार्यक्रम जो होता है काफ़ी अच्छा है। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम शुरू होने के पहले एक सिग्नेचर धुन जो बजती है, वास्तव में आकाशवाणी इंदौर को ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सुना जाता है और इसकी धुन ही ऐसी लगती है कि पूरी इन्होंने ग्रामीण प्रवेश का एक माहौल क्रिएट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मिनट से बढ़ाकर 1.5 मिनट किया जाए, क्योंकि यह सुकून देने वाला यह धुन लगता है,
0: धुन लगती है।
1: आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है। फिर भी हर एक चीज का एक समय निर्धारित किया गया है
0: जी।
1: उस कार्यक्रम का प्रसारण उतने ही समय में ज्यादा अच्छा लगता है
0: जी।
1: और आगे लिखते हैं कि कार्यक्रम चाहते हैं कि जो धुन बजती है वह कौन क्या है और लोकगीत और किसने गाया था पूरा बताने का कष्ट करें। ये दशरथ सेन जी और कुछ किसान भाई लोग ये नाटाराम से लिखे हैं। वास्तव में बहुत पहले ये धुन क्रिएट की गई थी उस समय, देखिए घूर की आवाज है। और उस समय नंदा जी, बहरा जी, कान्हा जी जो कंपेयरिंग करते थे बिल्कुल क्षेत्र की बोलियों में, वास्तव में एक अनूठा कार्यक्रम था। और शुरू करने से ही ऐसा लगता था कि पब्लिक जो है पूरी दौड़ पड़ते थे और रेडियो ट्यून नहीं करते थे, हाथ जाते ही अपने आप ट्यून हो जाता था
0: जी।
1: तो ऐसी छाप हमारे केंद्र ने छोड़ी है, लोग अभी भी लिखने के लिए सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दसर सेन जी
0: जी।
1: और हमारे बीच

0: एक और व्हाट्सएप संदेश आया है जदुनंदन सोनी जी, संतोष सोनी जी खरगोन से लिखते हैं कि आपका पत्र दोनों को इन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और निमार एवं मालवा पर प्रभु की कृपा है, इस पावन भूमि पर निर्गुण संतों ने अवतार लिया है। और वास्तव में हम अपने श्रोताओं को देखें जो वहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगा है, बहुत अच्छी काफ़ी प्रतिक्रियाएं आ रही है। और आगे लिखे हैं, सातों समुद्र की दावत बनाई जाए, सारे जंगलों के वृक्षों को कलम और तथा पूरी विश्व को कागज बना दिया जाए, पर गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखने वाले हैं डीसी स्वारसत 15 पटवारी कॉलोनी रतलाम से। और आगे लिखा है कि विकसित होता भारत का कार्यक्रम जो प्रसारित किया गया था काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही अपने परिवार के साथ ये कार्यक्रम सुनते हैं। और इसके अलावा गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इन्होंने विक्रम चौधरी ग्राम बगरी जिला धार से लिखा है, आज हमारे पास नालछा के पास राम फलकी धाम है जहां हर वर्ष विशाल भंडारा होता है। इन्होंने अच्छी जानकारी दी है
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल,
1: अगला मेल है देवेंद्र सिसोदिया, साहित्यकार और सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं ये
0: जी।
1: इन्होंने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही ये लिखते हैं कि आकाशवाणी भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का संचार करता है जो गुरु के समान है, अतः आकाशवाणी से जुड़े समस्त गुरुजन को प्रणाम और शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे पास ये लिखे हैं, हम श्री बालाजी हाईटेक सिटी खरगोन से, ये हैं श्रीमती दीपिका मिश्र और पंडित प्रीतेश मिश्र जी हैं
1: जी।
0: लिखे हैं, हम आकाशवाणी 50 वर्षों से सुन रहे हैं और हमारा पुत्र हेरम और पुत्री रुचिता भी बचपन से सुन रहे हैं
1: जी।
0: एक बात समझ में नहीं आई कि प्रातः प्रसारण प्रारंभ होते ही समय दिन की जो गणना की जाती है, जैसे बताया जाता है सक संवत 1948 श्रावण मास की 7वीं तिथि, तदनुसार जुलाई 2026 है, जबकि आज तो पूर्णिमा है, श्रावण कल से प्रारंभ होगा। ये शक संबत और विक्रम संबत, दो संबत के कारण जो है इस प्रकार की कंफ्यूजन होता है
1: जी जी।
0: फिर भी हमने आपका सुझाव नोट कर लिया है, हम अपने अधिकारियों से चर्चा करेंगे, चूंकि ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, शक संबत के अनुसार हम लोग यहाँ उद्घोषणा की जाती है, फिर भी परिवर्तन तो नियम है, हम आपके सुझाव पर बिल्कुल ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे किनका मेल आया है,
1: ये हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे ग्राम शिरडी जिला सांगली से लिखते हैं, सोमवार 27 जुलाई को प्रसारित किया गया गुड मॉर्निंग इंदौर प्रोग्राम अच्छा लगा, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के बारे में जानकारी दी गई उचित लगी, देश की प्रगति में कलाम जी का योगदान मौलिक है, जीवन में सुख दुख में साथ मित्र देता है, मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि और पार्श्वगायन में रफ़ी जी का कार्य बहुत ही बढ़िया है, प्रीति जोशी जी की प्रस्तुति लाजवाब थी, प्रसारण के लिए धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच खंडवा मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया जी लिखे हैं, पिंटू सेन जी, हरिनिवास केरे, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, के पी चौहान, दीपक सचिन कटारिया, कृष्ण विराज, अर्णब काव्यांश कृतिका और श्रीमती प्रभा कटारिया। इन्होंने लिखा है कि 22 जुलाई का आपका पत्र कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा और सालनी जी और असीम जी की प्रस्तुति लाजवाब लगी, और 15 जुलाई का से 31 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान के तहत 80,500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, नाटक के माध्यम से लोगों को जो जानकारी दिलाए गए, मध्य प्रदेश शासन पुलिस का यह अभियान स्कूल कॉलेज और आम जन तक प्रभावशाली रहा, नशा मुक्ति से बचने के लिए अनेक प्रभावशाली लोगों से मिलवाया गया, और मुकाम सिंह चौहान जी की प्रस्तुति काफ़ी अच्छी लगी, सुरहने पल कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा और माउथ ऑर्गन पर आधारित गीतों का समावेश किया गया, काफ़ी अच्छा लगा
1: जी।
0: समय और रिमझिम फुहारे हो रही है और बहुत मेल आ रहे हैं, घड़ी की सुई इशारा कर रहा है आपसे विदा लेने का, चलते हैं, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: अभी आप आपका पत्र कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
7: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। यह विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र

0: सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा, यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
3: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है, और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।

0: अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की यह श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रूपये

श्रोताओं, आज का दिन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की महान परंपरा को प्रणाम करने का दिन है। आज है गुरु पूर्णिमा, वह पावन अवसर जब हम उन सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को ज्ञान, संस्कार और सही दिशा प्रदान की। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: वास्तव में धन्यवाद कहना भी एक संस्कार है। हम अक्सर जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमें वहां तक पहुंचाया, उन्हें याद करना भूल जाते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें ठहर कर पीछे देखने और उन हाथों को प्रणाम करने का अवसर देती है जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। कहा भी गया है, धरती सब कागज करूँ, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: गुरु केवल पुस्तक का ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके जीवन में विवेक का दीप जलाता है। माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, विद्यालय के शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं और जीवन में मिलने वाले अनेक अनुभवी लोग भी किसी न किसी रूप में हमारे गुरु बन जाते हैं।

दिलीप से बोलो क्या होता है।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बहादुर
0: बनने के बा।

गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पर्व महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे महान ऋषि हैं जिन्होंने वेदों का संकलन किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की तथा अनेक पुराणों के माध्यम से ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया। यदि वेदव्यास न होते तो संभवतः हमारे प्राचीन ज्ञान का इतना विशाल भंडार व्यवस्थित रूप से हमारे पास नहीं होता। इसलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है।

हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसे एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो। गुरु केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। वे बताते हैं कि सफलता के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ चरित्र और उपलब्धि के साथ सेवा का भाव भी आवश्यक है। गुरु का प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह पूरे समाज का भविष्य गढ़ता है।

भारतीय संस्कृति में गुरु का अर्थ केवल शिक्षक नहीं है, गु अर्थात अंधकार और रू अर्थक उस अर्थात उसका नाश करने वाला। अर्थात गुरु वह है जो ज्ञान रूपी अंधकार को दूर जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। आज के समय में भी गुरु का महत्व कम नहीं हुआ है। बदलते युग, नई तकनीक और आधुनिक शिक्षा के बीच भी गुरु का स्नेह, अनुभव और मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

गुरु पूर्णिमा केवल अपने शिक्षकों को प्रणाम करने का दिन नहीं है, बल्कि आत्ममंथन का भी अवसर है। हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान और संस्कारों को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं, तभी हम अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए लोक संगीत। आज हम आपको चंद्र प्रकाश सोनवे और साथियों के गाए लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लोक संगीत में आज आप चंद्र प्रकाश सोनवे के गाए लोकगीत सुन रहे हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

लोक संगीत में आज आप चंद्र प्रकाश सोनवे के गाए लोकगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज हम आपको पंकज उदास की गाई रचनाएं सुनवा रहे हैं।

पंकज उदास के स्वर में अभी आप निदा फाजली की रचनाएं सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुभाष देशपांडे का वायलिन वादन सुनवा रहे हैं। आज आप सुनेंगे वायलिन पर बजाया राग मियां की तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं उल्हास राजहंस।

0: अभी आप सुन रहे थे सुभाष देशपांडे का वॉयलिन पर बजाया राग मियां की तुड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे उल्हास राजहंस। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी। कृपया जिले की चिट्ठी की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत माहेश्वरी का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रायसेन जिले की चिट्ठी। आलेख विनीत माहेश्वरी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। रायसेन जिले के सांची में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित सांची रेलवे स्टेशन का लोकार्पण बीते दिनों राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में आयोजित कार्यक्रम से इस स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण किया। सांची में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि इस योजना से पुराने रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। पुनर्विकसित सांची रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं, स्वच्छता और सुगम आवागमन की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी क्रम में सांची में 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बने नए शासकीय सांदीपनी विद्यालय भवन का लोकार्पण भी किया गया। प्रदेश के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि भविष्य के नागरिकों को तैयार करने का केंद्र है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार, कौशल विकास और खेल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखार सकेंगे। रायसेन कलेक्ट्रेट में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक बीते दिनों आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में स्वीकृत 755 नल जल योजनाओं में से 642 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष योजनाओं पर काम जारी है। वहीं रायसेन जिले के सनखेड़ी गांव में नए बिजली उपकेंद्र का लोकार्पण बीते दिनों किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपकेंद्र का शुभारंभ किया। करीब 2,90,00,000 रुपए की लागत से बने इस उपकेंद्र से सनखेड़ी सहित आसपास के 9 गांवों को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। रायसेन कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में बीते दिनों सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए आगामी सत्र की कार्य योजना पर चर्चा की गई। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बीते दिनों 305 हितग्राहियों के खातों में पहली किस्त की राशि जारी की गई। सांची विधायक डॉ. प्रभुराम चौधरी ने एक क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खातों में राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर 315 परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण भी किया गया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रायसेन में बीते दिनों एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, पुलिसकर्मियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। खरीफ फसल 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसानों को योजना की जानकारी देने और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के उद्देश्य से रायसेन में फसल बीमा जागरूकता रथ रवाना किया गया। ये रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर मिलने वाली बीमा सुरक्षा और दावा प्रक्रिया की जानकारी दे रहा है। कृषि विभाग के अनुसार रायसेन जिले में खरीफ मौसम के लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। जिले में अब तक करीब 1,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ है, जिसमें से करीब 64,000 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। उपसंचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि वर्तमान में जिले में करीब 42,000 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है और किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नई रैक प्राप्त हो रही है। रायसेन जिले में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का कार्य 53 उपार्जन केंद्रों पर जारी है। जिले में करीब 45,000 किसानों का पंजीयन किया गया है, जिसमें से करीब 32,000 किसानों ने अपने स्लॉट बुक किए हैं। अब तक करीब 9,000 किसानों से करीब 80,000 क्विंटल मूंग का उपार्जन किया जा चुका है। वहीं जिले में इस वर्ष मानसून के दौरान 1 जून से 28 जुलाई तक कुल 412.6 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। भू संसाधन प्रबंधन विभाग के अनुसार जिले में सबसे अधिक बारिश गैरतगंज में 531.4 मिलीमीटर और उदयपुरा में 496 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में जिले में 767.5 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान के तहत रायसेन जिले के ग्राम बमोरी में किसान संजय कुशवाहा की वर्षों पुरानी बिजली समस्या का समाधान किया गया। कंपनी ने उन्हें ओन योर ट्रांसफार्मर योजना की जानकारी देकर स्थायी कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया। करीब 1,40,000 रुपए की लागत से ट्रांसफार्मर लगने के बाद अब उन्हें हर साल लगभग 24,000 रुपए की बचत होगी। रायसेन जिले की चिट्ठी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और जिले की गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रायसेन जिले की चिट्ठी, वाचन स्पर्धा अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सजीव फॉर इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक हमें फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के फिल्मी गीत। इसके लिए आप डायल कर सकते हैं नंबर 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। हमारे उन श्रोताओं से जिनके फ़ोन कॉल पिछले कार्यक्रमों में लग चुके हैं, हम विनम्र अनुरोध करेंगे कि कृपया एक महीने का अंतराल रखें। और अब लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो,
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
0: हाँ जी, एमएच हॉटलाइन।
1: शालिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी। सबसे पहले आकाशवाणी परिवार को और तमाम सुनने वालों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हम बस दादाजी की नगरी खंडवा से बोल रहे हैं, जहाँ गुरु पूर्णिमा का आज बहुत बड़ा मेला भी लगता है।
0: जी जी,
1: 200-300 भंडारे के भी लगते हैं।
0: जी जी, बताएं वहाँ का माहौल इस समय कैसा है?
1: इस तरह का माहौल ऐसा है कि यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आ चुके हैं
0: जी,
1: से आ गए हैं और अभी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, अपनी अपनी जगह सब अपने अपने पाइप लगे हुए हैं।
0: जी जी,
1: बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और ये और नहीं चाहिए,
0: लगभग कितने श्रद्धालु दर्शन कर लेते हैं?
1: हो जाते होंगे, मेरे अंदर जाता है 4-5 हजार हो जाते होंगे।
0: 4-5 हजार हो जाते हैं
1: जी जी, पूरा पूरा शहर ही भरा हुआ रहता है।
0: अच्छा,
1: कई आते भी हैं, कई जा रहे भी हैं, कोई आ भी रहे हैं, कोई जा भी रहे हैं, अपने अपने दर्शन कर अपने अपने निकलते भी रहते हैं।
0: जी जी जी जी। तो खत्री जी बताएं, गीत कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: गीत मुझे वो सुना दीजिए, नशीब फिल्म का, लता मंगेशकर की आवाज में।
0: जी,
1: मेरे नशीब में तू है कि नहीं।
0: जी, बहुत अच्छा गीत है।
1: हाँ, और अब आप कभी समझ लो, इस वक्त दादाजी के दर्शन ही कर रहे हैं समझ लो। सबसे पहले फोन कॉल लग गया है तो मतलब सबसे पहले सबका, सभी श्रोताओं ने, आकाशवाणी परिवार ने खंडवा की नगरी के दादाजी के दर्शन कर लिए।
0: दर्शन कर लिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बहुत पुण्य मौका होता है और दर्शन करना दादाजी के एक बड़े सौभाग्य की बात होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर हर त्यौहार अच्छे मनना चाहिए, मेरे तो ये सोच है।
0: जी बिल्कुल सही,
1: खुशियों के होते हैं और खुशियों से मनाओ।
0: खुशियों से मनाओ, बिल्कुल सही।
1: बस खुशियों के लिए तो त्यौहार होते हैं।
0: जी जी जी,
1: और श्रद्धाओं के त्यौहार होते हैं।
0: जी
1: जी,
0: आपको सुनवा
1: आप है
0: जी।
1: और आज तो मैं रात भर सो नहीं पाया, सुबह आपको पत्र में ईमेल डालूंगा, लेकिन अच्छा, सुबह 7 बजे नींद लग गई।
0: अच्छा, तो आप पहले भी डाल सकते हैं, पूरा हफ्ता आप कभी भी मेल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज ही सुबह हमें मेल करें, हम पूरे हफ्ते के मेल शामिल करते हैं।
1: जी जी जी जी, बहुत बताइए आपने
0: जी,
1: एक जानकारी मिली मुझे और तमाम श्रोताओं को मिली।
0: जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। खत्री जी, धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो नमस्कार बहन जी।
2: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
2: जी मांगीलाल जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
3: बहन जी फिल्म का नाम रहेगा ताजमहल
2: जी,
3: और गाने के बोल रहेंगे जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है। और मांगीलाल जी क्या करते हैं आप?
3: बहन जी मैं एक किसान हूँ और खेती किसानी करता हूँ, और खेती किसानी के साथ साथ मैं रेडियो भी सुनता हूँ।
2: जी जी
3: बहन जी, मैं रेडियो सन 1980 से सुनता आ रहा हूँ
2: जी, मतलब काफी पुराने श्रोता है।
3: इंदौर और भोपाल का बहुत पुराना और बहुत नियमित श्रोता हूँ
2: जी। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: तो बहन जी कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
2: जी जी जी बिल्कुल करिए।
3: नरेश प्रजापति जी है, गजराज लोधी जी है, बसंती लाल जी है, और केसरी सिंह राजपूत जी है, भगवान सिंह परमार जी है, राम बाबू शर्मा जी है, शेख हैदर खान जी है रतलाम से, प्रेम लगन आलोट से, बल हमारे अध्यक्ष महोदय बल वर्मा जी है, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
2: जी जी चलिए सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद
3: धन्यवाद।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते,
3: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
2: जीनत जी बताएं कौन सा गीत सुनेगी?
3: जी फिल्म का नाम है राम अवतार और गाना है उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन एक भी दिन मुश्किल हो गया। जीना जीना जीना,
2: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है। जीनत जी फोन कब लगा था आपका?
3: मेरे को 12-13 दिन हो गए।
2: 12-13 दिन हो गए, मतलब एक महीने का इंतजार तो नहीं हो पाया।
3: एक महीने का, अभी दूसरे श्रोता तो रोज ही लगा रहा, मैंने तो फिर भी इतना टाइम ले लिया।
2: जी जी, चलिए आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
3: जी शुक्रिया मैम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन।
4: हेलो नमस्कार।
3: नमस्कार
4: चाची जी, मैं बोल रहा हूँ विज्ञात, और मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से। और आचार्य जी, सबसे पहले तो सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरा तो सबसे बड़ा गुरु आकाशवाणी रहा है, और आप सबको भी मेरा प्रणाम, क्योंकि मेरे तो आप ही गुरु है, हमें आपसे ही बोलना।
3: देखिए हम आपके गुरु कैसे हो सकते हैं, लेकिन आकाशवाणी हो सकता है, बहुत सारे तरह तरह के प्रोग्राम लाता है और बहुत सारी जानकारियां लाता है, ये बात सही है।
4: लेकिन आप इतने अच्छे से बोलते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है।
3: जी जी जी, ऐसे
4: कोई सबसे पहले गुरु का। और देखिए, आज 3 महाकलाकारों की पुण्यतिथि है। पहले तो ये बदरुद्दीन काजी, जो जानी बकर के नाम से जिन्हें जाना जाता है।
3: जी जी जी।
4: और ये अपने सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इंदौर के ही रहे हैं। और फिर आज राजा महेंद्र अली साहब की पुण्यतिथि है।
3: जी।
4: और सुधीर फड़के जो संगीतकार रहे, जिन्होंने भाभी की चूड़िया में दिया था संगीत, उनकी भी आज पुण्यतिथि है। तो तीनों को श्रद्धांजलि।
3: जी जी।
4: मैं सुनना चाहूंगा चौधरी का चांद में जो गीत है रफी साहब का,
3: जी।
4: मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के,
3: जी, जॉनी वॉकर जी पर फिल्माया गया गीत है।
4: जी जी जी।
3: अच्छा, बहुत अच्छा गीत आपने चुना है और सबको आपने याद किया। यही समय होता है कि हम सबको याद कर पाते, तो अच्छा लगा। और
4: जी, रफी साहब की भी है परसों।
3: हाँ,
4: लेकिन मैं

0: अभी श्रोताओं से भी निवेदन है कि दूसरों को भी मौका दे, क्योंकि परसों तो मैं करूंगा नहीं, तो रफी साहब को भी आज ही याद कर लेता हूँ।
1: जी जी,
0: है ना,
1: बहुत अच्छी बात है
0: जी।
1: ये श्रोता, ऐसे सभी श्रोता ध्यान रखेंगे तो कार्यक्रम की खूबसूरती भी बनी रहेगी और सभी को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।
0: तो उसमें क्या है, चल लीजिए, एक ही एक श्रोता फोन करते हैं तो उसमें क्या एक रास्ता मजा नहीं आता है
1: जी।
0: ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड प्रोग्राम कर रहे हैं।
1: है
0: ना, तो सभी से ये निवेदन है कि सभी को मौका दे। और देखिए, बात करने की सभी का मन होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल भी रखना चाहिए,
1: जरूरी है, बिल्कुल।
0: आकाशवाणी का वैसे भी दे रहा है, बहुजन दे रहा है, बहुजन सुखा है
1: जी,
0: है ना
1: जी। तो बहुत अच्छा लगा व्यास जी, और आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, श्रद्धांजलि जॉनी वॉकर जी को भी और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी, और भी जिनकी पुण्यतिथि है। तो धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: विजय भाटिया
0: जी। विजय जी बताएं, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये नाम पिक्चर,
0: नाम पिक फिल्म का कौन सा गीत?
1: चिट्ठी आई है
0: जी। नाम फिल्म का ये गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। बताएं आप क्या करते हैं?
1: मैं रिटायर्ड हूँ एम्बॉय से।
0: इंदौर में ही रहते हैं?

0: अच्छा, और अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं इन दिनों?
1: समय तो रेडियो सुनते हैं दिन भर, और क्या, प्रोग्राम सुनते रहते हैं।
0: जी, पंकज उदास के स्वर में ये गीत
1: हाँ
0: आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी, हाँ
0: धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैडम
0: आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही
1: जी।
0: आवाज आपकी बराबर नहीं आई, कौन सा

0: बोल रहे हैं
1: जी। मैडम जी, मैं जगत सिंह चढ़ार, ग्राम पिपलिया वराई, तहसील बेगौन, जिला रायसेन से बोल रहे हैं। मैडम जी
0: जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: मैडम हमें कर्मा फिल्म का सुनना है।
0: कौन सा गीत?
1: हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए।
0: जी जी जी क्या करते हैं आप जगत सिंह जी?
1: मैडम जी मैं किराने की दुकान कर रहे हैं।
0: अच्छा, और गाने कितने सुनते हैं?
1: गाना तो मैडम जी रेडियो चलता ही रहता है। आपका केंद्र है, छतरपुर है, सागर है, भोपाल है, विविध भारती है, और भी कई से केंद्र चलते ही रहते हैं। जो उन पे फरमाइश आती रहती वो सुनते रहते हैं।
0: फरमाइशी प्रोग्राम ज्यादा सुनते हैं
1: जी। क्यों फरमाइश प्रोग्राम इसलिए सुनते हैं कि उसमें जानकारी अपन को मिलती है, क्योंकि अलग अलग लोग बातें बतियाते हैं तो कौन से क्षेत्र में क्या हो रहा है, कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ कौन सा मौसम चल रहा है
0: जी,
1: ये जानकारी सब।
0: तो जगत सिंह जी आपकी जगह की भी जानकारी हम चाहेंगे, कैसा मौसम है, क्या चल रहा है?
1: बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है
1: मैडम जी?
0: अच्छी बारिश है।
1: हाँ, सुबह से हो रही है बारिश
0: जी। इंदौर में तो इस साल बारिश कम है, उतनी अच्छी नहीं है
1: जी। कम तो अभी सभी जगह है, क्योंकि अपने मध्य प्रदेश में तो 20 जिला में तो पानी कम गिरा है, बहुत ही कम सूखाई में है। जी
0: तो उम्मीद करें कि श्रावण अच्छा पानी लेकर आएगा। और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद फोन करने के लिए
1: जी। क्योंकि मैंने बहुत दिन से सुन रहे थे, मनो कॉल करते हैं
0: जी,
1: ट्राई करना पड़ी है, जब लगता है कॉल तो अब लग गया, मैंने कहीं सोचा कि चलो गाना।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ लोग विराम देते हैं तो नए नए श्रोताओं को जुड़ने का मौका मिलता है, तो हम यही सभी से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा अंतराल दें ताकि दूसरे लोग, कई लोग हैं जो अपना फोन कॉल लगाना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, सभी को मौका मिल सके
1: जी। नंबर नहीं मिल रहा तो आपको तो बहुत देर में याद कर पाओ, हमने तो हमने अब दूसरा बार लगाया है, 8-10 दिन हो गए जब लगाया था।
0: अच्छा, तो अब 1 महीने के अंतराल के बाद दोबारा फोन कीजिएगा।
1: जी जी
0: जी, चलिए आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत, धन्यवाद फोन करने के लिए
1: जी। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। तालनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा कच्चे धागे।
0: कच्चे धागे, गीत के बोल?
1: भी प्यार नहीं करना जहां तारा कहता है।
0: जी अपने बारे में बताएं अरविंद जी।
1: मैं किराने की दुकान चलाता हूँ।
0: कहाँ पर?
1: श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, और किस तरह के गीत संगीत पसंद करते हैं?
1: जी 90 से 2000 के बीच की ज्यादा अच्छी लगते हैं मुझे।
0: जी आपने कच्चे धागे फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहा था?
1: प्यार नहीं करना जहां सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है।
0: जी अलका याग्निक के स्वर में ये गीत है।
1: ड्यूट आवाज में शायद मैम।
0: अच्छा, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए अरविंद जी।
1: आपका धन्यवाद फोन लेने के लिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ।
0: शाहरुख जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं कुशलगढ़ से बोल रहा हूँ।
0: बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी, मैं कवाली सुनना चाहता हूँ, बरगो झोली मेरिया मोहम्मद।
0: बजरंगी भाईजान फिल्म से ली गई।
1: हाँ जी, बजरंगी भाईजान।
0: जी, शाहरुख जी कार्यक्रम का अंतिम फोन कॉल है और हम आपको सुनवा देते हैं आपके पसंद की कव्वाली, क्योंकि समय कम है और ये कव्वाली काफ़ी बड़ी है।
1: जी, कोई बात नहीं, आप भी सुना दोगे तो चलेगा।
0: जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद की ये कव्वाली,
1: जी
0: सुनिएगा रेडियो सेट पर। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए।
1: जी शुक्रिया।

0: श्रोताओं, अब आज का एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: अभी आप एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक, और हमारा फोन नंबर है 2660902, STD कोड है 0755। आपके फोन कॉल्स का इंतजार है, फोन कीजिए और सुनिए अपने पसंदीदा गीत। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
2: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
1: जीनत परवीन जी, कैसी हैं आप?
2: जी अच्छी हूँ मैम।
1: क्या करती हैं जीनत परवीन जी?

0: हाउसवाइफ
1: हूँ। अच्छा, और क्या शौक है आपके? मतलब एक तो हम समझ गए कि आपको गीत सुनना पसंद
0: हूँ,
1: है।
0: गाने सुनना, पढ़ना,
1: अच्छा, क्या पढ़ती हैं?
0: पेपर पढ़ती हूँ वैसे तो डेली, कुछ स्टोरी पढ़ती हूँ या तो बुक
1: अच्छा
0: में बेसिकली।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: फिल्म का नाम है कच्चे धागे, पुरानी है ना
1: जी।
0: जी, उसका गाना है मेरे बचपन तू जा जा जवानी को ले आ जा रे जा मिल दिल का वास्ता, ये वाला
1: जी बिल्कुल, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है, उपलब्ध है हमारे पास, आपको
0: जी।
1: सुनवाते हैं।
0: शुक्रिया मैम
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए।
0: जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार सर जी, मैं श्री चंद्र निषाद ग्राम जलालपुर जिला वाला तहसील वगैरह से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक है जी।
0: क्या चल रहा है आपके यहाँ बांदा में?
1: मैं तो किराने की दुकान हूँ, दिव्यांग हूँ, किराने की दुकान है उसी में बैठा रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, किराने की दुकान चलाते हैं आप तो। ये अभी गर्मियों में तो बांदा बहुत गर्म हो गया था, अभी क्या हाल है?
1: जी बहुत, अभी भी उमस चल रही है, जिस दिन पानी गिर गया थोड़ी राहत मिल जाती है
0: जी,
1: वरना पानी जहाँ निकल गया था बड़ी उमस होती।
0: तो पानी गिर रहा है? अच्छा,
1: पानी कल गिरा था थोड़ा।
0: अच्छा,
1: अभी थोड़ा कम ही गिर रहा है, ज्यादा पानी नहीं गिर रहा।
0: जितनी आवश्यकता है उतना नहीं गिर रहा होगा।
1: जी जी जी।
0: अच्छा चलिए, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: टूट के डाल से हाथों पे बिखर जाती है,
0: ये गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाते हैं
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए
1: जी। धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे की सुने।
1: नमस्कार दीदी
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: दीदी मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ, सारनाथ वाराणसी से।
0: बाबू यादव जी वाराणसी से, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया दीदी, और आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या चल रहा है वाराणसी में?
1: दीदी यहाँ कांवरियों का भीड़ लगा हुआ, सामान आने वाला है।
0: हाँ।
1: तो कांवरिया धीरे धीरे आ रहे हैं
0: जी,
1: और यहाँ का मौसम भी बढ़िया हो गया है क्योंकि रुक रुक कर बारिश यहाँ बीच बीच में हो रही है
0: जी,
1: तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं बाबू यादव जी?
1: दीदी मेरी दुकान है जनरल स्टोर के सारनाथ में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: आज दीदी क्योंकि यहाँ का मौसम बढ़िया सावन की तरह हो गया है, तो चुपके चुपके में एक गाना है कि अब की सजन सावन में, ये वाला हमको सुनाइएगा।
0: बहुत अच्छा गीत है, बहुत सुंदर गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है। अब आपको गाना सुनवा देते हैं, आपकी पसंद का लता मंगेशकर जी की आवाज़।
1: जी जी सुनवा दीजिए, और नमस्कार आपको।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्ते मैडम। नमस्ते,
0: किनसे बात हो रही है?
1: जगत सिंह चढ़ार बोल रहा है मैडम जी, ग्राम पिपलिया बराई तहसील बिगौन जिला रायसेन।
0: रायसेन से जगत सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है। आप लोगों के ऊपर की कृपा है, सब ठीक है।
0: अच्छा, क्या करते हैं जगत सिंह जी?
1: ये मैडम जी दुकान करें, किराने की।
0: किराने की दुकान करते हैं
1: जी।
0: अच्छा, और रायसेन में हम तो भोपाल में ही हैं, तो हम मौसम तो जानते हैं किस तरह से है।
1: जी जी आपके यहाँ से तो हमारे यहाँ आता है मौसम।
0: हाँ,
1: थोड़ा थोड़ा गिर रहा पानी हमारे यहाँ सुबह से।
0: और ठंडक है उतना, मतलब जितना आवश्यक है उतना पानी गिर रहा है?
1: नहीं, मैं अब 3 दिन खुल गया तो 3 दिन के पहले ही गिरा था पानी अच्छा। और आज सुबह से फिर रिमझिम लग गई थोड़ी थोड़ी। हाँ ठंडक सी तो आ गई है अभी।
0: अच्छा जी, तो गीत बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं फिर?
1: जी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो हम आपको और रानू दीदी को कोयल तेरी बोली जो गाना सुनना चाहते हैं मैडम, बेटा फिल्म का।
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं ये गीत बेटा फिल्म से।
1: और आप लोगों से हमें बात करके बहुत अच्छा लगता है, अगर प्रोग्राम सुनते हैं तो हमें बहुत बातें मिलती हैं आपसे। रेडियो से हम बहुत कुछ सीख गए, क्योंकि मैं तो दिखता भी नहीं है,
0: हाँ जी,
1: फिर भी मैं बहुत बातें सीख गए रेडियो से।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप श्रोताओं का इस तरह फोन आता है और आप अपनी फरमाइशें बताते हैं। और
1: क्योंकि मैं फोन लगाते दिखता नहीं है, फोन लग जाता तो मैं बहुत खुश होता कि हमारा फोन लग गया।
0: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: नमस्ते,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्ते मैम, मैं नंदिनी तिवारी बोल रही हूँ।
0: नंदिनी जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है
1: फिलहाल? तो हम कॉल ही लगा रहे थे और क्या, बैठे थे अभी।
0: अच्छा अच्छा, कहाँ से बात कर रही है नंदिनी?
1: सागर से।
0: सागर
1: और आप
0: से?
1: रक्षा मैम है ना?
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: और आज मुझे गाना सुनना है।
0: बताए।
1: मूवी का नाम है हेट स्टोरी 3।
0: जी
1: बजा तुम हो, डेडिकेट आपको रानू दीदी को रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: परम माननीय दीदी, सारा सा प्रेम प्यार है। नमस्कार।
0: नमस्कार, किनसे बात हो रही है
1: जी? दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से करता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।
0: राधे राधे, कैसे हैं शारदा प्रसाद जी?
1: दीदी, मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।
0: क्या चल रहा है मथुरा में इन दिनों?
1: दीदी, सर्वप्रथम मैं आपको, आकाशवाणी मध्य प्रदेश को, साथ में सभी सुनने वाले श्रोताओं को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के साथ साथ मुरिया पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन
0: जी,
1: और गीत की बोल है मौसम का जादू है नितवा। बहुत ही सुंदर प्यारा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: लता मंगेशकर, एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी, आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
0: आपका भी धन्यवाद, नमस्कार।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: हेलो जी,
0: जी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किन से बात हो रही है?
1: मैं सपना बोल रही हूँ, गुना से।
0: सपना जी, कहाँ से आवाज़ आपकी थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही?
1: गुना से बोल रही हूँ मैम।
0: गुना से सपना जी,
1: जी
0: कैसे हैं
1: मैम,
0: आप?
1: ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है गुना में?
1: हल्की हल्की बारिश हो रही है।
0: अच्छा,
1: जी मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हल्की हल्की बारिश में कौन सा गीत सुनना चाहती हैं सपना जी?
1: मूवी का नाम है सत्ते पे सत्ता और गाने के बोल हैं झुका के सर को बोलो।
0: सत्य पे सत्ता फिल्म से बिल्कुल आपको सुनवाते हैं गीत।
1: ओके मैम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
2: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू।
3: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: किया क्या?
1: अब तुम करके दिखा, कैसे बोलोगे?
2: How do you do?
1: How do you do?
2: I love you.
1: ओहो, I love you इतनी जल्दी नहीं रे बाबा।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा।
3: खामों का बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
4: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करिए गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैम, रानू बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी कैसी हैं आप?
1: जी ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? रक्षा जी बोल रहे हो ना?
0: जी जी
1: जी जी कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है रानू जी?
1: ठीक हूँ, बस खाना बनाकर फ्री हुई हूँ।
0: अच्छा,
1: तो वो ट्राई कर रही थी दो चार बार, मतलब वैसे मैंने रिडायल पे छोड़ रखा था तो एकदम से रिंग चली गई, तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। और क्या, किचन में हूँ फिलहाल तो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी रानू जी?
1: मैम मुझे गाना सुनना है, मूवी का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे, ऋतिक रोशन वाली, इसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म से।
1: जी जी और मुझे कुछ अनाउंसर है, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आप हो, कविता मैम हुई, और हाँ और सरिता जी हुई, मतलब ऐसे सभी अच्छे हैं, बट फिर भी कोई खास खास है तो अच्छे हैं, मुझे पसंद आते हैं अनाउंसर भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी,
1: थैंक यू मैम।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार बहन जी, नमस्कार।
0: किन से बात हो रही है?
1: मांगीलाल चंदेल जी से बात हो रही है, ग्राम सनोतिया, जिला गुना से।
0: मांगीलाल चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बहन जी मैं बढ़िया हूँ
0: जी,
1: आपकी दुआ से बढ़िया हूँ। बढ़िया बहन जी, आपने मेरा कॉल उठाया, आपको धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो क्या करते हैं मांगीलाल जी?
1: मैं किसान

0: हूँ दीदी, खेती किसानी करता हूँ।
1: किसान है, खेती किसानी करते हैं, क्या लगाया हुआ है अभी?
0: अभी तो सोयाबीन है, धान है, मक्का है, उड़द है, मूंगफली है, खरीफ की फसलें लगाई।
1: अच्छा,
0: खेतों में।
1: अरे वाह, अरे वाह जी। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज?
0: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा बेताब, और गाने के बोल रहेंगे, बादल यूं ही गरजता है, दर्द भी ऐसा लगता है, चमक चमक के कहीं ये बिजली हम पे गिर जाए ना।
1: अरे वाह, लता मंगेशकर
0: जी, कुछ मित्रों को याद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बेटा सिंह यादव जी हैं, फूलचंद पाल जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं, प्रेमदास बाबा जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, इन सभी को यह गाना डेडिकेट रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी मित्रों को। सुनवाते हैं ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में
0: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वनकर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा की जानी है। विधेयक में हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण भी किया। प्रदेश भर में आज आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में आयोजित गुरु पूर्णिमा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गुरुओं के सम्मान के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल यानी 30 जुलाई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं के लिए वैकल्पिक मार्ग और टेंट की व्यवस्थाएं भी की हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर से मानसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है, जिसके चलते आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश और 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजे हैं। आपके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। नमस्कार, और शुरू करते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए पत्रों को हम आपके नाम के साथ, आपकी जगह के नाम से, जहाँ से आप पत्र भेजते हैं उसके साथ पढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपकी ही फरमाइश के, आपकी पसंद के गीत। सबसे पहले सुनते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है, ये जो खत हमारे हाथ में है वो हमें मिला है गुरु चौक पोफाड़ी तालुका उमरखेड़ से गणेश राव लांडगे, विमलताई लांडगे, कुमारी अलका, विनायक कुमार, कुमार वरुण लाड़के और गाँव फ्रांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू ने। तो सुनते हैं इन सभी की पसंद पर अर्पण फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है जीने की राह फिल्म से, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है लाबरिया भैरू इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, रितिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। और साथ ही साथ इस गीत को पसंद किया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, साथ में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की भी है। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और इस गीत को सुनना चाहा है चक 5 MD पतरोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर, इंदु और सुनील जनागल ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है पंकज साहू, तिरुपति साहू, थनक्ष और आरू साहू ने और ग्राम बगबुड़ व पथरिया से नरेम नेताम और कुसुम नेताम ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आई मिलन की बिला फिल्म से ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब आपकी नज़र करने जा रहे हैं ना खुदा फिल्म का गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में। गीत रचना निदा फाजली की है और संगीत खयाम का है। इस प्यारे से गीत को पसंद किया है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकाश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से ये हमारे श्रोता है शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी। इसी गीत के लिए पत्र भेजा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी ने। डुमराओं बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने। और सारिमपुरा बक्सर से ये हमारे श्रोता है आसमा खातून अंसारी, राज एसडी अंसारी, महताब आफताब और मेराज अंसारी।

अगले गीत के लिए हमें पत्र भेजा है खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विनय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, और इस गीत को सुनना चाहा है टावर स्ट्रीट न्यूटन छिंदवाड़ा से निसार खान, उमेश गुप्ता, महेश साहू, रफीक खान, जामई रोड चांदा मेटा है, छिंदवाड़ा से ही ये हमारे श्रोता है, सादिया जारा, आलिया अलीशा, नेहा गंगवाल और उनकी सखिया, और थाना रोड बक्सर से ये हमारे श्रोता है प्रतीक केशरी, प्रज्ञा केशरी, ओमानंद केशरी, और गोला बाजार बक्सर से ये फरमाइश है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। ये सभी श्रोता हमारे सुनना चाहते हैं हमारा ही फिल्म का गीत मुबारक बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने गीत के बोल लिखे हैं और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है।

0: सिलसिला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में जावेद अख्तर ने लिखा है, शिवहरी का संगीत है। इस गीत को पसंद किया है धामणी मानोरा जिला वाशिम से मेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुजा डेरे, गुलशन डेरे और अमोल डेरे ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: आपकी चाय।
4: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
4: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
4: इतना इजी?
3: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
4: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
5: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
10: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
11: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
10: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
12: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
10: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
11: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
10: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
13: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
14: क्या?
13: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
14: वो कैसे?
13: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
14: और सुनेंगे कैसे?
13: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
10: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
11: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
10: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
15: इस समय आप हैं हमारे साथ।
16: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे, इस धारावाहिक की 14वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 14वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि के सकुशल लौट आने के लिए रानी पिंगला कठोर तांत्रिक अनुष्ठान करती हैं। उधर राजा भर्तृहरि उनके काव्य की प्रशंसिका चारुमित्रा से मिलने चंद्रपुर की ओर चल रहे हैं। अब आगे।

राह पर चले जा रहे थे राजा भर्तहरि। दुविधा और असमंजस, दिशा और गंतव्य अस्पष्ट। संभवतः चंद्रपुर, जहां उनकी भेंट चारुमित्रा से हो। वह चारुमित्रा जिसका सौंदर्य और कला लोक गाथा का स्वरूप ले चुकी है।

0: चलते चलते। खेत है तो कहीं बस्ती भी होगी।
1: यहाँ पानी मिल सकेगा बंधु? क्या मैं आ सकता हूँ?
2: संभल कर बेटे, कोई पथिक लगता है, प्यासा थका हुआ होगा। जय महाकाल।
1: जय महाकाल।
2: आपका स्वागत है। प्रवेश की अनुमति तो महालयों में मांगी जाती है। ये किसान का आंगन है, पधारिए। किसान निषिद्ध प्रवेश का दंभ नहीं पालते। तो अतिथि को जाना कहाँ है?
0: चंद्रपुर जाना है बंधु।
2: चंद्रपुर? चंद्रपुर तो रूप और राग की नगरी है अतिथि महोदय। आप ठहरे विरागी बंधु, आपकी गांठ में तो शायद फूटी कौड़ी भी ना हो। चारु मित्रा नाम की स्वर्ग से भक्की अप्सरा रहती है चंद्रपुर में।
0: तुमने कभी चारु मित्रा को देखा है?
2: क्यों नहीं, सारंगपुर के बसंतोत्सव में देखा था उसे।
0: कैसी है वो?
2: सुंदर, कोमल, कमनीय, किंतु हमारे किस काम की पथिक। देखो वो आ रही है, मेरी पत्नी, मेरी चारु मित्रा। मेरा कलेवा लेकर यहां से लौटेगी तो चार गट्ठा चारा चौपायों के लिए सिर पर ढोकर ले जाएगी। इस बोझ से चंद्रपुर की चारु मित्रा की तो गर्दन ही टूट जाए। हमारी सुंदरता, हमारा गुण श्रम से जुड़ा है पथिक। तुम चाहो तो थोड़ा विश्राम कर लो, या फिर मेरी चारु मित्रा से बातें करो। वह जो माथे पर चिंता की लकीरें और अधरों पर स्मित लिए यहां पहुंच रही है, भोजन लाई है। मेरा आग्रह है कि मध्यान भोजन हम साथ ही करेंगे। तब तक मैं खेत जोत कर आता हूं। चल चल चल चल, अरे अरे अरे, चलो बेटो चलो।

0: पथिक महाशय, साधु हो अथवा साधक या गृहस्थ।
1: देवी, क्या इतना पर्याप्त नहीं कि मैं एक पथिक हूँ?
0: पथिक हूँ किंतु हमारे क्षेत्र के लिए तो अतिथि हो और अभ्यर्थनीय हो। साधु या गृहस्थ, उसी अनुसार अभ्यर्थना करनी होगी।
1: सत्य तो ये है देवी कि मैं ना तो साधु हूँ और ना ही गृहस्थ। अभी तय नहीं कर पाया हूँ कि स्वयं को किस कोटि में रखूँ। यूं पहले मैं गृहस्थ था और अब विरक्त।
0: पत्नी से लड़कर गृह त्यागा है या उस पर अविश्वास करके?
1: ये बताना आवश्यक है क्या?
0: छिपाना चाहे तो वैसा ही करें।
2: तभी किसान हल का चक्कर पूरा करके लौटता है।
3: ये चंद्रपुर जा रहे हैं, इनका कोई परिचित या संबंधी वहां नहीं है। एक ही आकर्षण है, चारों मित्रा। तुम्हें कोई संदेशा वंदेशा पहुंचाना हो तो सहायक बन सकते हैं ये।
0: पथिक, मेरे पति व्यंग कर रहे हैं। कारण यह है कि हमारा एकमात्र पुत्र चारु मित्रा के सम्मोहन में फंसकर चंद्रपुर में अटका पड़ा है। अभी उसकी वय ही क्या है, मात्र 19 वर्ष। पावरा हो गया है। उसका नाम श्रवण है। बड़े चाव के साथ हमने उसे ये नाम दिया था। यदि अवसर मिल जाए तो वहां की भीड़ में उसे खोजना और कहना उसकी माँ अत्यंत आतुरता पूर्वक उसका स्मरण करती रहती है।
1: मैं वचन देता हूं देवी कि चंद्रपुर पहुंचकर मैं श्रवण को तुम्हारा संदेश अवश्य दूंगा और प्रयत्न भी करूंगा कि वो तुम्हारी गोद में लौट आए।

0: ठीक है तो मैं चलूं?
1: हाँ जाओ, तुम्हारी कामना साधना सफल हो। और सुनो, मैं जान गई हूं कि तुम हमारी भांति ना तो ग्रामीण हो और ना ही साधु साधक, तुम कुछ और हो।
0: और क्या हो सकता हूं?
1: अभी नहीं, लौट कर आना, तब स्यात में बता सकूं कि तुम कौन हो सकते हो।
2: भ्रातरी किसान तथा उसकी पत्नी से विदा लेकर आगे बढ़ते हैं।
0: ओहो, ये तीक्ष्ण गंध, क्या निकट ही कहीं मदिरा की आसवनी है? उसी से पूछता हूं।
3: महोदय, इस ग्राम नगर का नाम क्या है?
4: पथे, नए लगते हो तुम। इस ग्राम नगर का नाम ही मधुका है। भांति भांति की मदरा यहाँ बनाई और विक्रय की जाती है, देश देशांतर तक खयाती है इस ग्राम की और यहाँ की मदरा की भी।
0: अच्छा, तो यही है मधुका।
4: हाँ, यही है मधुका। लगता है तुमने भी चखी है यहाँ की मदरा। कहाँ से आए हो?
0: दूर एक ग्राम है, पैठार, अवंती राज्य में है। मेरा एक स्वजन कोप करके घर छोड़कर चला गया था, उसी की खोज में। संभवतः वो इस ओर आया हो। लगता है कि यही मुख्य बाजार है, तनिक देख लूं?
4: हाँ, देखो, अवश्य देखो। देखो ना कितनी चहल पहल है।
5: अरे माल ला दो भाई, माल ला दो। अरे देरी हो रही है। अरे ला दो मेरा माल भाई।
6: अरे हटो हटो,
5: अरे देरी हो रही है। मेरा माल अभी तक नहीं लदा है। अरे 60 कोस दूर पहुंचना है भाई। आज से उत्सव आरंभ हो रहा है उज्जैनी में, राज्य उत्सव है। ऐसे ही अवसरों पर तो कुछ कमाई हो पाती है। दिन रात चलकर जब तक पहुंचूंगा तब तक उत्सव समाप्त हो चुका होगा।
0: काहे का उत्सव है बंधु?
5: अरे भाई उज्जैनी का क्या, वो तो उत्सवों की नगरी है, वहां तो सदैव उत्सव ही उत्सव।
4: अरे भाई, महादेव की कृपा से महादेवी पिंगला गर्भवती हैं। हाँ, उनके गर्भ में कनक शंगा का भावी शासक आया है। प्रजा बहुत उल्लासित है, विराट उत्सव आयोजित किया गया है। देश देश के गुणीजन और कलावंत उज्जैनी में जुट रहे हैं। अरे आचार्यों के शास्त्रार्थ होंगे, नाट्य संगीत काव्य खेल तमाशे कौशल और न जाने क्या क्या।
5: पर महाराज, भ्रातरी अभी राजधानी में नहीं है। सुना है ज्योतिषी के परामर्श पर वह कुछ दिनों बाद वापस आएंगे।
4: अरे बंधु, महाराज नहीं होंगे तो उत्सव का आनंद ही कैसा।
5: ठीक कह रहे हैं आप। बताया गया है कि चारों मित्रा ने उत्सव का आमंत्रण ठुकरा दिया है। ठीक ही किया, जब गुणी नरेश उपस्थित ना हो तो अपनी कला का प्रदर्शन किसके आगे करती। मूर्ख मद्यपों की भीड़ में उसने निर्णय लिया है कि महाशिवरात्रि के दिन वो महाकाल को अपना नृत्य और गायन समर्पित करेगी।
4: साध बंधु, उसका ये निर्णय प्रशंसनीय है।
5: निर्णय की तो प्रशंसा कर ली, लेकिन मूर्ख मद्यप ना हो तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। अरे वही तो हमारे अन्नदाता हैं।
0: बंधु, आपने अभी कहा कि रानी पिंगला गर्भवती हैं?
5: हाँ भाई, सुना तो यही है। इतने बड़े उत्सव का आयोजन इसी निमित्त से हो रहा है, आपको कोई आपत्ति है?
0: अरे मुझे आपत्ति क्यों होने लगी मित्र, ये तो सभी के लिए परम प्रसन्नता का अवसर है। आपने ये भी बताया कि राजा भर्तृहरि किसी विशेष अनुष्ठान में है।
5: अरे हाँ भाई, यह भी कहा था, क्योंकि यही सुना भी है और सच भी यही है। महाराज और महारानी के पवित्र अनुष्ठान से ही ये सुअवसर आया है, अन्यथा उनके विवाह को इतने बरस हुए और उज्जैनी वासी

0: सुसंवाद पाने के लिए तरसते रहे।
1: आप अनावश्यक कुपित हो रहे हैं श्रेष्ठी, मैं तो केवल अपनी जन्मभूमि के विषय में जानने को उत्सुक हूं। अपनी उलझनों के कारण मैं कुछ समय पूर्व अवंती से निकला था, किंतु अपने देश अपनी भूमि के बारे में जानने की उत्कंठा तो रहती ही है।
0: तो आप उज्जैनी से हैं?
1: जी, नागरिक हूं उस राज्य का।
0: तो फिर हमारे ही बंधु हो।
1: बंधु कहा है तो मेरा भी अधिकार बनता है। उज्जैनी के विषय में कुछ और बताएं।
0: बताने को और क्या है, महाकाल की पूजा अर्चना यथावत चल रही है और उज्जैनी के कार्यकलाप भी। पानागार तीर्थ ग्रहों में लोग उसी तरह जुटते हैं, रूपांगनाएं अपने स्थान पर हैं, पावस बीतने से व्यापारी आ जा रहे हैं, पढ़ने की सजग दीप्ति लौट आई है, उत्सव के कारण चहल पहल बढ़ गई है। पूछना ही भूल गया, मद्यपान में रुचि है तुम्हारी, प्रस्तुत करूं क्या?
1: नहीं बंधु, धन्यवाद। स्वाद चखे युग बीत गया, अब ना तो इच्छा है और ना आवश्यकता। कुछ और बताइए ना अवंती के विषय में।
0: हाँ, नरेश की अनुपस्थिति से राजपुरुष निरंकुश हो चले हैं। पहले तवे छिपे उत्कोच ली जाती थी, अब खुलेआम चाहते हैं। हम व्यापारियों की तो सांसत है।
1: आप अमात्य महामात्य को अपनी पीड़ा से अवगत क्यों नहीं कराते? वंचक राजकर्मियों को दंड दिलाना भी तो आपका दायित्व है।
0: भली कही, राजकर्मियों को दंडित करवाने की बात करते हो। शिल्पी, दास और भृत्यों को छोड़कर हर एक राजकर्मी किसी न किसी अमात्य या सामंत के मुंह लगा है। फिर महामात्य, अमात्य या नरेश तक पहुंच पाना सरल है क्या? किसी तरह पहुंच भी जाओ तो किसी राजकर्मी राजपुरुष को दंड देने से पहले उन्हें भी सोचना पड़ेगा। इतना सरल नहीं है भाई, हमें रहना तो इसी सरोवर में, इन मगरमच्छों के आसपास। सच कह रहा हूं ना बंधु?
2: बिल्कुल सत्य वचन है आपके बंधु।
1: पर उज्जैनी के महामात्य की तो बड़ी प्रशंसा है, वो सुयोग्य और सत्य काम है।
0: वह तो है, सुना है कुछ लोग उन्हें हटाने की दुर्भिसंधि रच रहे हैं।
2: लीजिए महाशय, आपकी लगान पूरी हो गई, गिन लीजिए भंडकों को और उनका हिसाब भी लगा दीजिए।
0: अब क्या गिनूं बंधु, मैंने पहले ही गिन लिए हैं। अच्छा तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ।

0: महामात्य के विरुद्ध दुरभि संधि, तब तो अवंती की प्रजा नितांत अरक्षित हो जाएगी। हे देव, क्या मुझे उज्जैनी लौटना चाहिए? यह भी संभव है कि दशाण अथवा दक्षिण के आसपास वाले सामंत कोई षड्यंत्र बुन रहे हो, पर नहीं, अभी नहीं। अभी तो कुछ समय चारुमित्रा के यहां व्यतीत करूंगा, तब तक शायद कुछ और सूचनाएं मिले, स्थिति अधिक स्पष्ट हो।
1: अरे आओ, मधुचंद्र का विख्यात पारागार यहाँ है। तुमने सुना ही होगा कि अंटी में दाम हो या न हो, मधुचंद्र तुम्हें निराश नहीं करेगा। अरे दो चषक और दो रोटी उधार का यहाँ चलता ही है, उधार चुकाओ या न चुकाओ। भैरव बाबा की कृपा से मधुचंद्र को कभी कहीं कोई घाटा ही नहीं होता, समझे नहीं समझे? अरे आओ परदेसी, मुहूर्त पर यही विश्राम कर लो।
0: आपकी सदाशयता के लिए कृतज्ञ हूं महाशय। मदपान

0: मेरी रुचि नहीं और भूख भी नहीं है। मुझे तो बस वो दिशा बता दें जहां से चंद्रपुर के मार्ग तक पहुंच सकूं, मुझे वहीं जाना है।
1: चारु मित्रा के दर्शन का पुण्य कमाने जा रहे हो मित्र? अरे यात्री महाशय, भैरव महाराज तुम्हारा भला करे, लगन तो तुम्हारी चोखी है चोखी। अरे अभी अभी एक सारसवाह उधर के लिए निकलने वाला है, ए उसी के साथ हो लेना, समझे कि नहीं समझे? अरे 3 दिनों में रूप सुंदरी के देश पहुंच जाओगे।
0: किंतु मार्ग तो 2 दिन का बताया गया है।
1: अरे तुम्हें मणिभद्रा का क्षेत्र बचाना होगा, समझे? वहां किसी भैरवी की दृष्टि में अगर आ गए तो फिर मुंडमाला की शोभा बनकर रह जाओगे। क्या क्या आत्महत्या का विचार लेकर निकले हो?
0: नहीं भाई, पर मणिभद्रा के दर्शनों का सौभाग्य तो मिलेगा ही।
1: मणिभद्रा का दर्शन? ए दुस्साहसी हो?
0: नहीं, सहज उत्सुकता भर है बंधु, बहुत सुन रखा है। जो प्रारब्ध वृकवन प्रेतपुरी और हिंस जीवों से भरे महारव्यों में भी निरापद रखे हुए है, वो यहां भी सुरक्षित रखेगा। औगण ने भी कहा था कि गुरु की आज्ञा है मुझे सुरक्षित रखने की, फिर जो होना है सो हो ले।
1: ए भाई, अरे क्या निश्चय कर रखा है बताओ?
0: सोचा तो है
1: मणिभद्रा, अरे अपने क्षेत्र से बाहर कभी किसी का अनिष्ट नहीं करती। जिस किसी ने उसकी साधना क्षेत्र में हस्तक्षेप किया फिर वो वापस नहीं लौटता, समझेगी नहीं? अरे उन्हें अपनी साधना में किसी अवांछनीय की उपस्थिति स्वीकार ही नहीं है, समझे? मार्ग में तुम्हें मणिभद्र की एक विशाल काय प्रतिमा के दर्शन होंगे, दर्शन। वहां सभी यात्री शार्थवाह ठहर कर मणिभद्र की अर्चना और मार्ग की सुगमता के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना, समझे? यहां से 3 मार्ग है, 3 है। दाहिना विदिशा को जाता है और ये बायां मार्ग चंद्रपुर होते हुए पद्मावती के लिए निकल जाता है, और ये जो ये सीधा मार्ग देख रहे हो ना, देख रहे हो है? नहीं समझे? ये सीधा मार्ग जो है ये मणिभद्रा के क्षेत्र में पहुंचाता है।
0: चंद्रपुर की दूरी कितनी होगी महाशय?
1: मणि क्षेत्र होकर 8 योजन, सुगम क्षेत्र से 16 योजन। लेकिन तुम तो छोटे रास्ते से जाने वाले हो ना, मणिभद्रा की कृपा हुई तो भाई 2-2.5 दिन में गंतव्य पा जाओगे, समझे?

0: अब मणिभद्रा से भेंट का संकल्प कर बैठे हो तो तुम मेरा भी एक काम कर देना भैया, मैं तुम्हें तुम भी और ये द्राक्ष देता हूं। हे यात्री, मेरी ओर से ये मणिभद्रा को अर्पित कर देना, कहना उनके अकिंचन से मधुचंद्र की ओर से ये भेंट स्वीकार करें, कर देंगे?
1: अब तो देवी मणिभद्रा से भेंट करनी ही पड़ेगी। लाओ अपना उपहार दे दो।
0: ये लो, संभल के संभल।
1: मैं सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना चाहता हूं।
2: मधुचंद्र से तुम्बी द्राक्षा लेकर भर्तृहरि आगे बढ़ते हैं। उन्हें यहां एक यात्री मिलता है। वे उससे कहते हैं,
3: जय महाकाल।
4: जय महाकाल। जय गोपाल। अकेले हो भद्र, कहां जाना है?
1: पहले तो चंद्रपुर पहुंचना है।

0: तत्पश्चात कुछ भी निश्चित नहीं।
1: मदरसिक प्रतीत होते हो, अपनी मदिरा की तुम भी कंधे पर लटका कर यात्रा कर रहे हो।
0: ये तुम भी तो देवी मणिभद्रा को सौंपना है महाशय, माधा के सुरा विक्रेता मधुचंद्र ने उपहार स्वरूप पहुंचाई है। आज रात वहीं विश्राम भी होगा।
1: कौन है ये? मदिरा के प्रभाव से नितांत बोराया कोई, या फिर जीवन से निराश कोई आत्महंता, या फिर कोई रहस्यमय तांत्रिक जो मणिभद्रा के क्षेत्र में रात्रि विश्राम की सोच रहा है। खैर जो भी हो, महाकाल रक्षा करे।
2: रवि की लालिमा मणिभद्र की प्रतिमा के मुख पर आन ठहरी है, जिससे शीर्ष के आसपास पीत रक्त प्रकाश वलय बन गया है और शरीर का हर अंग प्रदीप्त होकर स्पष्ट हो उठा है। भृतहरि मुग्ध भाव से यक्ष प्रतिमा के निकट पहुंचे। उन्होंने नमन करते हुए मूर्ति चत्वर की परिक्रमा की। इस समय मूर्ति कुछ अलग प्रकट की ही तेजस्विता विकीर्ण कर रही है।
1: बंधु, सातवाहनों में यह धारणा प्रचलित है कि मणिभद्र की उपासना से कामनाएं सफल होती हैं, संकल्प पूरे होते हैं और विघ्नों का शमन होता है। बंधु, आपने महाकाल का स्मरण करते हुए मणिभद्रा रक्षित अरण्य में प्रवेश किया है। अभी कम से कम घड़ी भर प्रकाश शेष है, जिससे एक कोस की दूरी मापी जा सकती है।
2: पीछे छूट गए रास्तों पर उड़ती हुई स्वर्णिम धूल यह दर्शा रही थी कि और अन्य सार्थवाह भी मणिभद्र प्रतिमा के पास पहुंच रहे हैं, जो वहां रात्रि विश्राम करेंगे और भय तथा आतंक की दृष्टि से इस तरफ देखते रहेंगे। आश्चर्य के साथ जिधर राजा भर्तहरि कंधे पर तूंबी लादे लकुट हाथ में लिए निर्भय प्रवेश कर गए हैं अकेले।

भर्थरी ने इस फैले हुए सघन वन प्रांतर में कुछ मानव आकृतियों को देखा, स्त्री और पुरुष, अप्सराएं और गंधर्व, काम मुद्राओं में निर्बंध केलीरत, कोई मदनोत्सव मंचित हो रहा हो जैसे, किंतु यह मूर्ति शिल्प थे, निर्जीव किंतु आकर्षक, सजीवता की सीमा तक। अचानक कई कंठों से स्वागतम स्वागतम के स्वर गूंजते, मादक संगीत ध्वनियां और कोयल पपीहे की आवाजें आने लगती हैं, जैसे उस वन प्रांतर के वृक्ष ही बोल रहे हो, किंतु यह सधे हुए शुक शारिकाओं की ध्वनियां थी। आगत के स्वागत में मुखर होती हुई

0: कोई है? कोई है? अरे कोई है? वो तो मुझे देवी मणिभद्रा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाए। कोई है? कोई है? कोई है?
1: भृतहरि के स्वर की प्रतिध्वनियां दिशाओं से बार बार टकराकर लौट आती हैं।
0: अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? कोई है? अरे कोई है? देवी मणिभद्रा तक कोई है? देवी मणिभद्रा तक कोई है?

0: कांतारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 14वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार मुकेश विश्वकर्मा, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, किसान गणपत एस पाठक, कृषक पत्नी।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से इस कार्यक्रम में कामिनी काय कांतारे की 14वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन कर्मियों और वैज्ञानिकों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान वन्यजीव संरक्षण के लिए मिले वाहनों का लोकार्पण, विभागीय प्रकाशनों का विमोचन, साथ ही वृत्तचित्रों के टीजर भी रिलीज किए। प्रदेश भर में आज आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में गुरुओं के सम्मान के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 8 IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। शहडोल कलेक्टर बनाई गई मीशा सिंह की पोस्टिंग बदलकर अब उन्हें नगरीय विकास विभाग भोपाल में अपर आयुक्त बनाया गया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 30 जुलाई को मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदान सामग्री का वितरण शुरू कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं के लिए वैकल्पिक मार्ग और टेंट जैसी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर से मॉनसून ट्रफ और चक्रवाती सिस्टम गुजर रहा है, जिसके चलते आज बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन जिलों में अति भारी बारिश और 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली आप सभी प्यारी सखियों को धम्म मित्रा का प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम पावन गुरु पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सखियों, गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है, हम इन दो लाइनों से भली प्रकार समझ सकते हैं जिन्हें महान संत कबीरदास जी ने बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुरु और भगवान दोनों साथ हों तो गुरु को सर्वप्रथम शीश झुकाना चाहिए, जो अपने ज्ञान से जीवन में अंधकार को हटाकर प्रकाशवान करते हैं। गुरु ही सही को सही और गलत को गलत जानना बताते हैं, साथ ही भगवान से मिलना आसान बनाते हैं। सखियों, ऐसा हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कई हफ्तों बाद आज ही के दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ में अपने पांच शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें मध्यम मार्ग, चार आर्य सत्य और दुखों से मुक्ति पाने के लिए आठ आचरण भी बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया, जिन्हें अपनाकर उन पांच शिष्यों ने अपना कल्याण किया। इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा व धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सखियों, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने गुरुओं का आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करने का दिन है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, इसीलिए गुरु पूर्णिमा केवल एक त्यौहार नहीं है बल्कि एक भाव है गुरु के प्रति कृतज्ञता का, सम्मान का, ज्ञान प्राप्त करने का। सखियों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था।

इसीलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को अपना ज्ञान प्रदान किया था, इसलिए भगवान शिव को गुरु भी कहा गया है। इस दिन भगवान शिव की भी आराधना की जाती है। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर जी ने अपने पहले अनुयायी को प्राप्त करने के बाद इसी दिन गुरु बने थे। सखियों, इस तरह गुरु पूर्णिमा भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। सखियों, आज के समय में भी गुरु का महत्व उतना ही है जितना प्राचीन काल में था, क्योंकि एक अच्छा गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि अच्छे संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का भी विकास करता है। इन्हीं के बल पर जीवन सुखकर और निरंतर तरक्की करता है।

सखियों, हमारे जंगल हमारी प्राकृतिक संपदा है। जिस तरह जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह उसमें रहने वाले प्राणी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बाघ, जो पहले जंगल में काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, परंतु आज उनकी संख्या कम हुई है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय

0: स्तर पर बाघों को संरक्षित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं सेवानिवृत्त आईएफएस ऑफिसर बीडी संखवार जी से, जो पहले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर भी रहे हैं। इनसे बात कर रही हैं धम्म मित्रा। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है?
2: अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि नाम से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो बाघ जिसे अंग्रेजी में टाइगर कहते हैं, वो पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, सारे महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसलिए, और जो बाघ है, जो टाइगर है, वो हमारा बहुत ही वन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है, और उसकी ताकत, उसकी निडरता के कारण उसको जंगल का राजा भी कहा जाता है।
1: जी जी।
2: तो इस जंगल के राजा को देखने के लिए देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग भारत भ्रमण पर आते हैं, और जहाँ पर इनका वास होता है वहाँ पर देखने जाते हैं। तो ये एक, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का दिवस है, इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों की वृद्धि की आवश्यकता को महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 से प्रारंभ हुआ है, और सारे विश्व के जितने भी देश है वो इसको उसी दिन मनाते हैं।
1: बाघ को संरक्षित करने का विचार जो आया है, वो मतलब क्या ये इस स्थिति में है कि हमें उसे संरक्षित करने की जरूरत है?
2: जरूरत है। पहले हमारे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में बाघों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। धीरे धीरे धीरे धीरे समय के काल के रहते बाघों की संख्या घटती चली गई। वर्तमान में ऐसी, थोड़े दिन पहले ऐसी स्थिति हुई कि कहीं ये बिल्कुल ही विलुप्त न हो जाए, इसलिए सरकार ने इसको महत्व दिया, इसलिए दिवस मनाया जाता है, और सरकारी स्तर पर इनके संरक्षण के लिए, इनकी वृद्धि के लिए, इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो, बहुत सारे जो नियम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जिसके तहत इनके संरक्षण का और वंश वृद्धि का लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
1: यानी कि बाघ संरक्षण के लिए शासन की बहुत सारी योजनाएं और नीतियां भी हैं, क्या आप उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे?
2: हाँ, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि वंश संरक्षण, जो टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, तो टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए जहाँ पर बाघों की संख्या ज्यादा थी, वहाँ पर हमारे संरक्षित वन, आरक्षित वन और दूसरे प्रकार के राजस्व के जंगल, ऐसे इनको मिला के काफी बड़े भूभाग को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, और उसके अंतर्गत विशेष नियम होते हैं कि बगैर अनुमति के कोई आदमी उसमें घुस नहीं सकता, और ऐसे स्थानों पर उनके संरक्षण की व्यवस्था होती है, और इससे क्या होता है, इन संरक्षण से सरकार को टूरिज्म बढ़ता है, जिससे हमारे प्रदेश को और देश को हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी आती है, और चूंकि ये हमारे पिरामिड, हमारे जो फूड चेन में सबसे ऊपर है, इसलिए इसका महत्व इस प्रकार भी है कि हमारे जंगल भी इससे संरक्षित रहते हैं, तो दोनों का आपस में बहुत कोरिलेशन, ऐसा संबंध है कि अगर हमारे बाघ को रहने की जगह पर्याप्त मात्रा में है, भोजन है, सुरक्षा है, तो हमारे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ हमारे जंगल भी बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो जंगल भी सुरक्षित है और बाघ भी सुरक्षित है, देखने वाले लोग आते हैं, हमारे पैसा भी आता है, उसके राजस्व भी बढ़ता है, तो ये बहुत बड़ा महत्व है।
1: जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में बाघों की क्या स्थिति है और इसका जो संरक्षण है बाघों का, वो कैसे किया जाता है?
2: मध्य प्रदेश में बाघों की स्थिति बहुत ही बेहतर है। हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार के टाइगर रिजर्व हैं, जो योजना चलती है, वो हमारे यहाँ 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, और मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या हमारी 785 के आसपास है। हमारे पूरे भारत भर में लगभग 3000 बाघों की संख्या का आकलन है, तो सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में ही टाइगर पाए जाते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो

0: जंगल है वह हमारे टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है, और धीरे धीरे और भी क्षेत्र बढ़ाए जाने का कार्यक्रम चलता रहता है। अभी हाल ही में कुछ ही 2 वर्षों में अंतर्गत माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में और रायसेन जिले में रातापानी टाइगर रिजर्व अभी 2 साल पहले घोषित किए गए हैं। तो हमारे प्रयास धीरे धीरे और भी होता जा रहा है ताकि हम बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी कर सकें। बहुत ही सुखद स्थिति है, इसलिए हमारे इसको टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को हमारे देश में जाना जाता है।
1: बाघों के संरक्षण की तो बहुत सारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, इस पर काम भी चल रहा है, पर बाघों को संरक्षण करने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी कहीं करना पड़ता होगा। किस तरह की चुनौतियां आती हैं इनको संरक्षण करने में?
0: हाँ, निश्चित रूप से कई सारी समस्याएं आती हैं। एक तो बाघ जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है वैसे उसको रहवास का क्षेत्र भी बड़ा होना ही चाहिए, परंतु स्थिति ये होती है कि टाइगर रिजर्व के किनारे जो जंगल के गांव होते हैं उन गांव के लोग धीरे धीरे धीरे धीरे अतिक्रमण करने लगते हैं कहीं कहीं, या जो जंगल के पास है वहाँ एक शिकार की भी समस्या होने लगती है। तो शिकार, चूंकि हमें सबको मालूम है कि मृत जो मरा हुआ बाघ भी होता है वो लाखों लाखों का होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके चमड़े की, उसके नाखून की, उसके बालों की बहुत मांग रहती है। तो जो हमारे जंगल के दूर दराज के जो आदिवासी भाई हैं, जो निवासी है, वो लालच में आते हैं, और जो बाहरी लोगों को संरक्षण मिलता है वो लोग शिकार जाने अनजाने कर जाते हैं। कि एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे जो कभी कभार जंगलों को नुकसान करने वाले लोग भी होते हैं, जो उनको फसल को, उनको जानवरों को मारते हैं, तो वो लोग भी नाराज होते हैं। तो उस नाराजगी अपनी जंगल में मरे हुए जानवर के ऊपर जहर मिला देते हैं, अगर ये फिर बाघ या तेंदुआ जो इनको खाता है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार की डेथ होती रहती है। कभी जो ट्रैप लगा देते हैं उसमें फंस के घायल हो जाते हैं, तो उनको रेस्क्यू करना पड़ता है समय पर। हमारे पास रेस्क्यू की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, पर फिर भी करते हैं। कभी घायल अवस्था में मिलते हैं तो उनको दूर जा हॉस्पिटल होते हैं वहां ले जाना पड़ता है। तो इसकी भी हमारे देश में थोड़ी सी समस्या है। दूसरे, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए इसमें जो स्पेशल तरह के ट्रेंड अफसरों की, अधीनस्थ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। यद्यपि अभी ट्रेंड अफसर्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे टेरिटोरियल्स के जो स्टाफ रहता है, वन्य प्राणी के नीचे के स्टाफ होते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, जिससे उनके समुचित ज्ञान उनके पास ना होने के कारण समस्याएं भी आती है। और मैनेजमेंट के लिए जितना भी पैसे की जरूरत होती है तो सीमित बजट होता है, वो भी एक समस्या रहती है। इस प्रकार से समस्याएं तो बहुत है, चुनौतियां भी हैं
1: जी, लेकिन फिर भी हमारा स्टेट मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, यानी कि बहुत ही सुखद स्थिति है।
0: जी, बहुत सुखद स्थिति है। हमारे जो धीरे धीरे विभाग, दूसरे पुलिस विभाग से, रेवेन्यू विभाग से, इनसे समन्वय बना के एक समग्र अप्रोच लगा के इसको धीरे धीरे सारी चुनौतियों को पार करने का प्रयास करते हैं। चूंकि वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग में भी लोगों को भेजा जा रहा है और हॉस्पिटल्स के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की भी व्यवस्था धीरे धीरे सुनिश्चित की जा रही है, तो ये काम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। इस प्रकार से मिला के सबके समन्वय के, सरकार के सभी जो नीति निर्देशक लोग हैं, जो हमारे योजनाएं तैयार करने वाले, योजना का क्रियान्वयन करने वाले, और जो दूसरे विभाग के अधिकारी समन्वय रूप से काम इसमें कर रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है जो हमारी जो बेसिक देश है कि हम अपने बाघों की संख्या में बढ़ोतरी करें। निश्चित रूप से अभी भी हम आगे हैं और भविष्य में भी हम प्रदेश में आगे रहेगा, और हमारे प्रदेश के सारे जो टाइगर रिजर्व सुरक्षित रहेगी और उसमें रहने वाले हमारे जो वन्य प्राणी के साथ साथ टाइगर भी हमारा सुरक्षित रहेगा, ऐसी पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है।
1: जी जी सर, आपने आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बहुत ही अच्छी आपने इसके संरक्षण की, इसकी योजनाओं की, नीतियों की बात की, चुनौतियों की बात की, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आप सुन रही थी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर से

सेवानिवृत्त आईएफएस ऑफिसर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पूर्व डायरेक्टर बीडी संखवार से धम्म मित्रा की बातचीत। सखियों, हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया बनाना है तो कुछ प्रयोग तो करने ही पड़ते हैं, उसको करने की कोशिश करनी होती है। हो सकता है शुरू में हम सफल भी ना हों, पर अगर हम लगातार उस काम को करते रहें तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंट करना ही सीखने की कुंजी है। असफलता से डरने के बजाय और मेहनत के साथ आगे बढ़ें, ऐसे में दृढ़ निश्चय हमें अडिग रखता है। कुछ नया करने से पहले मन में शंका ना रखें कि ये होगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये शंकाएं ही आगे बढ़ने में बाधक बनती हैं। सखियों, उम्र को कभी भी किसी काम को करने में आड़े ना आने दें, मन में आत्मविश्वास रखें, थोड़ा रिसर्च करें, फिर पूरी तैयारी से अपने एक्सपेरिमेंट को करें। सुरक्षित और छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करके आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपने काम को ईमानदारी से करें, इससे विफलता का डर कम हो जाता है। नया डिफरेंट ड्रेस ट्राई करना हो या सोलो ट्रिप का मन हो तो ज़रूर करें। सखियों, सोलो ट्रिप यानी अकेले यात्रा करना खुद को जानने और आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। पहली बार अकेले जाने में थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है, लेकिन सही तैयारी से यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है। सखियों, पहली सोलो ट्रिप को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए बहुत सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली यात्रा के लिए किसी ऐसे शहर को हमें चुनना चाहिए जो पर्यटकों के लिए सुरक्षित और सुलभ मानी जाती है। हम जहां जा रहे हैं वहां हमें दिन में ही पहुंचें, हम ऐसा प्लान करें। अपने परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ अपने होटल का पता और लाइव लोकेशन भी हमेशा शेयर करें। सखियों, नए नए प्रयोग, चाहे वो करियर से संबंधित हो, नए तकनीक सीखने, शिक्षा या दैनिक जीवन से संबंधित हो, हमें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाते हैं। सखियों, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने आज एक्सपेरिमेंट को बहुत आसान बना दिया है। सखियों, अगर आप पेंटिंग, सिलाई, संगीत या कोई नई भाषा ही क्यों ना सीखना चाहें, ऑनलाइन कुछ भी हम सीख सकते हैं। हर दिन कुछ नया करने का टारगेट रखें, ऐसा करके आप तरोताज़ा महसूस करेंगी।

भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में एक नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, वो है अरुणा आसफ अली। उन्होंने 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका नाम अरुणा गांगुली था। पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहीं, बाल्यकाल से ही कक्षा में सर्वोच्च रहती थीं। बचपन में ही उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुरता को दर्शा दिया था। नैनीताल से पढ़ाई पूरी कर अरुणा शिक्षिका बन गई और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में पढ़ाने लगी। अरुणा जी स्वतंत्र विचारों की और खुद निर्णय लेने वाली एक सशक्त महिला थी। उन्होंने अपनी मर्जी से सुविख्यात वकील और राजनीतिक आसफ अली से विवाह कर लिया। इस विवाह ने अरुणा के जीवन को एक नई दिशा दी। वे राजनीति में रुचि लेने लगीं और राष्ट्रीय आंदोलन में भी सम्मिलित होने लगीं। वे महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सभाओं में शामिल होने लगीं। उस समय अंग्रेजों के अत्याचारों से उन्हें आंदोलन में शामिल होने की और प्रेरणा मिलती थी। अरुणा जी 1942 के पहले कई बार जेल भी गईं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा जी ने अंग्रेजों की जेल में बंद रहने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। इस तरह अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती देने वाली वे प्रमुख महिला थी। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में घूम घूम कर पुलिस से बचकर लोगों में नव जागृति लाने का प्रयत्न किया। 1946 में जब उनके नाम का वारंट रद्द हुआ तब वे लोगों के सामने आईं। उनकी सारी संपत्ति जब्त होने पर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। उन्होंने मजदूर आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय रहीं। अरुणा जी 1958 में दिल्ली नगर निगम की प्रथम महापौर चुनी गई। महापौर रहते हुए उन्होंने दिल्ली के विकास, सफाई व स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ नगर निगम की कार्यप्रणाली भी सुधारी। इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, ऑल इंडिया पीस काउंसिल व नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन जैसी नोबल संस्थाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सखियों, अरुणा जी को 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सखियों, अरुणा जी की लोगों के प्रति आत्मीयता व स्नेह को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एक महान देशभक्त थी। 87 वर्ष की उम्र में आज ही के दिन 1996 को वे इस संसार से विदा हो गईं। देश के प्रति उनके योगदान और वफादारी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सखियों, अब समय हो रहा है हमारे जाने का। अनुमति दीजिए धम्म मित्रा को। नमस्कार।

0: राठौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: और सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए मेहरबान सिंह कुशवाहा के स्वर में कजरी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है। पहले सुनिए साधना गोरे के स्वर में गजल।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
7: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
8: क्या?
7: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
8: वो कैसे?
7: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
8: और सुनेंगे कैसे?
7: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: काल का समय हुआ पूरा, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज थी लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की। गीतकार थे साहिर, संगीत था खयाम का।

0: ये गीत अभी आपने सुना फिल्म कभी कभी से, जिसके लिए आवाज थी लता मंगेशकर किशोर कुमार की, गीतकार थे साहिर और संगीत था खयाम का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राप्त विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: कहा हमारे पास 53 साल पहले 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई।
0: इस अवसर पर रातापानी टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लोगों का अनावरण, पिंच एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम का लोकार्पण और जैव विविधता तथा वन्य जीव संरक्षण पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और समितियों को भी सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि एनिमेशन तकनीक से बच्चों के लिए विशेष रूप से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी याचिकाओं के आधार पर फिल्म को रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि देश में रचनात्मकता और एनिमेशन बच्चों के लिए है। ओडिशा सरकार का तर्क था कि भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर कुछ वर्गों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद फिल्म के रिलीज होने पर कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति JPC का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर में 12 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि देर रात तक ये संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम,

मुरैना के करहधाम हरदा और ग्वालियर के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना गुरु वंदन और धार्मिक आयोजन हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आगरमालवा जिले में भी आज विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिकारपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण आज भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आज वन्य जीवों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राइट फॉर टाइगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ की ग्राम पंचायत परवलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत कल पिछोर में शपथ समारोह अभियान चलाकर स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। वहीं बुरहानपुर जिले के 113 स्कूलों के 32,000 विद्यार्थियों ने एक साथ अपने हाथों से नशे से दूरी है जरूरी लिखकर इतिहास रच दिया। इस अनोखी पहल की एंट्री वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन भेजी गई है। कटनी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज फॉरेस्ट प्लेग्राउंड से मिशन चौक तक एक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए RSP सांसद NK प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति

0: आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक TDPL एजेंसी है जो परीक्षा कराती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि JPSC ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली में परोस के दे दिया। अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: JPSC बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो JPSC में धांधली हुआ इसको CBI जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
4: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
5: हाँ।
4: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
5: हाँ।
4: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि

0: श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनः स्थापन और पुनः निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
3: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
4: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित।

0: थे। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने। ये है महाराष्ट्र नागपुर से अभिजीत गवाणकर, सरिता, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर। और ये है खंडवा से दुर्गेश नागनपुरे, वंदना नागनपुरे, गोलबाजार बक्सर से श्रद्धा नंदार्य, अभय नंदार्य, परमानंदार्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित, विजय केशरी, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म कभी अलविदा ना कहना। इसका गीत जिसके लिए आवाज है शफाकत अमानत अली, शंकर एहसान लाय की, और गीतकार हैं शंकर एहसान लाय। तो सुनते हैं फिल्म का ये गीत।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश भेजी है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, राज एसडी अंसारी, नरेंद्र कुमार यादव, डुमराव बिहार से वली उल्ला अंसारी, सुनील कुमार वर्मा, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, और कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लव आजकल, इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज है मोहित चौहान की, गीतकार है इरशाद कामिल, संगीत है प्रीतम का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपके फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम नेताम

देवास से राजू अग्रवाल, शांति, मुकेश महाजन और नागू सिंह कुमावत, राजकुमार कुमावत, अभिषेक कुमावत, मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा, कमल निगम, रूपा खेड़ी देवदास देवास से ही हरिराम माली, विष्णु कपिल, निरंजन माली, भारत सिंह और मोहसिनपुरा से जमील खान, इमरान और मुस्कान, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है ओम शांति ओम। इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज है श्रेया घोषाल, अभिजीत की, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत है विशाल शेखर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हमारे इन श्रोता साथियों की। यह है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बीबी आरजू जाजोरिया। अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अमरावती महाराष्ट्र से नसीम बेगम, आयशा, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राउफ और शाहिद। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है बचना है हसीनो, इस फिल्म का गीत जिसकी आवाज है लकी अली, श्रेया घोषाल की। गीतकार हैं अन्विता दत्त गुप्ता और संगीत है विशाल शेखर का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोता साथियों की। ये है भाटापारा छत्तीसगढ़ से दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, रिंगनी छत्तीसगढ़ से ही दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरिंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, लोनी बिहार से प्रकाश वीर राजपूत, नसीलुल इल्साम गनोरी, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से कमलेश जयपुरिया, भिलाई छत्तीसगढ़ से अनुश्री प्रदीप, पिंकी प्रमीला प्रदीप और रायगढ़ छत्तीसगढ़ से लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है साथिया का ये गीत, जिसके लिए आवाज है अदनान सामी की, गीतकार है गुलजार, संगीत है ए आर रहमान का।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राप्त विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ के रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि एनिमेशन तकनीक से

0: बच्चों के लिए विशेष रूप से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी याचिकाओं के आधार पर फिल्म को रोका नहीं जा सकता। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के श्री दादाजी धुनी वाले मंदिर में 12 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि देर रात तक ये संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। और मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

शाम 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान होगा। 6:00 सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। शाम 6:30 पर और रात 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 8:00 सुनिए संसद समीक्षा। 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम होगा आज रात 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10 बजे सुनिए नाटक कर्तव्य। लेखक हैं राजकुमार जायसवाल, प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी रात 10:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे समरजीत सेन से राग श्याम कल्याण में सितार वादन।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। इसमें आप सुनेंगे भेंटवार्ता जैव उर्वरक से उन्नत कृषि उत्पादन डॉक्टर गोविंद गुप्ता से। तो ये थे आज शाम की सभा के कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया वेव 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5:00 हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

चालीस किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे ही हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ तनुष्का।
1: और मैं हूँ माधवी। तो आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो है गुरु पूर्णिमा, दूसरा आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और इसी के अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय पशु बाघ से जुड़ी कई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, और साथ ही हमारे गुरुओं के साथ हमारे कैसे संबंध होते हैं, हमारे गुरु हमें किस हद तक मदद कर सकते हैं एक अच्छा इंसान बनने में, वो भी बताएंगे।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जंगल और पर्यावरण के संतुलन के लिए बाघों का होना कितना आवश्यक है, और भारत के किन किन राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ अभयारण्यों में बाघ पाए जाते हैं, और इनके संरक्षण में हमें किस प्रकार अपना योगदान देना चाहिए, और गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है ना माधवी?
1: बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो चलो आगे हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन तनिष्का, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि हम हर बार करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम हमारे दोस्तों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और अंत में उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आज का ये जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पश्चिम बंगाल का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने मैनग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
0: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि असम के उन दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जहां बाघ पाए जाते हैं और जो भारत की समृद्ध जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: तो दोस्तों, उम्मीद है आपने दोनों प्रश्न अच्छे से सुन लिए होंगे। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर अपने पास रखिएगा, कार्यक्रम के अंत में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का पहला गीत।
2: कहता हूँ कभी मैं हूर हूर

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: माधवी, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं पीछे रहकर हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। जब हम रास्ता भूलते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जब हम हार मान लेते हैं तो वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं।
2: एकदम सही बात कही है तुमने तनिष्का। ऐसे ही व्यक्तियों को हम गुरु कहते हैं। गुरु केवल वो नहीं होता जो हमें पुस्तकों का ज्ञान देता है, बल्कि गुरु वो भी होता है जो हमें जीवन को समझना, समझाना और उसे सही तरीके से जीना सिखाता है।
1: हाँ, और हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु होती है हमारी माँ।
2: 16 आने सच बात कही है तुमने। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब उसे कुछ भी नहीं आता। माँ ही उसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाती है, उसके पहले शब्दों को समझती है और धीरे धीरे उसे बोलना सिखाती है। कितनी खूबसूरत प्रोसेस है ये।
1: बिल्कुल, और माँ जो होती है ना, वो हमें केवल चलना और बोलना ही नहीं सिखाती, बल्कि प्रेम करना, दूसरों का सम्मान करना, अपनी चीज़ें शेयर करना और मुश्किल सर्कमस्टांसेस में पेशेंस रखना भी सिखाती हैं।
2: बिल्कुल सही, जब हम गिरते हैं तो माँ ही हमें उठाती है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दोबारा प्रयास करना भी वही सिखाती है, और इसीलिए माँ को हमारी प्रथम गुरु कहा जाता है।
1: और भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु के सम्मान में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
2: इसका जो अर्थ है वो बहुत सरल है। ये कहता है कि गुरु ही ब्रह्मा के समान है, हमें ज्ञान देने के रूप में नया जीवन देते हैं। विष्णु के समान है, हमारा पालन पोषण और मार्गदर्शन करते हैं, तथा महेश के समान भी है क्योंकि वो हमारे भीतर के अज्ञान को समाप्त करते हैं। ऐसे गुरु को हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं।
1: दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमें

0: वे सभी गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर देता है। ये पर्व महर्षि वेदव्यास के सम्मान में भी मनाया जाता है, जिन्होंने भारतीय ज्ञान, साहित्य और संस्कृति को समृद्ध बनाने में एक बहुत ही जरूरी योगदान दिया है।
1: और सही भी बात है ना तनिष्का, हमारे माता पिता के बाद हमारे शिक्षक ही तो हैं, वही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गुरु होते हैं।
0: बिल्कुल, शिक्षक हमें केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, बल्कि वे हमारी गलतियों को सुधारते हैं, हमारी प्रतिभा को पहचानते हैं, हमें अनुशासन सिखाते हैं, हमें मेहनत करना सिखाते हैं और ईमानदारी का इम्पोर्टेंस भी समझाते हैं।
1: कई बार ऐसा नहीं होता तनिष्का कि उनकी डांट हमको उस समय पे तो बहुत बुरी लगती है, ऐसा लगता है ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैंने क्या कर दिया था जो इतनी डांट पड़ गई। लेकिन बाद में जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है कि उसमें ही हमारी भलाई और हमारा उज्जवल भविष्य छिपा था, उनकी चिंता छिपी थी, इसीलिए उन्होंने इतना डांटा।
0: बिल्कुल सही कहा। और पता है, एक अच्छा गुरु हमें हर प्रश्न का तैयार उत्तर नहीं देता, बल्कि हमें खुद सोचने, समझने और सही उत्तर तक खोजने की क्षमता देता है, हमें केपेबल बनाता है।
1: मेरी माँ अक्सर कहती है कि गुरु उस दीपक की तरह होता है जो स्वयं जलकर अपने शिष्यों के लिए जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है गुरु केवल माता पिता या शिक्षक ही नहीं होते, जीवन में हमें सही दिशा दिखाने वाला कोई मित्र, कोई भाई बहन, हमारे दादा दादी और कोई भी अनुभवी व्यक्ति हमारे लिए गुरु हो सकता है।
1: एक और बात सोचने वाली है तनिष्का, सिर्फ लोग ही क्यों, हमारी गलतियाँ, हमारे अनुभव, ये भी तो हमारे गुरु ही होते हैं। गलतियां हमें बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और अनुभव हमें अगली बार बेहतर निर्णय लेना सिखाते हैं।
0: हाँ, जीवन हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है ना माधवी?
1: सही कह रही
0: है। और साथ ही ये जो प्रकृति है वो भी तो हमारी गुरु है, पेड़ हमें बिना किसी अपेक्षा के देना सिखाते हैं, नदियाँ लगातार आगे बढ़ते रहना सिखाती है और सूर्य हमें प्रतिदिन नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है।
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे शिष्य की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, केवल गुरु का सम्मान करना ही पर्याप्त नहीं है, है ना, हमें उनकी दी गई सीख को अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए।
0: हाँ, हमें अपने गुरु की बात ध्यान से सुननी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए और उनकी सीख के अनुसार मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए।
1: मेरा ये भी मानना है कि गुरु का सबसे बड़ा सम्मान कोई फूल या उपहार नहीं होता, उनकी दी हुई शिक्षा को जब हम हमारे व्यवहार में उतारते हैं, यही उनके प्रति सच्ची गुरु दक्षिणा होती है।
0: और गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हमें अपनी माँ, हमें अपने शिक्षकों और जीवन में मार्गदर्शन देने वाले उस हर एक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।
1: उन्हें ये भी कहना ना भूलें कि आपने हमें केवल आगे बढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि सही रास्ते पर आगे बढ़ना सिखाया है।
0: क्योंकि दोस्तों, एक और बात है जो मेरे मन में आई है कि माता पिता हमें जीवन देते हैं और जो गुरु होते हैं वो उस जीवन को सार्थक बनाने की दिशा देते हैं।
1: बहुत ही सुंदर बात कही है तुमने तनिष्का, और इसी सुंदर भावना के साथ हम हमारे कार्यक्रम में भी आगे बढ़ते हैं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान

0: EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्यों ना हम उसको शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ।
3: बिल्कुल दोस्तों, बाघ जो होता है ना, वो खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहने वाला जीव माना जाता है। वह जंगल में हिरण, जंगली सुअर और अन्य शाकाहारी जीवों की संख्या को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखने में सहायता करता है, और यदि इन जीवों की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो जंगल की वनस्पतियों पर दबाव बढ़ सकता है। इस प्रकार बाघ अप्रत्यक्ष रूप से जंगलों की हरियाली और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने, और इसीलिए किसी भी जंगल में बाघों की सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। उनकी सुरक्षित उपस्थिति ये संकेत देती है कि वहाँ भोजन, पानी, पेड़ पौधे और दूसरे वन्य जीवों से युक्त एक स्वस्थ इकोसिस्टम लाइफ बैलेंस मौजूद है।
3: और दोस्तों, भारत इस दृष्टि से बहुत समृद्ध है। हमारे देश में विभिन्न भागों में अनेक राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य हैं, जहां बाघों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण दिया जा रहा है।
2: जैसे कि उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ क्षेत्र में से एक है।
3: राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी बाघों के लिए जाना जाता है। यहाँ प्राचीन किले, जंगल और वन्य जीव मिलकर एक अनोखा प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं।
2: और अगर हम बातें कर ही रहे हैं अलग अलग जगहों की, तो हम मध्य प्रदेश को कैसे भूल सकते हैं। मध्य प्रदेश में है कान्हा, बांधवगढ़, पींच, पन्ना और सतपुड़ा, यानी कि सबसे समृद्ध प्रदेश अगर कोई है तो वो मध्य प्रदेश है। और ऐसे प्रमुख बाघ क्षेत्र, हाँ तनिष्का तुम कंटिन्यू करो।
3: और साथ ही उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा का सिमलीपाल भी बाघ संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
2: इतने व्यापक प्रयासों के बाद भी बाघों के सामने कई गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। अवैध शिकार करने वाले, वनों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का कम होना और मानव वन्य जीवी के संघर्ष में उसकी अस्तित्व को प्रभावित करना, ये सारी चीज़ें अस्तित्व को प्रभावित करना यानी एग्जिस्टेंस को केटर करना। तो अगर आप उनकी एग्जिस्टेंस में ही परेशानी ला रहे हैं तो वो भला एक स्वस्थ जीवन कैसे जिएंगे।
3: बिल्कुल, कई बार सड़कों, भवनों या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल परियोजनाएं होती है, उनके कारण बड़े जंगल छोटे छोटे हिस्सों में बट जाते हैं, और इससे जो बाघ होते हैं या अन्य वन्य जीव होते हैं उनके जो पारंपरिक रास्ते हैं वो बाधित हो जाते हैं, उनके जो रहने की जगह होती है वो चली जाती है, वो छिन जाती है उनसे।
2: और जब जंगल में उनके लिए पर्याप्त भोजन या पानी उपलब्ध नहीं होता तो वो वन्य जीव मानव बस्तियों की ओर आने लगते हैं। इससे मनुष्य और वन्य जीवों दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है।
3: इसलिए ये कहना पूरी तरह उचित नहीं होगा कि वन्य जीव हमारे क्षेत्र में आ गए हैं। कई बार हमें ये भी सोचना चाहिए कि कहीं हमने ही तो उनके प्राकृतिक आवास में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप नहीं किया।
2: सही कह रही हो, संरक्षण का अर्थ मनुष्य और जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ाना नहीं है, बल्कि दोनों के सुरक्षित सह अस्तित्व के लिए समाधान तलाशना है।
3: बाघों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, वन विभाग की नहीं है, वन्य जीवन विशेषज्ञों की नहीं है, ये एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी की जिम्मेदारी है और हमें इसमें अपना योगदान देना चाहिए।
2: तो आइए दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर हम भी ये संकल्प लें कि हम प्रकृति और जानवरों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाएंगे।
3: क्योंकि बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे, जंगल बचेंगे तो जल, वायु और पर्यावरण सुरक्षित रहेंगे, और पर्यावरण अगर सुरक्षित रहेगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, अब बारी है आज के स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से की, और आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की जिसे देखते ही दिल में संगीत उतर जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1999 में रिलीज हुई फिल्म ताल की।
3: ताल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि संगीत, रिश्ते, सपने और आत्मसम्मान की एक बहुत खूबसूरत सी दास्तान थी। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्मकार सुभाष घई ने किया था,
2: और फिल्म की स्टार कास्ट भी कमाल की थी। ऐश्वर्या राय ने मानसी का किरदार निभाया, अक्षय खन्ना बने माधव और

0: अनिल कपूर ने विक्रांत कपूर के रूप में एक ऐसा किरदार निभाया जिसे आज भी लोग याद करते हैं।
1: कहानी शुरू होती है पहाड़ों की शांत वादियों से, जहां मानसी अपने पिता के साथ रहती थी और उसके पिता लोक गायक थे और संगीत ही उनकी दुनिया थी। उसी दौरान शहर से मानव अपने पिता के साथ वहां घूमने आते हैं
0: और पहली मुलाकात में मानव और मानसी के बीच दोस्ती होती है और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्रकृति, संगीत और मासूमियत से भरे ये दृश्य दर्शकों के दिल छू लेते हैं।
1: लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह ये भी मुश्किलें बहुत सारी लाती है। मानव के पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक हैसियत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है।
0: और दोस्तों, अगर संगीत की बात करें तो इस फिल्म का हर गीत एक एहसास है अपने आप में। संगीत दिया था महान संगीतकार A.R. रहमान ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने।
1: तो अब संगीत की बात आई है तो क्यों ना हम इस प्यारे से गीत को पहले सुन लें।

0: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे ताल मूवी की, और कहानी में जो हमने बात करी, दोनों प्रेमी रहते हैं, और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब गलत फहमियों की वजह से मानव और मानसी अलग अलग हो जाते हैं। मानसी टूटती जरूर है, लेकिन हार नहीं मानती।
1: बिल्कुल, यही उसकी मुलाकात होती है मशहूर संगीत निर्माता विक्रांत कपूर से। विक्रांत मानसी की प्रतिभा को पहचानता है और उसे एक बड़ा मंच देता है।
0: देखते ही देखते मानसी एक सफल गायिका और परफॉर्मर बन जाती है। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं।
1: और मुझे इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें जो नायिका होती है वो सिर्फ किसी के प्यार का इंतजार नहीं करती है, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाती है।
0: सही कह रही हो तुम। वहीं दूसरी ओर मानव को अपनी गलती और परिस्थितियों का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि सच्चा प्यार दौलत या हैसियत नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान से चलता है।
1: और इस दौरान फिल्म के कई गीत कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नहीं सामने बिछड़ने का दर्द महसूस कराता है, इश्क बिना प्यार की अधूरी तड़प को दर्शाता है, और रमता जोगी मानसी के नए सफर और आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है।
0: फिल्म का हर गीत केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि पात्रों की भावनाओं को शब्द और सुर देता है। यही वजह है कि ताल का संगीत कहानी का सबसे मजबूत आधार बन जाता है।
1: और शायद यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी लोग इस फिल्म के गीत बड़े प्यार से सुनते हैं।

0: दोस्तों, आखिरकार अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच जाती है जहां सच सामने आता है, गलतफहमियां दूर होती है और मानव और मानसी एक दूसरे के प्यार और विश्वास को फिर से स्वीकार कर लेते हैं।
1: फिल्म का अंत ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी अहंकार

0: खन्ना ने एक संवेदनशील प्रेमी का किरदार बखूबी निभाया, जबकि अनिल कपूर ने अपने अनोखे अंदाज से फिल्म में नई ऊर्जा भर दी।
1: बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो उसके गीत आज भी आपकी यादों में जरूर गूंजे होंगे, और अगर नहीं देखी तो यकीन मानिए कि ये फिल्म संगीत और भावनाओं का एक ऐसा सफर है जिसे हर सिनेमा प्रेमी को एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए।
0: इसी खूबसूरत बात के साथ चलो सुनते हैं इस ही मूवी का एक और गीत।

0: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और हमारी बात सुनकर एक बार ताल देखने का मन जरूर किया होगा। तो अब समय आ चला है हमारे प्रश्नों के उत्तरों का। तो जो हमारा पहला प्रश्न था वो ये कहता है कि पश्चिम बंगाल का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने मैंग्रोव वनों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब है दोस्तों, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान।
1: और आज का दूसरा प्रश्न ये था दोस्तों कि असम के उन दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए जहां बाघ पाए जाते हैं और जो भारत की समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका उत्तर है काजीरंगा नेशनल उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अनुमति दीजिए तनिष्का
0: और माधवी को। नमस्कार।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आरंभ कर रहे हैं हम दोनों फिल्म के इस गीत से जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। साहिल लुधियानवी की शब्द रचना, जयदेव का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं रवि के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत, आशा भोसले का सुमधुर स्वर, फिल्म का नाम है काजल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
0: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
0: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
0: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
1: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
0: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
1: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
0: जी,
1: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
0: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
1: एक बार की बात है श्रोताओ, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
0: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
1: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
0: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
1: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
0: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
1: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
0: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
1: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
1: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
0: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
0: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में

0: कार्य कर रहा है।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
2: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
3: डायना, डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
4: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
3: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
4: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
3: मेरे मन में एक बात आ रही है।
4: वो क्या?
3: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
4: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
3: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा।
2: हाँ हाँ।
1: और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ, जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा,
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ,
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप में यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ, हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही है।
2: हाँ। देखो सामने दीवार पर देखो।
1: हाँ।
2: जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: हाँ। और घुमाओ, और घुमाओ।
2: हाँ।
1: हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही। हाँ। लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है।
2: हाँ।
1: हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हाँ। हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि अभी मन से बात हो रहा है। इसको मैंने यहाँ रखा, ये इसको दबाया। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखता हूँ कि क्या होता है। विलियम।
1: हाँ जॉन।
0: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
1: करता हूँ।
0: हाँ, और सुनो।
1: हाँ।
0: आप कमरे में अंधेरा करो।
1: एक मिनट।
0: हाँ।
1: मैं ये लाइट बंद कर देता हूँ।
0: हाँ ठीक है। और सुनो, स्क्रीन ऑन।
1: हाँ।
0: करो।
1: हाँ ठीक है। अरे वाह जॉन।
0: हाँ?
1: देखो सामने।
0: अरे हाँ,
1: क्या बात है।
0: ये तो कमाल।

0: गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
1: हाँ जॉन, हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
0: हाँ
1: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो।
0: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: आइए इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर। हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ओह, ये तो कमाल हो गया। आंखों पर विश्वास नहीं होता।
4: वेरी गुड।
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया होगा।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत में आबिदा परवीन की गायी चंद रचनाएं। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह की लिखी इस गजल से।

सुगम संगीत में इस समय आप सुन रहे हैं आबिदा परवीन की गायी चंद रचनाएं। लीजिए प्रस्तुत है आबिदा परवीन की ही गायी एक पारंपरिक सूफी रचना।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे आबिदा परवान की गायी चंद रचनाएं। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बंदूखा और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत।

लोक संगीत में आप सुन रहे थे बुंदुखा और साथियों के गए राजस्थानी लोकगीत। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र 7 बजने को है। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना वर्तमान कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टिकरण की नीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच के 4th संस्करण को 20 जुलाई तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गों पर 2500 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए परिवर्तन नामक एक वाहन बेड़ा नवीनीकरण पहल को मंजूरी दी है। परिवर्तन परिवहन वायु प्रदूषण और उत्सर्जन को कम करने के लिए वाहन परिसंपत्तियों के त्वरित नवीनीकरण और प्रोत्साहन का कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पुराने और अधिक उत्सर्जन वाले ट्रकों और बसों को स्वच्छ भारत स्टेज BS6 मानकों के अनुरूप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग और साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। पुरुष मुक्केबाजी में सचिन सिवाच ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं एथलेटिक्स स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने पुरुष शॉटपुट फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको बता दें हमारी आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप सुनेंगी वार्ता, कुत्ता काटने व जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें। इस कार्यक्रम में सीमा चावरिया से प्रियंका पटवारी की चर्चा आप सुनेंगे, साथ ही आप जानेंगे कुछ घरेलू व्यंजन, घरेलू नुस्खे और लोक संगीत। 8:15 पर संसद समीक्षा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रगीत और 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नाटक बोल कहां से आया तू, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता है संजीव मालवीय। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश गंधर्व का वायलिन पर बजाया राग बिहाग। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। आइए आपको बता दें हमारी कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। सवेरे 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर कार्यक्रम चिंतन में कल का विषय है जल ही जीवन है, जल संवर्धन की आवश्यकता। आलेख है चेतन शाह शर्मा का, वाचक रूपाली चौहान। 6:35 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे जुलाई माह के में समसामयिक कार्य, वाचक हैं तुलसा दरगैया। श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा 6:40 पर। सुगम संगीत में हमारे कल के कलाकार हैं गायक शान, आप सुनेंगे कार्यक्रम सवेरे 9:15 पर। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे केशव रघुनाथ तेलेगांवकर का गिटार पर बजाया राग बसंत मुखारी। 10:00 जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से और 10:05 पर श्रोताओं के पत्र पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे कल आप सुनेंगे 11:02 पर। महिला कार्यक्रम का प्रसारण होगा 1:00। इसमें आरंभिक चर्चा का विषय है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। साथ ही आप योजना इस क्रम में आप जानेंगे स्टार्टअप इंडिया के बारे में। काव्य पाठ में आप सुनेंगे सावन पर विशेष कविता नीरज जैन से। रूप लावण्य में आप जानेंगे बारिश में त्वचा और बालों की देखभाल कैसे करें। और फैमिली फिटनेस में आप जानेंगे मुंह की बीमारियां खतरों का संकेत देती है, इस विषय पर जानकारी। आपकी सुरक्षा आपके हाथ, इस क्रम में आप सुनेंगे वेतन की वृद्धि साथ ही बचत में भी वृद्धि कैसे हो, इस विषय पर जानकारी। दोपहर 1:30 पर लोक संगीत और 1:57 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। हमारी संध्याकालीन सभा का आरंभ होगा 5:00 युवाणी कार्यक्रम से और 5:45 पर फिल्म संगीत। 6:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:00 आप सुनेंगे 6:15:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, कलाकार हैं शान। 6:45 और साथियों के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 6:45 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मोबाइल ऐप से करें स्मार्ट खेती। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, प्रतीक्षा करें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने

0: किसानों से संवाद के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित करने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। 291 मतदान केंद्रों पर डाले जाएंगे वोट। और प्रदेश के कई जिलों में कल भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण वर्ष में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से जुड़े विषयों पर संवाद के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित करने की जानकारी दी।
1: किसानों से जुड़े एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते हैं तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने 129 संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
2: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें,
3: हाँ।
2: जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें,
3: हाँ।
2: मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगली गणना में ये 1000 से अधिक होने का अनुमान है। वे आज भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन भागीदारी से प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के लिए संकल्पित है। इस अवसर पर रातापानी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लोगों का विमोचन किया गया और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और समितियों को मान्यता किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के शासकीय अशासकीय और अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रवेश के लिए 31 जुलाई को अंतिम तिथि निर्धारित की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। अब तक प्रदेश में विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में करीब 5 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। विभाग ने विद्यार्थियों से अंतिम तिथि से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल 291 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान दल आज अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना हो गए। उपचुनाव में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2,20,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान 1280 मतदान कर्मी और 215 माइक्रो ऑब्जर्वर निष्पक्ष मतदान कराने में तैनात रहेंगे। दतिया के बॉर्डर पर 12 अंतर्राज्यीय नाके स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से बिना किसी भय या दबाव के मतदान करने की अपील की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के बाद कवच संस्करण 4.0 को इस महीने की 20 तारीख तक दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के व्यस्ततम मार्गो को सम्मिलित करते हुए 2569 किलोमीटर मार्गो पर सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सर्बिया के नोवी सात में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर पैरा शूटर राहुल शर्मा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री राहुल ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर सभी देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी पुस्तक भारतीय गुरु परम्परा के शिल्पी महर्षि सांदीपनी समर्पित की। उन्होंने कहा कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि संस्कार और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। राजगढ़ में सम्मान समारोह, छिंदवाड़ा में समरसता संकल्प अभियान, अशोकनगर में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व और शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित हुआ। आगरमालवा में कलेक्टर ने श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए, जबकि जबलपुर में नर्मदा तटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सतना मैहर सहित विभिन्न जिलों से गुरु पूर्णिमा के समाचार मिले हैं। प्रदेश में कल भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने धार, देवास, बुरहानपुर, हरदा और नर्मदापुरम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सीहोर, बैतूल, पांडुना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर सहित कई अन्य जिलों में भी तेज बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल कलेक्टर ने आज भैंसदेही विकासखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। झाबुआ जिले के पेटलावत विकासखंड के हर घर जल घोषित ग्राम गोविंदपुरा और नवापाड़ा में आज जल अर्पण दिवस उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। दमोह में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज शहर राधिका पैलेस में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीहोर जिले में मॉनसून सीजन के दौरान बारिश का आंकड़ा पिछले एक साल की तुलना में पीछे चल रहा है। इस साल 1 जून से 29 जुलाई तक जिले में औसतन 18.13 इंच बारिश दर्ज की गई है। गुना में लगभग 3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार शहर में मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी। करीब आधे घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत दी। खरगोन कलेक्टर ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक आयोजित की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों का बिंदु की राम राम। बहन आज ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में आप सभी बहनों को घणो घणो स्वागत है। और अभी जैसे हमारी बहन देखो जहाँ खेतीबाड़ी कराए वहाँ दूसरा कामकाज भी उनका साथ लगेल रहे। अब अभी तक तो देखो या मौसम की बखत थी तो आई वही जानू फिर खेती बाड़ी में वावनी को काम वो भी पूरो हुयो। ना ओका बाद में हम आई गो सावन को महीनों भी तो हम अच्छे तो फिर वार त्यौहार शुरू हो जाएगा न हम व्यस्त हो जाऊँगा। काम कोई सो भी हो अपना का पैसा न की घनी जरूरत पड़त न पैसा न की जब जरूरत पड़े तो कभी हमारे पास रहे तो हमारो काम ही जाए न कभी नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं से अपना कर्जो भी करनो पड़े कोई सी लेनू भी पड़े। पर अगर हमारी खेतीबाड़ी का काम का लेना हमका पैसों चाहिए तो हम किसान क्रेडिट कार्ड ले सकें और एक से अपना कर्जो लेकर ना अपनों काम करी सकें। क्योंकि एको खास उद्देश्य ये है कि जो खेती संबंधित अपना जो भी किसानी करने वाला भाई बहन है वो उनका बखत पर्याप्त मतलब जितो जरूरत है उतो पूरो तो पैसों मिली जाए और वो अपनों काम करी सका। क्योंकि एम है तो 3% की छूट भी है समय पर अगर भुगतान करी दो तो और 4% का हिसाब से तो आपको कर्जो मिली जाए। फिर है तो जैसे कि अपनी बहन कर्जो ले तो उम है तो एम कोई गारंटी की जरूरत नहीं रहती है। 1,60,000 का करीब एम कर्जो अपना का आसानी से मिली जाए। एम अपना खेती बाड़ी का काम जैसे खाद छे बीज छे कीटनाशक छे और एक अलावा जो भी अपना का हर दिन कुछ न कुछ अपना लगा जैसे भाई कोई ना डेयरी को कामकाज दूध को कामकाज करियो कोई ना छे तो अपना पशु पालिया उनका लेना तो इस तरह का कई सारा खर्चा लगेल रहे जो कि अपन एक से पूरा कर सकें। और ये की सबसे अच्छी बात ये है कि आसानी से अपन एक निकाले भी सकें और आसानी से जमा भी कर सकें। आवेदन करने का लेना अपन छे तो अपनों जो आधार कार्ड छे वो अपन अपना रखा किसी कोई पहचान पत्र होए वो रखा और अपन छे तो अपनो निवास जहाँ रही राज वो भी होना चाहिए। साथ छे तो एक आवेदन अपन जैसे कराए पर कौन ले सके एक छे तो आप एक तो व्यक्तिगत रूप से अपन लेना मतलब खुद अकेला भी ले सकें या फिर अपना संयुक्त रूप से कोई अपना कोई का साथ में साझेदारी से अपन खेती करी रहा तो वो भी ले सकें। साथ में जो जैसे बटाई पर अपन देवान वो भी ले सकें पट्टा जिनका खेती का मिले आज वो भी ले सकें। फिर से तो स्वयं सहायता समूह जो बनी रखे वो लोग भी एक ले सकें पर एक लेने जो अपना जरूरी कागजात है वो जमा करी दे और एक अपन ले सकें। तो हमारी जो बहन है वो भी अपनों ये कार्ड बनी लेगा और अपनी खेती बाड़ी में जो भी अपना का सहायता चाहिए पैसा टक्का की वो एक आशी अपन पूरी कर सकें। तो ये तो अपनी किसान क्रेडिट की बात हुई बातचीत आरू भी करेंगा पर बगच संदेश न की तो सुना संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: बहना सावन को महीना आने वाला है और हमारे बहना पहले से तैयारी करें सावन का झूला भी बंध ही जाए ना अच्छे तो मेहंदी ना भी लगे जाए और अच्छे तो कई कहूँ एक सावन के एक अलग ज बाहर रहे तो क्यों नहीं अपन सावन जो वही रोज तो को आह्वान करा और अच्छे तो इस तरह अपन अपना जो गणेश जी छ उनका भी सावन में बुलाई लेवा। तो सुना सरिता मेका को गाय यो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो अभी हमारी बहन है ना, क्यों लोग की सुने हो जेका गायो थो सरिता मेका साथ ही ना बहन। अभी देखो जैसे बरसात की वक्त चली रही, पर अपना जो जानवर जो छे उनका भी छे तो ऐसो लगा कि कहीं ऐसो आड़ मिला, कहीं उनका छत मिला, कहीं अच्छी जगह मिला जहाँ वो रही सका, बैठी सका, सोई सका। तो ऐसा अच्छे तो भाई अपना जो गली में अपन देखा है कि कुत्ता आई वहीं घूमे, पर वो देखा जगह कि कहीं जगह होए तो वहाँ जाई ना बैठी जाए। पर उनका बढ़ना के बाद में अपन देखा है कि कई बार बहुत सा अगर भगाई दे तो वो एक आक्रामक भी जाए और कभी कभी काटी भी ले। तो कुत्ता का काटना सी या जलने सी काई काई हुई जाए, ये सब अपना का जानकारी दे रही अपनी बहन सीमा चावरिया ने इनका से अपनी प्रियंका बहन ने बातचीत करी। तो सुना इनकी बातचीत।
3: भाई बहना, घर हो या बाहर, छोटी मोटी दुर्घटना कदी भी हो सकती है, पर अगर हम सही समय पर उपचार करना जिका पण का प्राथमिक उपचार, तो हम कोई की भी जान बचे सकता है। हमारा बीच मौजूद है नर्सिंग ऑफिसर सीमा चावरिया, जो कि आज हमारे बताएगी कि भाई यदि एक जो गंभीर समस्या है गली गली नाम कुत्ता ना घूमने की और उनकी वजह से कभी भी छोटा हो या बड़ा अचानक से भी काटे ले, तो ऐसी स्थिति में हमारा भाई बहन ना बच्चा ना घबरे जाए तो ऐसा में हम कहीं कर ही सकता है। तो सबसे पहला तो हम उनको कार्यक्रम में स्वागत करा। राम राम।
4: धन्यवाद। राम राम सभी को।
3: तो जैसा कि मैंने अभी शुरुआत करी कि भाई आजकल अपन सब जगह देख ही रहा है कि हर गली गली में कई बार ऐसी घटना ना हुई रही है जहाँ छोटा बच्चा ना खेलता रहा या फिर बड़ा भी अगर मोटरसाइकिल से या दूसरे कोई वाहन से ऐसा जा ही रहा है दो पहिया वाहन से, तो कई बार भी ऐसी कुत्ता का काटना की वजह से कई बार उनका गंभीर समस्या ना को सामना करना पड़ा, कई बार ऐसा भी हो जाए कि यो जानलेवा भी हो जाए। तो हमारा पहला तो यो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इससे कई कई बीमारी हो सकती है, तो इका बारा में हमारा भाई बहना का विस्तार से बताओ।
4: कुत्ते के काटने से मुख्य रूप से रेबीज बीमारी होती है, जो कुत्ते के काटने से बिल्ली बंदर चमगादड़ इनसे भी ये बीमारी हो सकती है।
3: अच्छा,
4: रेबीज क्या है? ये गंभीर वायरल बीमारी है। इसके शुरुआती लक्षण, जैसे पहले तो इसके काटने की गंभीरता को समझना है कि अगर कुत्ते ने सिर्फ खरोचा है, घाव हुआ है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है। शुरुआती लक्षण इसके बहुत ही मामूली होते हैं, लेकिन ये इतना गंभीर हो जाता है कि यदि किसी में इसके लक्षण रेबीज के पाए जाने लगे तो फिर इसका उपचार पूरे तरीके से हो पाना तो संभव नहीं हो पाता है। अच्छा। तो इसे शुरुआत में ही पहचान के, या किसी भी कुत्ते ने अगर आपको काटा है, खरोच भी आई है, लार लगी है, अच्छा, तो इसका उपचार कराए और इसकी वैक्सीन लगवाए।
3: अच्छा, तो लार तो यूं सामान्यतः भी बहुत सारा भाई बहन ये सोचे कि सिर्फ लार है या कुत्ता ने जैसे चाटी लियो हाथ में या पाँव में कहीं भी, तो फिर भी तो ध्यान नहीं दे, तो मतलब इससे भी बीमारी होने की संभावना है
4: अगर ज्यादा है तो। लेकिन अच्छा। अगर खरोच के साथ में खून आया है, लार लगी है,
3: अच्छा,
4: तो आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत है ही।
3: अच्छा, तो यूं वैसे तो यूं ध्यान रखना ही पड़ेगा कि भाई अगर काटी लियो है तो फिर वैक्सीन तो लगवानी लगवानी है। इन बीमारी का किन्हीं तरीका से रोकी सकता है?
4: इसे रोकने के लिए रेबीज की वैक्सीन है, क्योंकि अगर ये बीमारी हो गई तब तो इसका उपचार नहीं है।
3: अच्छा,
4: तो इसे हम होने से पहले ही रोक सकते हैं। इसकी वैक्सीन है एंटी रेबीज वैक्सीन, जो आपके नजदीकी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। ये दो प्रकार से है, जो एक मांसपेशी में लगाई जाती है या चमड़ी के ऊपरी हिस्से में लगाई जाती है। मांसपेशी में लगाने के 5 डोज है, और ऐसे ही अगर चमड़ी पे लगाए जाते हैं तो 4 डोज है, जिसके एक निश्चित दिन है कि अगर पहली बार गए हैं तो उसे 0 डोज कहते हैं, 0 डे या 0 डोज। तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन।
3: अच्छा,
4: और 4 डोज लगे तो उसके भी कुछ इसी प्रकार के डोज है। डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए दिवस पे जाना है और हल्की छोटी सी वैक्सीन है वो मुख्य रूप से लगाना है।
5: अच्छा अच्छा तो वो मतलब एक निश्चित अवधि रहेगी, जैसे आज कुत्ता ना काटे तो अपन जाएंगे तो जानकारी दे देगा कि हाँ इतना दिन का बाद हमारा अगला डोज लगेगा।
4: हाँ, इतने दिन बाद। अच्छा। और ऐसा है कि अगर आज काटा है या जैसे जितनी जल्दी हो सके तुरंत वैक्सीन लगवाए, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन जाकर जरूर लगवाए उस दिन से। फिर वो आपके 5 डोज, पहले ऐसा था कि 14 इंजेक्शन लगेंगे,
5: क्योंकि गांव ना में तो यो डर बनी रखता था कि भैया कुत्ता ना काटी लियो तो 14 इंजेक्शन लगेगा सीधा।
4: हाँ, तो अब तो 14 नहीं लेकिन उसके 5 डोज है और कहीं उसके 4 डोज भी है। ये एक गंभीर बीमारी है।
5: टीको अपन लगवा ही लिया पर कई भाई बहन ऐसा है कि वे उन्हीं चीज का हल्का मली ले कि हाँ कहीं नहीं होएगा ऐसा करें, तो इन्हीं बीमारी की वजह से कहीं कहीं दुष्परिणाम हो सकता है उसका बारे में हमारे जानकारी।
4: देखिए ये जो रेबीज की बीमारी है ये धीरे धीरे दिमाग की नसों को खराब करती है, इतना खराब कर देगी कि शुरू में तो सिर्फ बुखार, घबराहट, चक्कर, बेचैनी ये कम लक्षण है। जब इसके गंभीर लक्षण होंगे तब पानी से डर लगना, हवा से डर लगना, बहुत ज्यादा गुस्सा, घबराहट, बहुत ज्यादा लार बनना जैसे जानवरों को होती है, और होते होते पैरालाइज, लकवा, कोमा, यहाँ तक की गंभीर समस्या हो जाती है।
5: अच्छा अच्छा पर ऐसा जैसे बहुत सारा भाई बहन ऐसा भी है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण गांव नामा भी देखे कि कई बार बच्चा ना छोटा छोटा पिल्ला ना कर लिया है और उनका एक तरह से मतलब पालना उनका अच्छा भी लगा जो हमारा

0: प्रेमी भाई बहन ना है तो उनका कहीं सावधानी रखनी चाहिए उन्हें।
1: घरेलू जो जानवर है उनका टीकाकरण कराए,
0: अच्छा, समय पर।
1: समय पर उनको वैक्सीन लगवाए पशु चिकित्सालय से जाकर, जिससे
0: अच्छा,
1: घर के परिवार के बच्चों को सावधानी रहेगी।
0: क्योंकि ये चीज तो कोई एकदम से तो समझ में नहीं कि भाई आप पाल ही रहे तो जरूरी नहीं कि वो नहीं काटे हो, कभी भी ये चीज घटना घटी सकती है। ऐसी और कई सावधानी रखी सकता है, मान लो कोई अपना छोटो बालक है या बालिका है, प्राथमिक उपचार कहीं कर ही सकता है कि जैसे ही काटे हो कुत्ता ने तो फिर तुरंत हमारा कहीं करना चाहिए।
1: तुरंत हम उसको धोना है
0: अच्छा,
1: साबुन या पानी से, हम उसको 10 मिनट तक तुरंत उसको धोते रहे कि अगर कोई लार घाव के ऊपर, खरोच के ऊपर लगी हुई हो तो वो हट जाए। तुरंत उसको आपको धोना है और उसके बाद फिर हमें अस्पताल जाना है।
0: कई बार आजकल जो समस्या ना है, अपन जलने की समस्या का बारे में बातचीत करना चाहूंगा कि अगर कोई बालक या कोई बड़ो भी व्यक्ति हो का अगर वो जली जाए, गर्म पानी की ये बात करना या फिर आग की कोई भी एक चीज अगर जली जाए तो उसका तुरंत प्राथमिक उपचार की हूँ जानना चाहूँ कि प्राथमिक उपचार कहीं कर ही सकता है।
1: हाँ, ये सही आपने कहा कि जलने का प्रकार, कोई किसी केमिकल पदार्थ से जला है, घरेलू चीज से, आग से, गर्म पानी से, आग की लपट में, गैस चूल्हा जो आजकल घर में है, तो
0: हाँ,
1: सबसे
0: अलग अलग
1: पहले,
0: प्रकार भी सकता है
1: हाँ,
0: उनका।
1: तो ये हर कैटेगरी जलने के प्रकार में ही है। तो हमें सबसे पहले जलने की गंभीरता को समझना है, कम है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। कम है तो हम घर में उसको तुरंत ठंडे पानी से 20 मिनट तक हम उस पर पानी डालते रहे, जब तक कि उसकी जलन होना बंद ना हो जाए। इससे क्या होता है कि फफोले होने के चांस या रिस्क कम होता है। और इसके लिए फिर आगे सरकारी अस्पताल या आसपास के नज़दीकी अस्पताल जाए और जो भी आवश्यक उपचार है, एंटीबायोटिक है, वो ज़रूर लें।
0: अच्छा, और जलना पर कहीं नहीं करना चाहिए, क्योंकि घबराहट में कई बार ऐसा हुए कि जो नहीं करना चाहिए वो भी राय देने वाला नारा सारा रहे आसपास वाला, तो ऐसा में कहीं नहीं करना है भी हमारे बात ना बताओ।
1: सबसे पहले तो जला है तो उसके आसपास आसपास अगर कोई कपड़ा, शर्ट या कुछ आपने पहना है तो उसको ढीला कर ले, ऊपर करे, ध्यान रहे सिर्फ आसपास में। अगर उसके ऊपर कोई कपड़ा चिपका है तो उसको हाथ से निकालने की कोशिश नहीं करना है, ये घाव की गंभीरता को और बढ़ा सकता है। उस पे बर्फ या किसी भी चीज को रगड़ना नहीं है, खुला रखना है। अगर उस पे तुरंत ब्लिस्टर छाला हो गया है तो उसको हाथ से फोड़ना नहीं है, कोई ड्रेसिंग करके बांधना नहीं है, कोई टाइट कपड़ा नहीं रखना है उसके ऊपर, और घरेलू लोशन, क्रीम ये सब नहीं लगाना है। अब कर हम ये सकते हैं कि पहले हमने उसको आसपास से ढीला कर लिया है पानी से, सिर्फ जिससे फफोला ना आए, और फिर हम अधिक उपचार के लिए फिर अस्पताल जाए, जिससे हमें कुछ दर्द निवारक और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो हम अस्पताल से लें।
0: अच्छा, और कोई ऐसी विशेष जानकारी जो हमारा भाई बहना है जो कहीं ऐसी दुर्घटना अगर बच्चा ना का साथ हो जाए तो उतना समय पर जो उपस्थित बहन ना है, क्योंकि अधिकतर जो है महिला ना घर में रहे तो भी महिला ना कहीं कर ही सकती है।
1: अभी घरेलू ये चलता है कि टूथपेस्ट लगाए या घर का सामान लगाए, तो कभी कभी ये घाव की गंभीरता को बढ़ा देता है। तो इससे
0: अच्छा,
1: बेहतर है कि हम सिर्फ उसे ठंडे पानी से जलन कम होने तक बस उसे हम साफ कर ले, खुला छोड़ ले, और घर में अगर कोई एंटीबायोटिक रखा
0: हाँ, अगर जानकारी हो अगर
1: हो,
0: हमार तो।
1: किसी प्रकार का एंटीबायोटिक लोशन रखा हो, तो हम वो लगा सकते।
0: सीमा चावरिया जी, तब ना हमारा इतनी अच्छी जानकारी दी कि भाई कुत्ता का काटना पर और जल जाना पर हम कहीं कहीं प्राथमिक उपचार कर ही सकता है, एक बारा में हमारा जानकारी दी, का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
1: सभी को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: तो भाई ना, अभी अपन ने ये चर्चा सुनी, सीमा चावरिया ना प्रियंका बहन की बातचीत जो थी एमा देखो अपना का ये मालूम पड़े कि भाई कभी भी अगर ऐसी कोई घटना हुई जाए तो पहले तो अपन घरेलू उपाय कर ही लेवा पर खूब देर तक घर में नहीं बटनू तुरंत जाइकन अपना जो पास का चिकित्सा केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र है।

0: जरूर से ध्यान रखा। और वरना जैसो कि अब हमारा हाथ में मंडी का भाव है क्या, तो हम आपका मंडी का भाव इंदौर मंडी का अच्छा ये भी हम आपको बता दें। वहाँ गेहूँ को भाव रहे हो 2470 से लेकर ना 2961 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का को भाव रहे हो 1666 रुपया। सोयाबीन को भाव रहे हो 3895 से लेकर ना 7165 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी किस्म को 5765 से लेकर ना 6950 रुपया। डॉलर किस्म को चनो 5600 से लेकर ना 9405 रुपया। तुअर दाल को भाव रहे हो 6650 से लेकर ना 6800 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग को भाव रहे हो 4800 से लेकर ना 7395 रुपया। राजमा को भाव रहे हो 1450 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो आज का इंदौर मंडी का भाव था। और मौसम जैसे कि बरसात को चली रही तो पानी आने की संभावना तो छे सही, उस हिसाब से अपन अपना आपको सुरक्षित रखा और अपना घर में ज़्यादा रहा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजाय कोई यदि कोई ज़रूरी काम है तो जाओ, नहीं तो अपना घर में आप सुरक्षित छे वहाँ ज रहो और स्वस्थ रहो। और बहना जैसे अपनी बहुत सारी किसानी खेती करने वाली बहना जो छे वो काई काई कर सकज, किस तरह से अपनी खेती किसानी का आगे बढ़ सकज ये जानू भी जरूरी छे। तो ऐसी जो हमारी एक बहन छे सोनम त्रिपाठी जो कि अपना को बताई रही कि आप खेती का साथ साथ ओखा आगे बढ़े करना और कई उम्र रोजगार का जो छे वो लाई सको नया नया आया, तो अपनी बहन जाना उनकी वार्ता से सुनाइए वार्ता।
1: नमस्कार बहनों, सोनम त्रिपाठी का आप सभी को नमस्कार। आज मैं कृषि उद्यमी द्वारा महिला सशक्तिकरण पर आप सभी ग्रामीण महिलाओं को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगी जिससे आप अपना ग्रामीण जीवन को और अपने आप को और सशक्तिकरण कर सकती हैं। भारत की लगभग 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित होती है। कृषि आधारित स्वरोजगार भारत की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत गांवों का देश कहा जाता है। इन्हीं गांवों में देश की लगभग 70-80% जनता अपनी जीवन निर्वहन करती है। महिलाओं के उत्थान हेतु सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं जिनका सभी ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ हो सके। जैसे इन योजनाओं में महिला बचत समूह, महिला स्वयं सहायता समूह आदि हैं। महिलाओं को घर एवं बाहर दोनों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। आदिकाल से ही ग्रामीण महिलाओं को कृषि में सक्रिय भागीदारी रही है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कृषक महिलाओं की क्षमता एवं ज्ञान को पहचान कर उन्हें रोजगार संबंधित प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाए जिससे महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूह, महिला बचत समूह बनाकर कृषि आधारित विभिन्न रोजगार का चयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अब मैं आपको इन्हीं में वर्मी कंपोस्ट जिसे हम केचुआ खाद भी कहते हैं इसके उत्पादन के बारे में बतलाने जा रही हूँ। केचुओं को किसानों का मित्र कहा गया है क्योंकि उसकी समस्त जीवन क्रियाएं खेती हेतु ही उपयोगी होती हैं। केचुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन ही वर्मी कल्चर कहलाता है और उसी को हम वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केचुए से प्राप्त वर्मी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुए जमीन में रहते हैं तथा मिट्टी, कचरा, गोबर, अधपका, अजैविक पदार्थों को खाते हैं जिससे कि जैविक पदार्थ विघटित होकर जैविक खाद में परिवर्तित होते जाते हैं और यही इसमें मिट्टी का रूप धारण कर लेती है जिसमें उसकी उर्वरा शक्ति को वो बढ़ा देते हैं। साथ ही केचुए को जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। केचुए के मल मूत्र से विभिन्न प्रकार के एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन्स एवं एंटीबायोटिक्स मिले होते हैं जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों के अवशेषों के हानिकारक प्रभाव को भी कम कर देते हैं। इसी प्रकार अब पशुपालन एवं मुर्गी पालन के बारे में भी मैं बतलाने जा रही हूँ जो महिलाओं को उनके अपने आप में निर्भर बना सकता है, उन्हें सशक्तिकरण कर सकता है। कृषक महिलाएं खेती के साथ पशुपालन कर अधिक लाभ कमा सकती हैं। दुधारू जैसे गायों का, गाय भैंसों का पालन, डेयरी उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं। छोटे एवं मध्यम वर्गीय महिलाएं जैसे कि बकरी लगा सकती हैं, मुर्गी पालन करके कम लागत में भी वो कुटीर उद्योग से अपने आप को लाभ कमा सकती हैं। इसी प्रकार सब्जियों को जो हम नर्सरी कह सकते हैं उसके बारे में भी मैं बतलाने जा रही हूँ जिससे भी महिला अपने आप को संभव बना सकती है।

0: कृषक महिलाओं द्वारा विभिन्न मौसम आधारित स्थानीय मांग के अनुसार, जैसे ऐसा मौसम होगा उसके अनुसार जो भी सब्जियां उस समय मौसम में लगाई जाती हैं उसको तैयार कर उसको बिक्री कर अपने आय को स्रोत बना सकती हैं। इसके लिए पौध घर में बीजों की बुवाई के लिए मौसम के अनुसार जिस हिसाब से मौसम होगा उसी हिसाब से उनकी जो बुवाई की तरीका होगा उसी तरह से उन्हें तैयार किया जा सकता है। वर्षा ऋतु में हमेशा भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची हुई क्यारियां ही बनाई जाती हैं, जिससे सर्दी के मौसम में नालीनुमा एवं सामान्य मौसम में समतल क्यारियां बनाई जाती हैं। अतः इसमें हम समझ सकते हैं कि जैसा मौसम होगा उस प्रकार से उसमें हम पौधों के लिए क्यारियां बना सकते हैं। फिर क्यारियों का आकार आवश्यकता अनुसार तैयार कर सकते हैं, किंतु उचित होगा कि चौड़ाई लगभग कम से कम 1 मीटर और लंबाई 3 से 5 मीटर रखे, ताकि निराई गुड़ाई एवं अन्य कृषि क्रियाएं करते समय परेशानी ना हो। आजकल पौध तैयार करने के लिए कोकोपीट तथा प्लास्टिक के ट्रे, जिसमें विभिन्न आकार प्रकार के सांचे बने होते हैं, में तैयार किए जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान एवं उपयोगी तरीके हैं को अपनाया जा सकता है। साथ ही दूसरे स्थान में ले जाने तथा पौधरोपण में सुविधा होती है। इस तरह से टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, गोभी तथा बेल वाली सब्जियों को हम तैयार करके नर्सरी रूप में बनाकर उसमें भी अतिरिक्त से अतिरिक्त लाभ को कमाया जा सकता है। इसी प्रकार पोषण गृह वाटिका, मतलब इसमें हम मनुष्य को स्वस्थ शरीर के लिए दैनिक आहार में साग सब्जी एवं फलों के पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई के कारण इनकी मात्रा दैनिक आहार में कमी हो रही है, जिसकी वजह से लोग में असंतुलन उत्पन्न होता जा रहा है। व्यक्ति कुपोषित होने का शिकार ही होने इस कगार तक पे आ गया है कि जो उसके लिए सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं वो उसमें ही उनको भरपूर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमें जो हमारे घर के आसपास या कोई भी खाली स्थान या कोई बाड़ा होता है उसमें हम इनको जो भी हमारे लिए आवश्यक छोटी मोटी सब्जियां होती हैं उनको हम अपने घर के आसपास किसी बाड़े में लगा के तैयार कर सकते हैं। इसमें साग सब्जी, छोटे छोटे फल फूलों को लगाकर उन्हें जैसे उनके किस्म के हिसाब से उनकी बुवाई करवाकर उनकी खाद की मात्रा का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। अगर पर्याप्त स्थान हो तो सब्जियों और फलों का अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त उत्पादन का रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकती हैं महिलाएं। उसी प्रकार इसमें फल सब्जियों का प्रसंस्करण गृह उद्योग के हिसाब से भी करा जा सकता है। हमारे देश में सभी प्राकृतिक सुविधाओं के लिए होते हुए भी फल सब्जी जनसाधारण को बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा जो होती है वो लगाते समय ही जब तक वो बनती है तब तक वो खराब हो चुकी होती है। एक ही समय में एक ही प्रकार के फल एवं सब्जियों का विपुल उत्पादन, आवागमन की सुविधा, उचित बाजारों का अभाव में क्षति होने का कारण है। इस क्षति को रोकने के लिए फल एवं सब्जी परिरक्षण एक वरदान स्वरूप है। इस व्यवसाय के अंतर्गत हम अचार, मुरब्बा, जैम जेली, शरबत, स्क्वैश, कार्डियल, टूटी फूटी आम पापड़, फ्रोजेन मटर, सूखी सब्जियां एवं फल और आंवला सुपारी, आंवला कैंडी, बेल का शरबत, बेल का मुरब्बा, टमाटो केचप या सॉस इत्यादि तैयार कर गृह उद्योग के रूप में भी आय कर सकती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसमें से आता है सोयाबीन, सभी जानते होंगे, उस पर आधारित उद्योग को भी अपनाकर महिलाएं अपने आप से आय कमा सकती हैं। सोयाबीन को कामधेनु कहा गया है। मालवा क्षेत्र में खरीफ की मुख्य फसल ही सोयाबीन होती है। सोयाबीन पौष्टिक गुणों से भरपूर है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन, 20% तेल, 23% कार्बोहाइड्रेट और 5% अन्य खनिज लवण होते हैं। इनमें विटामिन्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हृदय रोग के बचाव के लिए सोयाबीन इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आहार माना जाता है। सोयाबीन से हमारे शरीर में रक्त में जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी मात्रा कम होती जाती है, जिससे हृदय रोग की संभावनाएं कम होती हैं। सोयाबीन का आहार में समावेश कर प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोगों से भी बचा जा सकता है। सोयाबीन के विभिन्न उत्पाद तैयार कर उन्हें बाजार में बिक्री करके उद्योग के रूप में अपना कर आय का अतिरिक्त साधन बनाया जा सकता है। सोयाबीन के विभिन्न उत्पाद जैसे सोया दूध, सोया पनीर, सोया श्रीखंड, सोया लड्डू, सोया टेस्टी, सोया बड़ी, सोया दलिया, सोया आटा इत्यादि को गृह उद्योग के रूप में अपनाया जा सकता है। तो बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ग्रामीण महिलाओं को कृषि उद्यम से जो मैंने आप सभी को बताया उससे आप अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। नमस्कार।
1: तो अभी हमारी बहन है ना, ये जो अपनी बहन जो कि कृषि का बारे में बता रही थी, है नहीं,

सोनम त्रिपाठी जी, इन्हने बतायो कि किस तरह से हम अपनी खेती बाड़ी का आगे बढ़े का ना, और एम कई कई खास काम कर सक जैसे हम अपने आय का और दुगुनी कर सका। और भाई ना, आप बखत छे घरेलू व्यंजन ना घरेलू नुस्खा ना की, तो आज हम आपको बढ़ते रहे घरेलू नुस्खा में कि तुलसी का कई उपयोग छे, तुलसी अपना के ना काम आवे और एक से अपन कई कई कर सकें। तुलसी जैसो कि ये पौधों हर एक धार्मिक पौधों छे और हर घर में एक छे, तो जहाँ हिंदू धर्म छे वहाँ पर लगायो जाए और एक पूजा भी करी जाए। ऐसा तो एक बहुत पूजा पाठ में बहुत काम की छे, बिना तुलसी का अपन भोग नहीं लगाता है, पर उसका साथ है एक जो औषधीय गुण छे वो भी बहुत कमाल का छे, कहीं लाजवाब छे का, जैसे कि सर्दी जुकाम में काम आवे है नहीं, तुलसी का पत्ता चाय मनाखी करें या तुलसी को रस पियो तो उसका से सर्दी जुकाम खांसी ये सब ठीक हो जाए, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़्यादा छे। अगर रोज हम तुलसी का पत्ता खाएं तो हमारी क्षमता शरीर की बढ़ जो का सी, तो हमको एकमिक काम आवे। साथ अच्छे तो अपना जो पाचन तंत्र छे ओमा भी बहुत सुधार हो जाए, गैस की समस्या ये भी खत्म हो जाए का सी। तुलसी अपना मानसिक तनाव को भी कम करी रहे, अगर हम तुलसी को उपयोग कराएं तो हमारा वो मानसिक तनाव नहीं होता और शांतता दिमाग में बनी रहे, तो तुलसी बहुत उपयोगी छे हम सबका ना मालूम छे, और एक उपयोग भी हम सब जन कराएं, और जो नहीं करता है वो भी जरूर से एक उपयोग कर। और वरना आज हम घरेलू व्यंजन में बता रहे हैं कि केरी ने गोंदी को अचार का सुडाना है नी, अभी बखत छे सभी जगह घर घर अचार भी न खाई रहा, कोई ने नाखी लिया और कोई नाखनू चाहे, इन्हीं बखत में गोंदी ना भी खूब अच्छी आई जाए, तो गोंदी न केरी को कसो नाखा। एक किलो केरी लेवा, साफ धोई कर ना काटा, ओके गुटली ना गोई ना उखा अलग करी लेवा और उखा तो अच्छो फरकाई लेवा। ओके बाद में छे तो अपनी जो गोंदी ने छे, एक किलो पर 200 ग्राम अगर गोंदी अपन ले लेवाए तो ये बहुत ठीक मतलब मात्रा छे, कोई कोई 250 भी ले सकें। एवं छे तो जो मसाला छे ओखा छे तो 200 ग्राम राई की दाल छे, अपनी 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम लाल मिर्ची, 50 ग्राम कलौंजी और नमक 150 ग्राम और मेथी दाना 50 ग्राम, हींग एक बड़ा चम्मच लेकर ना, और 400 से 500 ग्राम अपना का तेल लेना, तेल या तो सरसों को भी ले सकें या मूँगफली को भी ले सकें। गोंदी ना जो छे उनका धोई लो अच्छी आना, थोड़ी सी ओखा उकाड़ी का ना वो बफाई जाए, जब ओखा फरकई लो ओखा सुखाड़ी लो, कभी घाम हो तो ओमो सुखाड़ू और भी अच्छी बात छे। आवा इन कैरी ना छे तो अच्छी फरकई जाए, जब छे तो एक कई करो तेल गरम करो, एक बड़ा बर्तन अच्छो गरम ही जाए, जब वो थोड़ो ठंडो होने लगा उमा थोड़ी थोड़ी अपन राई नाखी का देखा कि राई बढ़ाई तो नहीं रही उमा, तो राई नहीं जमा जड़ा तब उमा पूरो ये मसाले एक मसालो एक एक करीकन एक एक चीज़ का नाखी देवा अने अच्छो खूब चढ़ाई देवा, चढ़ाई का ना अच्छे तो उमा फिर थोड़ो ठंडो होए तो तमा उमा केरी ना गोंदी ना का नाखी देवा। वही ना इखा भी अच्छो तरह से मिले लेवा, न जब ये ठंडो हुई जाए जेका बाद में छे तो एम जो एक अपन बर्नी न कांच का बर्तन में कहीं में भी भरा, एक कभी भी जो धातु का बर्तन छे ओमा नहीं भरा, ताकि ये उसको स्वाद भी बदली जाए और सुरक्षित नहीं रहते हैं। अरे 4-5 दिन बाद छे तो आप एक खाने में भी प्रयोग कर सको, तो इस तरह आप इना मौसम में गोंदी को अचार खाई सको, केरी गोंदी को एक ये बहुत स्वादिष्ट भी लगे और अच्छो भी छे स्वास्थ्य का लेना, तो जरूर से एक उपयोग करो ना। आम वर्ण फिर मन करी रोज की ए करूँ लोग गे सुना, तो तृप्ति नागर को गायल यो लोग गे सुना जा।

तो तृप्ति नागर का ये लोकगीत गायो जो बहुत अपना का आनंद रही हो कि भाई देखो सावन को महीनों भी आई गयो और सब दूर झूला पड़ी गया, हमारी बहन अब आनंद लेगा झूला न को भी और वार त्यौहार न को भी। और अब जो बखत फिर चलना की तो चलता चलता काल की भी तय करा काल सौंदर्य से कि खेती की बात न होएगा जमा छे तो जुलाई महीना में सामयिक कृषि कार्य कई करूँ अपनी तुलसा बहन बना बतावगा न संजय के खेती गृहस्थी में लोकगीत आज की बात होएगा गई का सादा सवाई बहन का बिंदु की राम राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी है, अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने

की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट, एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेपी की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का
विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर जो संशोधन विधेयक है जिसको आज संसद ने पारित किया है और अब ये प्रभाव में आ जाएगा, और निश्चित रूप से परीक्षाओं में जो भी गलत तरीके अपनाए जाते हैं उन पर रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। सुरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: तो जैसा कि सुरेश जी हमें पता है कि आज संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया और अब ये कानून बन गया है। 2024 में इस कानून को बनाया गया था, अब फिर से संशोधन करके और इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं, तो इसके प्रावधानों की हम चर्चा करें। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुख्य रूप से इस कानून को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और सरकार कौन सा लक्ष्य इसके माध्यम से अचीव करना चाहती है।
4: अमरीश जी धन्यवाद। देखिए अभी अपने विद्यार्थियों का आपने प्रदर्शन देखा दिल्ली में
3: जी,
4: और जिसके चलते सरकार ने ये आश्वासन दिया विद्यार्थियों को कि सरकार की तरफ से यह पूरी प्रतिबद्धता है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको इंस्टाग्राम के माध्यम से भी और अपने वक्तव्यों के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष उन्होंने जो दिया संसद सत्र में, उन सबके माध्यम से उन्होंने यह बिल्कुल अपनी तरफ से प्रतिबद्धता जताई कि सरकार पूरी तरह इस पूरे सिस्टम में एग्जामिनेशन के सिस्टम में जो भी कमी है उसको दुरुस्त करेगी और सुनिश्चित करेगी कि आगे से ऐसे कोई पेपर लीक की कोई घटनाएं ना हो जो अपने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती है। इस बात का ध्यान रखा जाएगा और याद रखें कि पहले भी कुछ घटनाएं और इस तरह की घटनाएं देश में पिछले कई दशकों से चल रही है। 2024 में इन सबको संज्ञान में रहते हुए पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल जो है वो लाया गया था, लेकिन उसके मौजूदगी के बावजूद भी इस बार हमने नीट और कुछ अन्य परीक्षाओं में देखा कि किस तरीके से अपराधी तत्व जो है, जो कमियां हैं सिस्टम में, जो कमियां हैं टेक्नोलॉजी में, उसका लाभ लेते हुए, और इसमें जरूर एक नैतिकता का भी प्रश्न है। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार जो है, सरकार ने जब कड़े प्रावधान लगाए हैं तो लोगों के अंदर एक डर बैठे इस तरह कोई भी जो है कदम उठाने से पहले, तो ये सरकार ने इस वजह से इसमें पेनल्टी भी इसमें है और सजा को भी जो है और कड़ा बना दिया गया है ताकि जो भी अपराधी तत्व हैं वो सचेत रहें, वो इस तरह के जो कुकर्म है जिसमें दोबारा वो हिस्सा ना लें।
3: जी इसमें सुरेश जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि पहले से भी कानून था, अब उसमें अमेंडमेंट लाया गया, लेकिन पिछले जैसे दो दशक के अगर हम केसेस देखें तो बहुत सारे इस तरह के मामले आए हैं जहां पर पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ और फिर वो जाके कोर्ट से छूट गए। तो इस दिशा में अगर हम इस कानून को देखें जो संसद ने आज पारित किया है, उसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की बात की है, बहुत त्वरित जांच की और इन्वेस्टिगेशन की बात की है, इस विषय में आप हमारे श्रोताओं को और क्या बताना चाहेंगे?
4: देखिए इसमें कई प्रावधान जो है उसको जैसे मैंने कहा कि कड़े कर दिए गए हैं। जैसे जो भी व्यक्ति इस तरह के जो अनफेयर तरीके से इसमें भाग लेगा उसका पहले सजा जो है 3 से 5 साल का था, अब उसको 5 से 10 साल कर दिया है। पहले जैसे 10 लाख का जो है प्रावधान था पेनल्टी का, फाइन का, और अब वो जो है 50 लाख तक कर दिया है। इसी तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका 1 करोड़ तक का था लायबिलिटी और आज जो है उसका 5 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से जो भी जिम्मेदार लोग हैं, प्रबंधन के लोग हैं, उनको जो है 5 साल की सजा और हायर फाइन्स है। अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तरीके से है तो जो पहले 5 साल का प्रावधान था उसका न्यूनतम 7 साल कर दिया गया है और 10 करोड़ तक का जो है पेनल्टी इसमें लगा दिया गया है जिसमें जब्ती भी हो सकती है आपके प्रॉपर्टी की। और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशंस को अब पूरी तरीके से 2 महीने का ही समय दिया गया है कि सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर होना चाहिए। और जैसे आपने कहा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो है होना चाहिए, डे टू डे हियरिंग्स होने चाहिए और 3 महीने के अंदर चार्जशीट जो है वो लग जानी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य जो भी मेल प्रैक्टिस है, जो भी गैंग इस तरीके से माफिया इसमें इन्वॉल्व है और इन सब को जो है किस तरीके से, लेकिन साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी ने इसमें टास्क फोर्स बनाया है बहुत ही दिग्गज लोगों को नंदन नीलिकेनी जी के अध्यक्षता में, जिसमें वी कामकोटी, डॉक्टर सोमनाथ जैसे विद्वान और वैज्ञानिक और शिक्षाविद जिसमें हैं, पूरा इसका टेक्नोलॉजी का जो एस्पेक्ट है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, सिक्योर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर जो है बनाया गया। एनटीए ने भी अपनी तरफ से जो है अपने सिस्टम को सुधारने के लिए विज्ञापन भी दे दिया है और उसका ताकत जो है बढ़ाई जा रही है। तो सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरीके से हमारे विद्यार्थियों का हितों को संरक्षित किया जा सकता है जो पारदर्शी भी हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो, इस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है।
3: जी, तो आपको क्या लगता है इसमें प्रिवेंशन पे आपको लगता है कि कुछ और ज्यादा काम करने की जरूरत है? क्योंकि अगर बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन और सजा तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था इस तरह की बननी चाहिए जिसमें कि इस तरह की घटनाएं कम से कम हो या ना हो।
4: नहीं देखिए, ये सजा, एक तो सजा का डर के वजह से अब इतना आसानी से कोई इसके लिए रिस्क नहीं लेगा, लेकिन सिस्टम को भी सुधारने की बात की गई है जिसके तहत जो है हम देखते हैं कि जो टास्क फोर्स जो बनाई गई है, ये टास्क फोर्स चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन का मामला हो, सिक्योरिटी उसको कैसे सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इस बार तो सरकार ने जो है, क्योंकि इस विषय को देखते हुए, संजीदगी को देखते हुए, बहुत संवेदनशील तरीके से भारतीय वायुसेना का भी उपयोग किया गया, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए प्रायोगिक नहीं है कि वो नियमित तौर पर किया जाए। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी सिक्योर करना है, बहुत सारे विकल्प अब आ गए हैं, क्या इसको ऑनलाइन किया जा सकता है, पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस को किस तरीके से इसमें जो है हम विद्यार्थियों के अंदर जो है वो विश्वास पैदा कर सकते हैं कि उनका एक है कि नीट जैसे एग्जामिनेशन में जो है सीटें कम हैं, लाखों विद्यार्थी चंद सीटों के लिए जो है अपना प्रयास करते हैं, और उसमें भी अगर ये शक उसमें आ गया तो मैं समझता हूं कि सवाल विश्वसनीयता का है। विद्यार्थियों के अंदर वो पारदर्शिता और विश्वसनीयता इसको स्थापित करना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी को लगे कि मैं अगर जो भी लिखूंगा उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इसमें पक्षपात किसी के साथ नहीं किया जाएगा और मुझे अपने काबिलियत के आधार पर जो है मुझे जो मिलना है मिलेगा, ये भरोसा उनके अंदर पैदा करना बहुत जरूरी है।
3: जी सुरेश जी, इस कानून में अकाउंटेबिलिटी की बात कही गई है, जिसका मतलब हुआ कि जो लोग भी उस पूरे सिस्टम में, पूरी प्रणाली में शामिल हैं, चाहे वो प्रश्न पत्र को बनाने वाले हो, चाहे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाले हो, हर एक को जिम्मेदारी लेनी होगी। जो जिम्मेदारी की बात है, इस पहल से, इस प्रावधान से किस तरह का लाभ आप देखते हैं?
4: नहीं, निश्चित ही जब ये स्पष्टता आएगी तो मैं समझता हूं कि जिनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और पारदर्शी तरीके से हमको उनका चयन भी करना पड़ेगा, जो भी परीक्षा पत्र तैयार करेंगे या पेपर सेटर्स जिनको कहते हैं, उनके चयन में भी हमको जो है ऐसे व्यक्तियों को ही देना है जो अपने विषय के विद्वान तो है ही है, साथ में ही जो है उनका जो व्यक्तिगत उनका जो चरित्र है उस पर भी जो है किसी प्रकार का दाग ना हो, और जिनका जो है प्रतिबद्धता, जिनका समर्पण, जिनका जो है ईमानदारी जिसके लिए जाने जाते हो, तो ऐसे लोगों को ही जो है हमको ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। और हाँ, ये प्रावधान भी किए गए हैं कि कोई अगर किसी तरह का मिस एडवेंचर में गया तो उसको सजा भी मिलेगी, पेनल्टी भी लगेगी, उन सबको उसका तो इस कानून ने व्यवस्था किया ही।
3: जी, तो बहुत तरह तरह की, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो भी परीक्षाएं लेते हैं, तो ये कानून क्या सारे तरह के जो परीक्षाएं हैं और जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्तर पर लेते हैं, सभी पर समान रूप से लागू होगा?
4: नहीं बिल्कुल, ये पब्लिक एग्जामिनेशन की बात की गई है, सार्वजनिक जितने भी परीक्षाएं हैं उन सब में ये कानून लागू होगा, ये नहीं कि ये सिर्फ नीट पर लागू होगा। और अब राज्य सरकारों को ये तय करना है, ये तो यूनियन गवर्नमेंट के जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा चाहे नीट हो, सीयूईटी हो, सब पर यह लागू होगा, लेकिन राज्य सरकारें जो कर रही है उसके लिए उनको भी अपना व्यवस्था, या इसको जो है लागू करें या उनको अपना व्यवस्था करनी होगी।
3: जी, तो इसको लागू करने के लिए, इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए किस तरह का एक तंत्र की जरूरत है? जैसा आपने खुद ही अभी कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर तो हो सकता है, लेकिन सारी राज्य सरकारों के स्तर पर उस तरह के तंत्र को किस तरह से विकसित करने की जरूरत है जिससे कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके?
4: मैंने जैसे कहा कि एक तो टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना है
3: जी,
4: वो अगर सिक्योर हो गया तो हम एक टेम्पलेट बना सकते हैं जिसको केंद्र सरकार अपने परीक्षाओं के लिए नहीं, राज्य सरकार भी अपने परीक्षाओं के लिए, क्योंकि राज्यों से भी बहुत शिकायत आती है, चाहे सत्ता में कोई भी दल क्यों ना हो, शिकायत आती है। हमने राजस्थान में भी देखा, अन्य प्रदेशों में भी देखा, इस तरह की शिकायतें आती है। तो उसको अगर रोकना है तो सभी सरकारों को, मैं तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो हमारे नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो राज्य के सभी शिक्षा मंत्रियों को जो है इस विषय को लेकर बैठक की जाएगी, क्योंकि देखिए इस बात को देखिए कि एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हमको संवेदनशील रहते हुए उनको भी किस तरीके से, राज्य सरकार को भी ऑन बोर्ड, इसमें मुझे लगता है कि संकुचित संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर ये विद्यार्थियों के व्यापक हित में, मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर जो है विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना होगा।
3: जी जी सुरेश जी, जैसे अब ये पूरा जो कानून है वो पब्लिक एग्जामिनेशन को लेके है, लेकिन अगर हम देखें कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय हों, राज्य सरकार के हों या निजी विश्वविद्यालय हों, इनके अंदर भी परीक्षाएं होती हैं और वहां भी तरह तरह के जो अनफेयर मीन्स हैं या अनुचित साधन हैं उनका प्रयोग होता है, तो क्या इसके प्रावधानों को इसी रूप में विश्वविद्यालयों पर भी लागू माना जाएगा, या हम ये उम्मीद करें कि विश्वविद्यालय भी इसके अनुरूप अपने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे कि परीक्षाएं और ठीक से हों?
4: बिल्कुल, देखिए विश्वविद्यालय ऑटोनोमस यूनिट है, वो स्वायत्त है, वो अपनी परीक्षाएं कराते हैं अपने तरीके से। उनके ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों का तो CUET है जिसके अंतर्गत एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन अपने जो भी पाक्षिक हो, वार्षिक हो, द्विवार्षिक, जो भी सेमेस्टर वाइज हो, अभी इसमें तो ये शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो ये लागू नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी अलग है, उनके एजेंसियां अलग है, नेशनल जो आपका NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो इसमें इन्वॉल्व है ये केंद्रीय परीक्षाओं में, वैसे नहीं है उनके साथ, वहां तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करता है, लेकिन वहां भी हम अक्सर शिकायतों के बारे में सुनते हैं जो दबी जुबान में होते हैं, तो कहीं अपने विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, वहां भी हमको विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं हो रही है, क्योंकि वो लिमिटेड संख्या में होती है तो उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सभी इसमें से जितने भी प्रावधान जो लागू किए जा सकते हैं प्रायोगिक स्तर पर, वो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों को भी अपनाना चाहिए, कम से कम वो टेम्पलेट्स को अपनाना चाहिए, और जो जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है, जवाबदेही सुनिश्चित करना है, वो पेपर सेटर के लिए विश्वविद्यालयों में भी होना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक हो गया तो विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी, परीक्षा में जो प्रश्न पत्र तैयार करता है उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये सारे विषय पर भी जो है मुझे लगता है कि SOPs बनाने की आवश्यकता है सभी विश्वविद्यालयों को।
3: जी, इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चूंकि जो बड़ी परीक्षाएं, चाहे नीट की परीक्षा हो, JEE की परीक्षा हो, तो इन परीक्षाओं में जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं वो काफी व्यापक स्तर पर स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, जिसमें निजी स्वामित्व वाले स्कूल कॉलेज भी होते हैं, सारे सरकारी नहीं होते, और जो वेंडर्स हैं जिनके माध्यम से परीक्षाएं कराई जाती हैं वो भी हम निजी स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो आपके विचार से इस तंत्र को भी और बेहतर बनाने की जरूरत है जहां पर पूरा सरकार के नियंत्रण में ही हो और निजी क्षेत्र की या निजी वेंडर्स की भागीदारी कम से कम हो?
4: देखिए अब जैसे निजी विश्वविद्यालय भी हैं कई
3: जी,
4: तो उनके लिए कितना स्वीकार्य होगा ये इस बात को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्वायत्त बॉडी है
3: जी,
4: और ये विश्वविद्यालयों को ये अधिकार दिया गया है, लेकिन हाँ हम जवाबदेही जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रैगिंग है, अब रैगिंग में जो है एंटी रैगिंग का पोर्टल बना हुआ है, तो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वो शासकीय हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर हो, वो एंटी रैगिंग पोर्टल पे, एंटी रैगिंग पे वो कंप्लेंट कर सकता है, तो तुरंत विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया जाता है।
3: जी सुरेश जी, आपने बहुत ही सुझाव अच्छा दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक KG सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं।
0: सुर्खियों में।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की सुमधुर आवाज़ से। हेमंत कुमार का संगीत है कैफी आज़मी की शब्द रचना, फिल्म का नाम अनुपमा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

प्रेम पुजारी के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। प्रतीक्षा करें।

0: सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके
1: अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए

0: किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है, टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग

0: प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रूपये पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
6: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
5: Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
7: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister.
5: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded an apology from him in the House. Earlier, participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. On the passage of the Anti-Paper League Bill in the Lok Sabha, Education Minister Prahlad Joshi said the legislation aims to dismantle the paper league ecosystem and increase transparency, credibility and fairness in the examination process. Home Minister Amit Shah has congratulated every student in India on the passage of the bill. In a social media post, Mr. Shah assured that the Narendra Modi government will spare no one who attempts to imperil the future of students and will leave no stone unturned to ensure that they face the full wrath of the law. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and making insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Replying to a discussion on the bill, Minister of State for Home Nityananda Rai said the amendment in the bill reflects the collective commitment to the soul of India, national consciousness, cultural heritage and the ideals of the freedom struggle.
7: I humbly urge the Honourable House to pass the Prevention of Insults to National Honour Bill 2026 unanimously and contribute towards further strengthening the unity and honour of our nation and preserving the immortal history of our freedom struggle.
5: After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. Our correspondent brings a report on today's proceedings in both houses of parliament.
8: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, while the Rajya Sabha cleared the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The lower house also extended the tenure of Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session of Parliament 2026. Both Lok Sabha and Rajya Sabha also faced adjournments today as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this, question hour in both the houses could not be taken up. The Lok Sabha is scheduled to take up Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 tomorrow, the Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development Amendment Bill 2026 is scheduled to be taken up in Rajya Sabha. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: Several union ministers and BJP leaders today criticized leader of opposition Rahul Gandhi over his remark on the Union Home Minister Amit Shah in the Lok Sabha regarding alleged police action during the students' protest on the NEET paper leak issue. Talking exclusively to Akashwani, Union Minister S.P. Singh Baghel said Mr. Gandhi failed to uphold the dignity of the constitutional position he holds.
9: आज राहुल गांधी ने
10: टुडे राहुल गांधी डिड नॉट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इंस्टेड ही यूज्ड वर्ड्स दैट वर अनपार्लियामेंट्री ही मेड एलिगेशंस अगेंस्ट द होम मिनिस्टर डिस्पाइट हैविंग नो एविडेंस टू सब्सटेंशिएट देम एट नो पॉइंट अ मिनिस्टर इश्यूज ऑर्डर फॉर अ लाठीचार्ज फायरिंग टियर गैस और वाटर कैनन सच डिसीजंस आर टेकन बाय द सीनियर ऑफिसर्स पुलिस ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज प्रेजेंट एट द स्पॉट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस
5: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today reviewed preparedness for the forthcoming NEET-UG counselling 2026. The Ministry of Health and Family Welfare said it reaffirms the government's commitment to ensuring a transparent, merit-based, technology-enabled and student-friendly admission process for undergraduate medical courses across the country. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. In Odisha, heavy rains and rising rivers have triggered a severe flood situation, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. The administration has intensified rescue and relief operations as the flood situation continues to remain critical. More details from our correspondent.
1: A vast swath of northern Odisha today presents a harrowing panorama of submerged villages, marooned habitations and inundated farmlands as floodwaters continue their relentless advance. The surging Baitarani River is wreaking havoc across its basin in Keonzhar, Jajpur and Bhadrak districts, while the flood situation has assumed alarming proportions in Bhadrak, Jajpur and Baleswar. In Mayurbhanj, incessant rainfall and swollen rivers have further aggravated the crisis. Official sources say nearly 380,000 people across 304 gram panchayats have been affected. Even as rescue and relief operations continue on a war footing, a fresh challenge looms with a medium flood expected in the Mahanadi from tomorrow following persistent rainfall in its upper catchment. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
5: Meanwhile, in Assam, the relief and rehabilitation efforts are continuing on a war footing in the worst flood-affected districts of Shivasagar, Golaghat, Charaideo and Jorhat. Union Home Minister Amit Shah spoke with Assam Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma and assured all necessary assistance to the flood-hit state. On the other hand, the first budget session of the Assam Legislative Assembly concluded today, 2 days ahead of schedule, in view of the devastating floods in the state. In Chhattisgarh, heavy rainfall over the past 2 days has disrupted normal life in several parts of the state. Our correspondent reports that rivers and streams are overflowing in many districts, while road connectivity to several villages has been affected.
2: In Chhattisgarh, more than 50 girl students were shifted to a safer location after water entered a girls' residential school in Pantora of Gariaband district. In Nagri block of Dhamtari district, a holiday was declared today in some schools due to water logging. Chief Minister Vishnu Dev Sai has directed all district collectors and other officials to remain alert and take necessary precautions. Meanwhile, the India Meteorological Department has issued a red alert for heavy rainfall in Balod and Kankar district during the next 24 hours. Vikalp Shukla, Akashvani News, Raipur.
5: The India Meteorological Department, IMD, has forecast extremely heavy rainfall tomorrow over Madhya Maharashtra and West Madhya Pradesh. IMD also predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Lakshadweep. In Chhattisgarh, 8 Maoists, including 5 women cadres, surrendered before the police in Bijapur district today. Bijapur Superintendent of Police Umesh Gupta said the surrendered Maoists were carrying a total reward of 49 lakh rupees. The UN Human Rights Office has voiced concern over Islamabad's crackdown on peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Over 40 civilians were killed and several others injured in the firing by Pakistani forces on protesters during a march organized by the Joint Awami Action Committee from Rawalkot to Muzaffarabad on Monday. UN Human Rights Office spokesperson Jeremy Lawrence said the criminalization of a civil society organization and restrictions on public gatherings raise serious concerns about violations of rights to freedom of expression, peaceful assembly and association. Tensions have escalated in West Asia after Iran and the United States reported fresh military exchanges. Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps today claimed that its aerospace force targeted a U.S. air base and the U.S. Central Command headquarters in Jordan with ballistic missiles. Meanwhile, the U.S. military said it intercepted multiple ballistic missiles launched from Iran in what it described as an attempted surprise attack on American forces in the region. Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. We have a report.
9: Sensex surged by 889 points to close at 77,655. Nifty gained by 265 points to settle at 24,250. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index rose over 0.8%, while the Small-Cap 100 Index jumped nearly 1.5%. Meanwhile, in the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 21 paise to end at 95 rupees and 64 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
5: At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, 9 Indian boxers have assured medals for the country after sealing semi-final berths. 5 pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70 kg, Sakshi Chaudhary in women's 51 kg, Sachin in men's 60 kg, Ankush Pangal in men's 80 kg semi-finals and Narendra Birwal in men's 90 plus kg categories registered victories today. India's overall medal tally currently stands at 12, comprising 2 gold, 7 silver and 3 bronze. Prime Minister Narendra Modi today congratulated weightlifter Harjinder Kaur on winning the silver medal in the women's 69 kg weightlifting event at the Commonwealth Games. The Prime Minister also congratulated long distance runner Gulveer Singh on winning the silver medal in the men's 10,000 metres event. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insults to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.

मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रगीत।

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत। फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना, हेमंत कुमार का संगीत, फिल्म का नाम है मिस मैरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हसरत जयपुरी का लिखा गीत, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम रात और दिन।

लता मंगेशकर की गाए रात और दिन फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। प्रतीक्षा करें।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। एक तरफ आसमान से बरसती जिंदगी तो दूसरी तरफ उसी बारिश का रौद्र रूप। कहीं किसान की आंखों में अच्छी फसल के सपने हैं तो कहीं बाढ़ का पानी घरों की चौखट लांघ चुका है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं शहर कुछ घंटों की बारिश में थम जा रहे हैं और कहीं एक मोबाइल पर आया छोटा सा मौसम अलर्ट हजारों जिंदगियां बचाने की उम्मीद बन जाता है। आज मॉनसून केवल एक मौसम नहीं रहा, ये विज्ञान की परीक्षा भी है, प्रशासन की तैयारी भी और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी। बदलते जलवायु परिदृश्य में मॉनसून का स्वरूप लगातार बदल रहा है। कहीं कुछ घंटों में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है तो कहीं लंबे समय तक वर्षा का इंतजार बना रहता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आने वाले खतरों को समय रहते पहचान पा रहे हैं? क्या हमारी चेतावनी प्रणाली, हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र और हमारी सामुदायिक तैयारी इस बदलती चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज होगी चर्चा। हमारे साथ हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक, जो मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली के विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञ, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम चर्चा का विषय है में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर पटनायक, शुरुआत आपके साथ करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि कुल मॉनसूनी बारिश भले सामान्य रहे, लेकिन जिसे कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, यानी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। IMD अपने मेशो स्केल और अर्ली वार्निंग मॉडल

0: को इस सूक्ष्म स्तर के पूर्वानुमान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अगर हम कहें तो किस तरीके का अपडेट उसमें आया है, क्या नई तकनीक आई है और उसका कितना असर आप देख रहे हैं?
1: जैसे आपने पहले भी बताया कि ये क्लाइमेट चेंज जो बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण जो हाई इंटेंसिटी रेनफॉल उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर बढ़ रहा है। ये एक बहुत परिमाण में हमारा जितने सारे भी डाटा देखा गया है पिछला 100 साल 50 साल अगर हम देखेंगे तो ये जो जितना हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का इवेंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए हो रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो मॉइस्चर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसका काफी बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में और जब इंस्टेबिलिटी होता है तो वो हैवी डाउनपोर हो जाता है। इसलिए अगर पूरा रेनफॉल अगर सीजन का मानसून सीजन जैसे जून टू सितंबर में अगर टोटल रेनफॉल अगर कंट्री एज ए होल अगर हम देखेंगे पिछले 30-40 साल में 50 साल में तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड नहीं दिखने को मिलता है। वो बहुत अच्छी बात है, हमारा एग्रीकल्चर देश है। लेकिन तो हमारा जो एग्रीकल्चर देश है उसमें क्या होगा कि ये तो हमको अच्छी बात है कि रेनफॉल जो है डिक्रीजिंग ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। लेकिन जब हम टोटल रेनफॉल को हम डिवाइड देते हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा एक दिन में अगर ऐसा होता है तो उसका अगर काउंट करेंगे तो वो सब दिन का बढ़ रहा है। तो आप जैसे सवाल किया कि हमारा प्रणाली में पिछले 5-10 साल में हमने क्या सुधार किया है जो कि उसका आलियन, तो हमने काफी हमारा इम्प्रूवमेंट इसमें किया है। पहली तो बात यह है कि ये शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इवेंट को पहले मॉनिटर करना पड़ता है। मॉनिटर करने पर कि अगर कोई चीज क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ इसमें हो रहा है तो ये कि ऐसा इमीडिएटली अगर एक में या 12 घंटा में दे देगा तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे। हमारे पास मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे हैं, सरफेस ऑब्जर्वेशन है, हम बैलून छोड़ते हैं, हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, राडार है, सैटेलाइट है, उसमें कंटिन्यूअसली हमारे पास आज 50 राडार है तो हमने इसमें से कंटिन्यूअसली हम देखते रहते हैं कि कोई ये मैंने कन्वेक्टिव क्लाउड बन रहा है क्या। उसके बाद ये जब हो जाता है तो इमीडिएटली हमने इसका सूचित करते हैं कि ये इसी एरिया में बहुत हैवी रेनफॉल होगा। दूसरा है कि हमारे पास न्यूमेरिकल मॉडल, ये जो वेदर प्रेडिक्शन है खाली हम सैटेलाइट राडार इमेज देख के हम फोरकास्ट नहीं देते, उसमें से नहीं होगा, वो थोड़े से थोड़े हमारा 2-3 घंटा के लिए हम बता पाएंगे। लेकिन हम जब 5 दिन पहले कुछ बता रहे हैं कि 7 दिन पहले बता रहे हैं तो इस टाइप का इवेंट होने वाला है 2 दिन के बाद, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल मॉडल चाहिए। तो न्यूमेरिकल मॉडल में हमने काफी इम्प्रूव किया है, हमारे सब जितना सारे डाटा अभी सैटेलाइट से AWS से सब आ रहा है वो मॉडल में जा रहा है, मॉडल में प्रोसेस हो रहा है, मॉडल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारे पास सुपर कंप्यूटर आया है, सुपर कंप्यूटर क्यों इसलिए चाहे कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है जब वेदर प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो पावरफुल कंप्यूटर पहले नहीं था हमारा, अभी अभी हमने लाया है पावरफुल कंप्यूटर जो कि अभी हमारे पास 20 पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा मशीन है। इसका चलते हुए हमारा जो मॉडल का जो भी है अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो इसलिए अर्ली वार्निंग जो मॉडल फोरकास्ट दे देगा तो हम अर्ली वार्निंग इसमें अच्छा से कर पा रहे हैं और अर्ली वार्निंग के कारण चलते हमारा वार्निंग जो मैकेनिज्म बाद में, और एक चीज है ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद हमारा जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक जो बोलते हैं हम जब एक डिसीजन लेते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजर को हेल्पफुल होगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजर खाली हम ये हो जाएगा कि ओडिशा में बारिश हो जाएगा ऐसा बोलने से उन्होंने पिन पॉइंट एक्शन नहीं ले पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, आपको लोकेशन स्पेसिफिक चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में उसको हम स्टेट लेवल से फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर कौन सा सिटी लेवल में आते हैं, तो वो इतना फाइन ट्यून करने के लिए हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काफी मददगार होता है। और उसके लिए हमारा सेटेलाइट राडार के साथ साथ हमारा जितना भी मॉडल आउटपुट सब बन रहा है हमारा मॉडल और हम कस्टमाइजली दूसरा मॉडल को भी यूटिलाइज करके हम एक कस्टमाइज फोरकास्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हैवी रेनफॉल अभी जैसे ओडिशा में चल रहा है, ये काफी दिन से हमने रेड कलर वार्निंग दिया है, तो ये सब संभव है कि काफी जो ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग कम्युनिकेशन हमारा फिर डाटा एसिमुलेशन न्यूमेरिकल मॉडल फिर हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये सारे कम्बाइंड अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस इंडिया में डिपार्टमेंट, उसके चलते हुए हमारा ये फोरकास्ट एक्यूरेसी भी काफी इम्प्रूव।
0: जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक कह रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं मौसम विभाग की प्रणालियों में जिससे कि जो पूर्वानुमान है वो 100% लगभग सही होने लगे हैं। अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं कि जब भी भारी बारिश या बाढ़ की चेतावनी जारी होती है तो एक आम परिवार को अपने घर के स्तर पर क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, खासकर अगर हम जैसे बात करें तो कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जैसे हम फर्स्ट एड किट रखते हैं अपने घर में, क्या उस तरीके से आपदा के लिए या भारी बारिश की चेतावनी बाढ़ की चेतावनी के लिए कोई इमरजेंसी किट होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें होनी चाहिए जो मुसीबत के समय जान बचा सकती है?
2: आनंद जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। जब भी भारी बारिश की हम चेतावनी आती है तो

0: जन समुदाय को तैयार रहने के लिए कहते हैं, न सिर्फ जन समुदाय बल्कि जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, जो आपदा प्रबंधन के लिए जिन जिम्मेदार हैं, उनको भी तैयार रहने को कहा जाता है। अक्सर एक आम व्यक्ति को या परिवार को जब भारी वर्षा की चेतावनी मिलती है, उस समय सबसे पहले तो यही होता है कि आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर रास्ते में कहीं पर भी बाढ़ मिल सकती है, कहीं पुल टूट सकता है, कहीं रास्ते बह सकते हैं, और इस तरह की कई संभावनाएं आपदाओं की होती हैं जो भूस्खलन या बाढ़ या भूमि के खिसकने के रूप में दिखाई दे सकती हैं। तो इमरजेंसी में आपको एक तो टॉर्च, क्योंकि अक्सर जब भी भारी वर्षा होगी तो पावर सप्लाई ब्रेकआउट होगा, तो उस समय में आपको टॉर्च की एक आवश्यकता रहेगी, एक टॉर्च जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको जरूरी है घर से बाहर निकलना, तो आपको एक प्रॉपर अम्ब्रेला या रेनकोट वगैरह की जरूरत रहेगी। और इसके साथ में आप जो है कहीं पर अगर जा रहे हैं और कहीं मिट्टी या मलबे से क्रॉस करते हैं, तो अगर आप डंडा या रस्सी भी साथ में रखते हैं तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा जो जरूरी आपकी दवाइयां वगैरह हैं जो सर्वाइवल किट्स में जरूरी होती हैं, वाइटल मेडिसिन, वो भी आपके पास उपलब्ध रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में हो सकता है बाजार वगैरह भी खुले ना रहें। तो जो भी बारिश का समय होता है और आप पूरा चेतावनी आती है, उसके अनुसार उस समय अवधि के लिए आपको पूर्ण तैयारियां अपने सर्वाइवल के लिए करके रखनी चाहिए। पहले से हम मॉक ड्रिल्स वगैरह करके रखते हैं, इवैक्यूएशन रूट का हमें पता है, कहीं पे फंस गए या रिक्तिकरण करना है तो कौन से सुरक्षित स्थल हैं या कौन से सुरक्षित भवन हैं जहां पर आप समय रहते हुए अपने बचाव के लिए जा सकते हैं, उनका भी आपको ज्ञान रहना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा आम व्यक्ति आजकल बारिश के सीजन में कहीं कहीं बाहर पर्वतीय स्थलों पर चले जाते हैं, तो वहां पर बड़ा मतलब ध्यान से जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए भीड़ भाड़ इलाके में या फिसलन वाले इलाके में नहीं जाएं। और कहीं पर भी जैसे ज्यादा लोगों के जाने की संभावना है, वहां जाने को आप अवॉइड करें, बचें, ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो और किसी तरह की भगदड़ ना मच पाए। तो ये अक्सर होता है कि बारिश के टाइम पे मंदिर में या जो हमारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं वहां इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एकदम बारिश होती है और लोगों में भगदड़ मच जाती है, उसकी वजह से भी कई बार डेथ्स हो जाती है। तो हमको तैयारी के लिए इमरजेंसी किट, जिसमें आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, वाइटल मेडिसिन होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास रस्सी या लाठी हो तो और अच्छा है, और अगर सीटी भी रखते हैं तो अच्छा रहता है दूसरों को सचेत करने के लिए या बुलाने के लिए।
1: डॉक्टर पटनायक, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि मुंबई, दिल्ली और बाकी बहुत सारे महानगरों के छोटे छोटे ब्लॉक्स में अर्बन फ्लडिंग की समस्या काफी देखने को मिली है। अब इन अर्बन फ्लडिंग्स को लेकर आईएमडी के फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम, जिसे एफएफजीएस भी कहते हैं, उसका सटीक प्रभाव जमीनी स्तर पर नगर निगम और आपदा टीम तक कितनी तेजी से पहुंचाना संभव हुआ है, इस दिशा में क्या प्रगति हुई है?
2: आजकल जो है अर्बन फ्लडिंग जो है एक बहुत बड़ा समस्या है हमारा, जैसे अर्बनाइजेशन काफी हो रहा है, अर्बन डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बन रहा है जिसमें कि पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। तो जब सिटी में पहले इतना बारिश होता था तो ये इतना नोटिस नहीं हो रहा था, उसका पानी ठीक से निकल गया, ड्रेनेज सिस्टम है, ये है, तो थोड़ा सा अगर बेहतर है तो उसमें से ये फ्लडिंग नहीं होता। लेकिन आजकल क्या है, जब इंटेंस रेनफॉल इवेंट जब बोल रहे, अगर एक घंटा में कभी क्लाउड बस्ट टाइप इवेंट, जो आपको भी पता है कि एक घंटा में अगर 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाता है तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट टाइप का भी बोलते हैं। तो ये है हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट जब होता है अर्बन में, तो इसमें ये अर्बन फ्लडिंग का समस्या आ रहा है। तो इसलिए अर्बन फ्लडिंग को हम जो आप बता रहे हैं कि फास्ट फ्लड गाइडेंस सिस्टम हमारा जो एफएफजीएस है, ये एक डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेटेरियल ऑर्गेनाइजेशन तरफ से है, ये इंट्रोड्यूस किया है। तो हमारा जो इंडिया में है, हम सारे वाटर स्टेट रीजन के लिए हम ये अर्बन फ्लडिंग का एफएफजीएस है वो देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे एरिया के लिए भी हमारा सब मैपिंग हुआ है, तो जितना भी रेनफॉल हमको ऑब्जर्वेशन रेनफॉल मिल रहा है वो सारे उसमें आएगा। एंड उसके बाद वो जो सॉयल मॉइस्चर है, क्योंकि जब क्या होता है, जब सॉयल मॉइस्चर ऑलरेडी वेट है तो उसके बाद अगर बारिश हो जाता है तो उसका ड्रेनेज इतना जल्दी पानी निष्कासित नहीं हो पाता है, वो सब चीज उसी मॉडल में रहेगा एफएजीएस। और उसमें हमें कितना रिस्क है ये एक तरह से हम गाइडेंस देते हैं। तो हर दिन हमारा सुबह भी बनता है, शाम को भी बनता है, दो बार दिन में तो बन रहा है। तो अगले घंटे के लिए देते हैं जो कि ऑब्जर्व रेनफॉल में कितना रिस्क है, और उसके बाद हमारा फोरकास्ट भी अगले 24 आवर्स में जो कहाँ कहाँ ये होने वाला है इसका देते हैं। आज जैसे कि अभी हमने मानसून डिप्रेशन चल रहा है, अभी ओडिशा में काफी किसी जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल

0: हम दे रहे हैं ये काफी हद तक यूजफुल है। ऑलरेडी अर्ली वार्निंग हमने दे दिया, हैवी रेनफॉल या वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दे दिया, तो फिर हम जो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी उसके साथ साथ इमीडिएटली देते हैं कि कौन सा ब्लॉक है, कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर शेड है जिसमें कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस का रिस्क ज्यादा है।
1: इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, जैसा डॉक्टर पटनायक बता रहे थे कि शहरों में जो कम समय में ज्यादा बारिश होने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है, सूर्य प्रकाश जी आपसे समझना चाहेंगे कि जब शहरों में जल भराव होता है तो अक्सर रास्तों पर चलने या बिजली के खंभों के पास जाने से हादसे हो जाते हैं, ऐसे जल भराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे कि सड़क पर निकलते समय और घरों के भीतर किन बुनियादी सावधानियों का पालन करें ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आसपास के लोगों को भी वो जागरूक कर सकें।
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ के साथ ये समस्याएं होती हैं शहरी क्षेत्रों में कि जो अवसंरचनाएं हैं, जो हमारी पावर लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइन्स हैं, वो भी कई बार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या प्रभावित होती हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से डेथ्स होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सभी को जो भी घर से बाहर हों, अगर सड़क पर हैं, तो ये ध्यान रखें किसी भी ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक पोल या लाइव वायर्स के नीचे से ये ना क्रॉस करें और किसी तरह का रिस्क ना लें अगर वो पैदल भी चल रहे हों। दूसरा, अगर घर में आप रह रहे हैं तो जो भूतल पर रहते हैं उनके घरों में भी बाढ़ का पानी आ जाता है, भर जाता है, और कई बार उनका इलेक्ट्रिक कंट्रोल रूम भी बिल्कुल भूतल पर ही होता है जो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है कई बार, तो उसको अगर हमने स्विच ऑफ नहीं किया तो उससे भी करंट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप जो है अपना मेन कंट्रोल रूम जो है या स्विच है उसको हमेशा ऑफ कर दीजिए ताकि पावर कंटिन्यूटी की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट लगने के खतरे कम से कम हो जाए। और दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, तो जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो सब पासिस हैं या अंडरवेज हैं, उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबवेज में कई बार लो लाइंग एरिया होता है और काफी पानी भर जाता है जिसका अंदाजा हमें नहीं लगता है, तो ऐसे में भी डूबने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो ये दो बड़े प्रिकॉशन हैं जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आप किसी भी पानी के भराव क्षेत्र में बिना अंदाज लगाए और अनुमान के आप कहीं भी उसमें एंटर ना करें। और दूसरा, पावर सप्लाईज और करंट का हमेशा ध्यान रखें कि उनसे दूर रहें, बच के रहें, और कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी को करंट लग सके। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारियां जिसका ध्यान रखने की जरूरत है। मैं इसके अलावा ये कह रहा था कि गैस सप्लाई का भी है, हमारे यहाँ पीएनजी है दिल्ली में जैसे, उसमें भी कई बार लीकेज या कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें कि गैस सिलेंडर वगैरह या आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी आप जो है भराव वाले क्षेत्र से ऊपर रखें, मतलब जितना अगर आप ऊंचाई पे रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगी वो चीजें।
1: डॉक्टर पटनायक, अगर आपसे ये समझने की कोशिश करें कि हाल के वर्षों में डॉपलर वेदर रडार का नेटवर्क काफी बढ़ा है और मौसम के सटीक और नाउकास्टिंग का मतलब तत्काल पूर्वानुमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रडार तकनीक से जो सुधार आया है, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत का सुधार आप देखते हैं और इससे आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है, किसानों के लिए ये कितनी राहत की बात है और सरकारी तंत्र इससे किस तरह लाभान्वित हो रहा है।
0: देखिए, ये अभी जो आप बताए कि डॉपलर राडार हमारा काफी नेटवर्क बढ़ गया है, अभी हम अगर 2014-15 में जो 15-20 राडार के नीचे था उसमें आज हमारा 50 राडार के आसपास आ गया। तो ये डॉपलर राडार में क्या हो रहा है कि जब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है तो सारे जगह में हम जब रडार रखेंगे तो उसका 300 किलोमीटर का भी 400 किलोमीटर इफेक्टिवली 200 किलोमीटर ये रेंज में रडार जो है कोई भी कन्वेक्टिव सेल जो है जो कि ये हैवी रेनफॉल जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट को जो देता है उसको मॉनिटर करने के लिए रडार एक बहुत उपयोगी है। तो पर्टिकुलरली जब हम जो जगह में जो हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन का कोई मैकेनिज्म है नहीं, जैसे पहाड़ी एरिया में, उत्तराखंड एरिया, ये एरिया में भी वो राडार जो बहुत हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि उसको मॉनिटर करेंगे। जैसे आपने पता नाव कास्टिंग, तो ये राडार डाटा लेके हम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नाव कास्टिंग देते हैं, अभी हर 3 घंटा में हम अपना नाव कास्ट देते हैं और अपडेट करते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट एरिया में अगर कोई भी खतरा है तो उसमें रेड कलर वार्निंग दिया जाता है। तो जैसे कि आजकल ये हो रहा है कि आकाशीय बिजली में बहुत सारे लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है, मैंने बहुत सारे कैजुअलिटी जो डेथ हो रहा है आकाशीय बिजली में होता है। तो ये मानसून टाइम में जो क्लाउड होता है, क्लाउड टू क्लाउड भी बिजली होता है, क्लाउड टू ग्राउंड भी बिजली होता है, तो जो क्लाउड टू ग्राउंड वाला जो बिजली स्ट्राइक होता है उसमें बहुत सारा जानमान का क्षति होता है। तो ये जो लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसमें हमारा नाव

0: कास्टिंग काफी हेल्पफुल है। तो हमने पहले इतना हमारा नहीं था, जो नाव कास्टिंग में हमने जितना इम्प्रूवमेंट किया है तो राडार नेटवर्क के चलते हमारे पास जो आपने अभी बताया AI ML भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, उसको भी हम यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर सेल जो कन्वेक्टिव सेल बनते हैं राडार में दिखता है वो धीरे धीरे मूव होता है। वो अगर 2 घंटा पहले अगर इसी जगह में है तो ये हमारा दिल्ली की तरफ आ रहा है, 2 घंटा के बाद यहाँ हो जाएगा, तो हमने 2 घंटा पहले ही वार्निंग दे देते। तो ये छोटा सा शॉर्ट टर्म जो वार्निंग भी है काफी हद तक जो पॉपुलर सिटी है इसमें के लिए भी बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि लोग ट्रैफिक जाम हो जाता है या आप जैसे देखे होंगे कि बारिश के कारण। तो ये सब चीज के लिए हमारा राडार जो नेटवर्क और राडार जो इंटेंसिटी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं राडार रिलेटेड, वो सब यूजफुल होता है। और दूसरी बात, जो गाँव के लिए भी जो खेती में भी काम करते हैं वो एक्सपोज होते हैं, तो उसको लाइटनिंग का भी थोड़ा सा इंडिकेशन मिलना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा 2 घंटा पहले भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होने का अगर संभावना अगर बताया जाता है तो वो क्या करते हैं कि उस जो सेफ एरिया में चले जाते हैं। तो वो सब चीज ये एक हिस्सा में काफी मदद करता है हमारा राडार एंड उसका जो हमारा जो टेक्निक है।
1: प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, जैसा कि डॉक्टर पटनायक बता रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म को लेकर भी जानकारी प्रदान की जाती है जिससे कि लोग सेफ जगह पर चले जाएं। आपसे इसी विषय पर समझना चाहते हैं कि जो सुरक्षित जगह है उसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो खुले में हैं तो किसी टीन शेड के नीचे चले जाएं या फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो वो सुरक्षित रहेंगे। जो किसान खेतों में रहते हैं वो कहां जाएं, चूंकि आसपास कोई छिपने की जगह नहीं होती है, पक्की छत नहीं होती है, तो वो क्या करें। और एक और बड़ा मिथ है, जो लोग समझते हैं कि वो घर में हैं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, वो घर में हैं वो सुरक्षित हैं। तीनों ही स्थितियों के लिए आप आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या सलाह देंगे?
2: बहुत ही संबंधित सवाल है, क्योंकि जब भी हमारे भारी वर्षा होती है उसके साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग, ये दोनों इवेंट्स भी अक्सर होती हैं, पर्टिकुलरली क्लाउड वर्स के टाइम पर। तो उस समय में बड़े ये ध्यान देने की बात है कि आप अगर खेत में हैं किसान लोग तो वो पेड़ तले ना जाएं। पेड़ तले बिजली लगने की जगह घटनाएं ज्यादा होती हैं, और अगर आप खुले मैदान में दोनों पैर एक साथ इकट्ठे करके उड़कू बैठ जाते हैं जैसे मुर्गा बैठता है तो उसमें करंट लगने की घटनाएं कम होती हैं। लाइटनिंग से हमारे यहाँ काफी डेथ्स होती रही हैं, और इसकी मेन वजह जैसे आपने कहा कि आप टीन शेड के नीचे चले गए, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है तो वहां पर करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अगर ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और आपके जरिए अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो अक्सर लोग सोचते हैं छाता ले लें, पेड़ के नीचे चले जाएं तो हम सेफ हैं, परंतु ऐसे में सेफ्टी आपके एक्शन पर है कि आप अगर उस समय में खुले में हैं और पास में नजदीक कोई सेफ शेल्टर नहीं है तो आपको वहीं पर उकड़ू दोनों पैर जोड़ के बैठना चाहिए ताकि आपके बॉडी के थ्रू मिनिमम लेवल से करंट पास हो और सीधा ग्राउंड में चला जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन होती है। और दूसरा, शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हम बहुत यूज करते हैं। जब भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर ये संभावना होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के जरिए जो लाइटनिंग का करंट फ्लो कर जाए और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फेल हो सकते हैं। तो कभी भी लाइटनिंग होती है तो उसमें अक्सर हमें प्लग्स को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के निकाल देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि घर में लाइटनिंग की वजह से कोई करंट का प्रवाह ना हो। तो ये दोनों प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। और अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप सेफ साइड में होकर अपनी गाड़ी खड़ी कर दें ताकि आपको करंट की संभावना कम से कम रहे।
1: डॉक्टर पटनायक, आकाशवाणी के श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अलग अलग राज्यों में इस समय मॉनसून की वर्तमान स्थिति अलग अलग है। अगले 15 दिनों या अगले 1 महीने की हम बात करें तो भारत के कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए अगर समझा पाए आप कि मॉनसून की क्या स्थिति रहने वाली है।
0: आज तो 29 जुलाई है, आज अगर हम देखेंगे तो एक मानसून टाइम में जो बारिश देता है, मानसून डिप्रेशन सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल के से होते हुए उड़ीसा, उड़ीसा के बाद इंटीरियर उड़ीसा, थोड़ा सा झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ तरफ मूव हो रहा है। तो आज अभी वो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के तरफ भी एंटर हो रहा है। इससे चलते काफी जो वेस्टर्न ओडिशा में है, इंटीरियर ओडिशा में आज जो है रिपोर्ट हो गया, बहुत बारिश रिपोर्ट हुआ है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो गया है, कुछ कुछ जगह में 300 मिलीमीटर रेनफॉल भी ज्यादा हुआ है, उससे भी ज्यादा हुआ है, बहुत सारे स्टेशन में है 200 से भी ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है। तो ये एक बहुत हैवी रेनफॉल जो है वहां उसी एरिया में काफी फ्लडिंग उसके भी चलते, और वो थोड़ा सा वेस्टवर्ड जाएगा तो छत्तीसगढ़ एरिया में भी हमने चेतावनी दिया है, थोड़ा सा विदर्भ एरिया में भी चेतावनी दी।

0: है, तो ये जो अभी एक्टिव जो मानसून सेंट्रल इंडिया मध्य भाग में है, एक दो दिन चलेगा और जब तक ये सिस्टम थोड़ा सा वीक ना हो जाए, तब जब ये उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि मानसून ट्रफ ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में भी थोड़ा सा बारिश होगा। जुलाई महीना एंड होने वाला है, जुलाई तो आप रेनी मंथ है, आपको पता है जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश जो होता है हमारा मानसून सीजन में जुलाई महीना में होता है, और इस बार भी जुलाई खराब नहीं हुआ है, जुलाई अच्छा हुआ है। 1 जुलाई से अगर आज दिन तक देखेंगे तो हमारा जस्ट 1% रेनफॉल कम हुआ है, जून में हमारा 38% कम हुआ था। तो जुलाई में इतना कम होने के कारण आज के डेट में हम जो कंट्री का रेनफॉल है, फर्स्ट जून से अगर हम 28 जुलाई का मानेंगे तो लगभग 15% दिन थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि जो जून में जो कम हुआ था वो हमको जुलाई में काफी हद तक मेकअप हो गया है। लेकिन आप यस जो जैसा बता रहे हैं कि रेनफॉल जब देता है तो आपका हैवी रेनफॉल देता है, बाढ़ वगैरह भी स्थिति में आता है। और दूसरा, अगले महीने के हर दिन हम फोरकास्ट करते हैं 7 दिन के लिए, जैसे कि वार्निंग देते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन महीने का जो फोरकास्ट है हम वो महीने में एंड में करेंगे। जुलाई का एंड में अभी आ गया है तो 31 जुलाई को हम अगस्त के लिए ओवरऑल एक फोरकास्ट भी बनाएंगे कि अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। और बाकी हमारा जो रेगुलर फोरकास्ट है हर दिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए सिस्टम वगैरह वार्निंग वगैरह वो देते रहेंगे, एंड हर हफ्ते अगर गुरुवार को हमने एक 4 हफ्ते का फोरकास्ट भी देते हैं, तो वो भी हमारे आने वाले गुरुवार को ये हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर हम मंथली फोरकास्ट भी देते हैं। तो इसीलिए हमारे जो फोरकास्ट है सारा डिफरेंट टाइम स्केल के देंगे। अभी फिलहाल मानसून अगर कंट्री ये हो लगा देखेंगे आज तक थोड़ा सा मानसून रेनफॉल कम हुआ है, 15% कम रेनफॉल हुआ है।
1: सूर्य प्रकाश जी, आकाशवाणी के इन कार्यक्रमों की कोशिश यही होती है कि श्रोताओं की जिज्ञासाओं को हम समाधान करें और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान भी उन तक पहुंचाएं। मॉनसून में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना पसंद करते हैं, आपने भी कुछ समय पहले उसका जिक्र किया था, वहां अचानक लैंडस्लाइड आ जाती है या फ्लैश फ्लड का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सैलानियों या स्थानीय लोग जो वहां की यात्रा की योजना बना रहे हैं या जो वहां हैं, फंस जाने की स्थिति में तुरंत क्या सुरक्षात्मक कदम वो उठाएं?
2: भूस्खलन काफी मात्रा में और कई जगहों पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, और उसकी जब भी ऐसा घटना में आप अगर उसमें फंस जाते हैं तो सबसे पहला तो ये कि आप अपना बचाव के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए हैं तो अगर गाड़ी में हैं तो गाड़ी को जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उसे या तो पहले रोक दें या तुरंत आगे जा निकलने के बाद ही रोकें, बीच में नहीं रोकेंगे। ऐसे में भूस्खलन में दबने की चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी भूस्खलन क्षेत्र में खड़ी रहती है। दूसरा, अगर आप पैदल जा रहे हैं और अगर कहीं पर भूस्खलन में आप फंस जाते हैं तो आपको नियरेस्ट जो सुरक्षित बाउंड्री है उसकी तरफ जाना चाहिए, आप स्लोप एरिया में, नीचे की तरफ नहीं। लोग, आपने देखा होगा अभी जो पीछे राली में हुआ था, लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, जिधर भूस्खलन चल रहा था उधर ही उसी दिशा में लोग भी भाग रहे थे, तो ऐसे में दबने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, अगर आप दर्शक हैं और आप देख रहे हैं कि कोई फंस गया है या कोई गाड़ी फंस गई है तो तुरंत हमें 112 पर फोन कर देना चाहिए ताकि सहायता करने वाले जो हमारे आपदा मोचन बल के कर्मी हैं वो वहां पहुंच जाएं और समय पर उनको रेस्क्यू कर पाएं। तो ये सब चीजों का ध्यान बहुत देना जरूरी है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जो है, भूस्खलन में ज्यादातर कैजुअलिटीज 2 वजह से होती है। एक, कोई पत्थर सिर पे आके गिर गया, हेड इंजरी हो जाती है, तो आपको जैसे भूकंप में हम हेड को प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे ही भूस्खलन में भी अगर आपदा में फंस जाते हैं तो अपने सिर को हमेशा बचा के रखें, उस सिर पे हाथ डाल लें या कोई और कुछ रख लें ताकि आपको हेड इंजरी नहीं हो। दूसरा, अगर मलबे में फंस जाते हैं तो मलबे में एक हम कहते हैं एस्फिक्सिएशन होता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर मलबा चला जाता है और आपको सांस लेने के लिए दिक्कत आने लग जाती है और उसकी वजह से डेथ्स होती हैं। तो ऐसे में कभी भी ऐसा हो तो आपको हमेशा अपना अंदाज लगाना है कि आप कैसे फंसे हैं, ऊपर हैं या नीचे हैं। अगर आप थूकेंगे तो ग्रेविटी से थूक हमेशा आपकी ठोड़ी की तरफ आएगा, और अगर नाक की तरफ जा रहा है इसका मतलब आप उल्टे हो गए हैं। भूस्खलन में फंसने में कई बार अपने घर में है और घर पूरा उलट पलट जाता है भूस्खलन के दौरान, तो पहले तो अपनी परिस्थिति की जानकारी लेनी है कि हम सही दिशा में ऊपर की तरफ है या उलट गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस को हमें देना है और ध्यान रखना है ताकि घबराहट ना हो और आप अपने बचाव के लिए उपाय कर पाएं। इससे पूर्व आपको उनके संकेत भी देखने हैं। भूस्खलन जब भी शुरू होता है वर्षा के दौरान, जो पानी की वजह से भूस्खलन होते हैं वो अक्सर पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकलती है फिर बड़े पत्थर खिसकते हैं, तो अगर कहीं से ऐसे मिट्टी खिसक रही है और बह रही है और आ रही है तो हमेशा हम उस क्षेत्र में ध्यान पूर्वक

0: जाएं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी जहां जहां ऐसा भूस्खलन का खतरा होता है वहां पे बोर्ड लगाते हैं कि यहां भूस्खलन या भूदशा की संभावनाएं हैं, तो उन क्षेत्र में वर्षा के दौरान जाने के लिए कोशिश ना करें। यही हमारे बचाव के उपाय हैं।
1: मानसून सिर्फ बादलों का बरसना भर नहीं है, यह हमारी मिट्टी की सौंधी महक है, हमारे किसानों की उम्मीद है और हमारी नदियों की रवानी है। लेकिन प्रकृति जब अपनी रौ में आती है तो एक बात हमें साफ समझा जाती है कि तैयारी ही बचाव है और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा से स्पष्ट है कि मौसम विज्ञान की सटीक तकनीक और आपदा प्रबंधन की मुस्तैदी तब तक अधूरी है जब तक हम और आप एक सजग नागरिक बनकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जरा सी सावधानी, सही जानकारी और आपदा के समय एक दूसरे का थमा हुआ हाथ किसी का घर बहने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर पटनायक आपका, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश आपका बहुत बहुत आभार।
2: नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून में आपदाओं से बचाव के उपाय और जन जागरूकता पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है मीडियम 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक बोल कहां से आया तू। निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता है संजीव मालवीय।
5: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक बोल कहां से आया तू। इसके लेखक हैं खुर्शीद अजय, नियोजन रवि सोनी का, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता संजीव मालवीय।
6: क्यों ऐसा? अगर इस बार भी लॉटरी खुली और अरमानों पर पानी फिर गया तो क्या करेंगे? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहूंगा।
7: मैं नहीं समझी तुम क्या कह रहे हो। जब भी बात करते हो मुहावरों में बात करते हो।
6: अरे मेरा मतलब है लॉटरी में मेरे नाम ट्रक के बजाय साइकिल खुली ना तो मेरे मित्र हंसी उड़ाएंगे।
7: फिर मुहावरों का तीर छोड़ दिया। 8 साल से तुम्हारे मुहावरे सुनते सुनते मेरे कान पक गए और मतलब में उलझ उलझ कर मेरा दिमाग पिलपिला हो गया।
6: ओहो
7: देखो जी मुझे बहुत नींद आ रही है, अब सोने दो।
6: अरे यार, अरे अरे मेरी जीभ ही जन्मजात मुहावरों में ढली है, अब खुलकर कहना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर इस बार भी तुम्हारी गोद के हिंडोले में इंद्र के बजाय इंद्राणी झूलने लगी ना तो मेरी नाक कट जाएगी। नाक?
7: ओहो, हाँ। अब समझी, घाव मुझे लगे और दर्द तुम्हें हो। वारी जा मजनू की सच्ची प्रीत पर, वारी जा।
6: अरे तुम हमेशा मेरी बातों को मजाक में टाल देती हो, जरा जरा मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। पुत्री के लिए जवानी से बुढ़ापे तक दहेज इकट्ठा करते रहो। आज के दौर में जितना भी दहेज दो समधी समधन भाड़ जैसा मुंह फाड़ते रहते हैं।
7: अब देखो जी ये तो भाग्य की माया है, उसे हम चुनौती तो नहीं दे सकते, बल्कि ईश्वर की इच्छा के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ेगा।
6: वाह ईश्वर वाह, अरे मेहनत कोमल सिंह और आशा रानी।

0: की और मर्जी तेरी नहीं, मैं तेरी मर्जी इस बार नहीं चलने दूंगा।
1: कैसे?
2: तेरी दी हुई दो लताओं को तो मैं आंसुओं से सींच रहा हूँ, अब तीसरी लता को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा।
1: अच्छा जी, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप।
2: और नहीं तो क्या, अरे फैशन और दिखावे ने मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ दी है कमर। दहेज में रंगीन टीवी, वॉशिंग मशीन, कपड़े सीने की मशीन, अलमारी, मोटरसाइकिल, कार, 50-60 हजार नकदी। अरे वो क्या कहते हैं लैपटॉप, बर्तन, कपड़े, बिस्तर, मसहरी, सोने चांदी के गहने, सहबोज।
1: देखो जी, वो तो माँ बाप का धर्म है, करना ही पड़ता है। तुमने भले ही मेरे माँ बाप से न लेकर एक आदर्श मिसाल कायम की है,
2: फिर
1: परंतु सब तो तुम्हारे जैसे आदर्श पुरुष नहीं है।
2: अरे किसी गरीब अनाथ लड़के से अपनी पुत्री का विवाह करते समय किसी उदार पिता ने तथा रिश्तेदारों ने यह सोचकर पुत्री को घर गृहस्थी का सामान दिया होगा कि गरीब दामाद का घर बस जाएगा। बस यही अंधा रिवाज अमर बेल की तरह फैलकर अनेकानेक मध्यम परिवारों के पेड़ों को सुखा चुका है।
1: क्या मैं सो जाऊं?
3: बेटा कोमल सिंह, अरे सो गया है या जाग रहा है?
0: हाँ दादी माँ, जाग रहा हूँ। बोलो।
3: अरे याद है ना, कल डिप्टी साहब की दोनों बेटियों की शादी में वो प्रीति भोज है, जाना है या नहीं?
2: अरे याद है दादी माँ, याद है, जाना है, जाना है।
1: वो तो जाना ही पड़ेगा।
2: अरे हाँ यार, जाना ही पड़ेगा, और 201 रुपए का लिफाफा भी देना पड़ेगा। अरे लोग शादी की खुशी में परिचितों को प्रीति भोज में बुलाते हैं, फिर द्वार पर टेबल लगाकर विवाह स्थल को होटल बना देते हैं। ये अंधा रिवाज नहीं है तो क्या है?
1: निभाना तो पड़ता है।
2: कभी कभी लोगों की सोच पर मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है।
1: कैसी सोच?
2: अरे वकील घसीटा राम की पुत्री की शादी में मैंने 101 रुपए का लिफाफा भेंट किया।
1: हाँ, सो हाँ। तो दिया।
2: और मेरी बहन की शादी पर वो नहीं आए, बल्कि अपने 12 वर्षीय पुत्र द्वारा 21 रुपए भेज दिए, 21 रुपए।
1: वाह, तुमने वकील साहब की हैसियत देखकर 101 रुपए का लिफाफा भेंट में दिया
2: जी।
1: लेकिन उन्होंने तुम्हारी हैसियत देखकर 21 रुपए दिए। तुम भले ही करोड़पति की शादी में जाओ, उसकी हैसियत नहीं, अपनी हैसियत देखकर 21 रुपए ही भेंट करने का दृढ़ निश्चय कर लो।

0: क्या हो रहा है मेरे जीवन की आशा?
1: वही तीसरी बार पुराना तमाशा, आने वाले मेहमान की स्वागत की तैयारी।
0: अच्छा जी, छोटे छोटे कपड़े सिए जा रहे हैं।
2: कपड़ा क्या दादू दयाल की दुकान से लाई हो?
1: अरे नहीं जी, सीता गीता के कुछ फराके फाड़ कर छोटी कर रही हूँ।
0: अरे तुम्हें क्या पता कि भौंरा आएगा या तितली?
1: ये तो कोई नहीं बता सकता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, आंधी या तूफान, शैतान या भगवान, निर्बल या बलवान।
0: गलत सोच रही हो, अरे ये कलियुग है कलियुग। विज्ञान दिन प्रतिदिन नूतन हैरत में डाल देने वाले चमत्कार दिखा रहा है।
1: हाँ।

0: अंधेरों में छुपे उजालों को और उजालों के पीछे छाए अंधेरों को अलग अलग करता जा रहा है।
1: हाँ हाँ जी, ये तो मैं भी जानती हूँ।
0: अरे क्या खाक जानती हो? तुम कुछ नहीं जानती, और अगर जानती हो तो बताओ तुम्हारे गर्भ में निगेटिव है या पॉजिटिव।
1: वाह जी वाह, मैं क्या जानू?
0: यही जानने के लिए मैं तुम्हें डॉक्टर की डिस्पेंसरी में ले जाऊंगा। कल सुबह किचन का काम जरा जल्दी निपटा लेना। घबराओ नहीं, वहाँ मशीन द्वारा जांच होगी कि पुतली घर में पुतली की स्थापना हुई है या पुतले की।
1: माना अगर पुतली हुई तो क्या करेंगे?
0: पुतली हुई तो देश निकाली की कार्रवाई की जाएगी, और अगर पुतला हुआ ना तो ढोल धमाके से जश्न मनाया जाएगा। जश्न? हाँ, एडवांस में मावे के लड्डू पूरी कॉलोनी में बटवाऊंगा।
1: ओहो हाँ। बड़े आए मावे के लड्डू बांटने वाले, क्या बीमार करोगे सबको? मेरी मानो मोती चूर के लड्डू बांटना।
0: अब भला मावे के लड्डू क्यों नहीं?
1: क्यों जी, अखबार नहीं पढ़ते? मावे के रूप में शैम्पू और ना जाने कौन कौन से केमिकल पकड़ा जा रहा है।
0: तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं मोती राम हलवाई की दुकान से मोती चूर के लड्डू लाऊंगा। और कोई आदेश?
1: श्रीमान को धन्यवाद, असंख्य धन्यवाद।
0: रूखा सूखा धन्यवाद मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा।
1: तो क्या चाय बना कर लाऊं?
0: बस चाय पर टाल देती हो? अरे चाय से बढ़कर स्वादिष्ट किसी चीज की चाह होती है। मेरे पास आओ।
1: भला क्यों?
0: अरे किसी शायर ने क्या खूब कहा है।
1: क्या खूब कहा है?
0: सुनो।
1: हाँ
0: हाँ। आजा आजा कि तुझको पास बिठा के गजल कहूँ। आजा कि तुझको पास बिठा के गजल कहूँ, पहलू में फूल खिला के गजल कहूँ। तेरी तेरी हर एक सांस है सरगम ए दिलरुबा, सांसों में अपनी सांस मिला के गजल कहूँ। मेरा मतलब समझ गई ना?
1: नहीं समझी।
0: हद हो गई, पढ़ी फारसी बेचा तेल। अरे क्या तुमने नकल कर करके बीए पास की है?
1: और आपने?
0: हमने बीए, फिर बीवी, फिर एमए, फिर
1: आज हाय मैं मर गई, मेरी कलाई टूट जाएगी ना।
0: सुनो तो,
1: छोड़ मेरा हाथ, ये जबरन की जोरा जोरी हमें अच्छी नहीं लगती, छोड़ो ना।
0: अरे बस रास्ते में दो नाली बंदूक यानी नाक फुला ली, लो छोड़ दिया। बंदा जा रहा है नूरुद्दीन भोपाली के घर।
1: कौन है ये नूरुद्दीन भोपाली?
0: अरे हमारी कंपनी का नया अकाउंटेंट।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छा।
0: दो माह पहले तबादला होके यहाँ आया है, बहुत प्यारा शायर है। बार बार कहता है घर आओ यार घर आओ। लो मैं चला, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम नूर भोपाली साहब।
1: अरे क्या बात है, अरे वाह वाह वाह खा साहब, अरे कोमल बाबू। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे कोमल बाबू दुनिया नूर भोपाली के गुलाम, और कोमल बाबू आए नूर के घर, आइए तो उनकी मोहब्बत है।
0: बिल्कुल।

0: कहाँ से आ रही हो?
1: अरे जनाब सीधा घर से आ रहा हूँ।
0: और कहाँ को जा रही हो?
1: अरे आपसे मिलने ही आया हूँ नूर साहब।
0: अच्छा अच्छा।
1: सोचा आज इतवार है, क्यों नहीं नूर साहब के दर्शन करके आँखों को पुर नूर किया जाए।
0: आपका कोमल सुंदर चेहरा देख के अब कुछ कहने को जी चाह रही है।
1: अरे फरमाइए फरमाइए।
0: जरा गौर से सुनो।
1: जी इरशाद।
0: पुर नूर तेरा चेहरा, पुर नूर सरा पाटू।
1: क्या बात है।
0: तेरे तबस्सुम से पुर नूर मेरा गुलशन।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: खुशीदे वफा कह दू या माहे लका कह दू, है तेरे तरन्नुम से पुर नूर मेरा आंगन।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जनाब क्या भरपूर कल्पना है।
0: शुक्रिया शुक्रिया मां खान शुक्रिया। तो आप सीधे घर से आ रही हो और कब जाओगे?
1: अरे बस नूर के दीदार कर लिए हैं, अब चलें।
0: अरे वाह, ऐसे कैसे जाओगे? कुछ देर भेजो। अरे टूटी कुर्सी लाना।
1: कमाल है, टूटी कुर्सी। रहने दीजिए नूर साहब, रहने दीजिए, मैं नीचे ही बैठ जाऊंगा।
0: अरे अरे वाह, आप तो हमारे मेहमान हैं, नीचे जमीन पर नहीं बैठने दूंगा। जरा ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, दरी मंगवाता हूँ। अरे सुनो, ये कोमल बाबू हमारी कंपनी के कैशियर आए हैं, फटी दरी ले आना फौरन से पेस्टर जल्दी।
1: अरे नूर तू भी निकला खट्टा अमचूर। अरे आप दरी बिछाने का कष्ट ना करें दरी बिछाने का। बिल्कुल साफ सुथरे चमकदार टाइल्स लगे हैं। ये लो मैं बैठ गया।
0: अब आपकी मर्जी कोमल बाबू, मैं तो कुर्सी दरी मंगवा रहा था। रहने दे दरी फटी, दरी मतला। अब आए हो कोमल बाबू तो खाना खा के।
1: अरे, अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं, औपचारिकता रहने दीजिए।
0: कोमल बाबू आप हमारे मेहमान हैं, भूखे पेट तो हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे कोई सुनती है तो सुन ले, अरे फौरन बासी रोटी ले आना कोमल बाबू के लिए।
1: अरे नूर साहब मैं घर से रोटी खाकर ही निकला हूँ।
0: थोड़ा सा कोमल बाबू, हम तो मेहमानदारी करके अपना फर्ज निभा रहे थे, अब आगे आपकी मर्जी। खा रोटी ना सही, चाय पी लो, एक कप चाय लेके आना नमकीन।
1: हद कर दी इस भोपाली शायर ने, ऐसा कंजूस मक्खी चूस मुंहपट इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप पांव बढ़ता हूँ। अच्छा हो अगर कोई और बात करें।
0: ऐसा लगता है आप डिसमूड है। चलिए चाय वाय छोड़िए, ठंडा पानी तो पिएंगे ना, प्यास बुझाइए ठंडा पानी से। अजी बहुत दूर से हाँपते काँपते आ रहे हो।
1: ठीक है।
0: अरे क्या तुम्हें सब मर गए हैं क्या? अरे एक गिलास पानी लाना। खारा
1: लगता है इसका दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। मुझे खारा पानी पिला रहा है। नूर साहब मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार एक चम्मच पानी पीता हूँ। हाँ अभी चार दिन पहले ही पिया था। अच्छा अब मैं चलूं, बाकी बातें ऑफिस में होंगी।
0: ऐसे कैसे जाने दूँगा? अपनी मर्जी से आए हो, हमारी मर्जी से जाओगे, शरबत पीकर ही जाओगे। अबे आर्या है कि नहीं? अबे लारे कड़वा शरबत ला।
1: नूर साहब हद हो गई, बंद करो मजाक, वरना मैं फूट फूट कर रो पड़ूंगा। अरे बच्चों की तरह बिलख बिलख कर।
0: अरे कोमल बाबू अब फूल की तरह हंसते रिया करो, रोटी रहोगे तो अल्लाह कसम रोटली औलाद पैदा होगी। पहली बार गरीब खाने में आए हो तो कम से कम कुछ नहीं ले रहे हो तो मेरे परिवार से परिचय तो करते जाओ। अरे कहाँ हो रहे साहब, सबके सब कहाँ मर गए? कोमल बाबू शायद घर के पिछले आंगन में हंसी खिटोली कर लिए। अब खा रुको यहीं, ठहरो मैं भी खबर लेता हूँ। अब बैठिए यहाँ, मैं अभी सबको लेकर आता हूँ।
1: पहली बार देख रहा हूँ ऐसा अजीब आदमी।
0: कोमल बाबू, ये है मेरा परिवार। हाँ, ये मेरा 14 वर्ष का बेटा कड़वा।
1: कड़वा?
0: हाँ, ये गुस्से का बहुत तेज है, हमेशा कड़वा सच बोलता है, इसलिए हमने इसका कड़वा नाम रख दिया।
1: अच्छा।
0: वैसे इसका असली नाम कमरुद्दीन है।
1: ओह।
0: ये मेरा 12 वर्ष का बेटा नसीमुद्दीन, बचपन से ही नमक चूसने की आदत पड़ गई इसे, इसलिए हम इसको नमकीन के नाम से पुकारते हैं।
1: आश्चर्य आश्चर्य।
0: अरे हाँ, अभी तो और आश्चर्य होगा। ये मेरी लाडली बेटी बासी, उम्र इसकी 10 साल की है। इसे बासी रोटी और लहसुन की चटनी बहुत पसंद थी। खा, नाम तो इसका बानो है मगर बासी कहा जाता है।
1: बहुत खूब।
0: मियां, ये मेरी 8 वर्षीय प्यारी बेटी पुतली बेगम है।
1: पुतली बेगम?
0: सीढ़ी पर से फिसल कर गिर पड़ी थी, पेशानी फट गई थी, आंखें फटी की फटी रह गई थी, बेहोश हो गई थी, मोहल्ले वाले फटी कहकर पुकारने लगे।
1: नाम बिगाड़ने में दुनिया वाले कसर नहीं रखते जनाब।
0: अरे हाँ, मेरी लाडली बेटी तसर बेगम से तो मिली है, चबूतरे पर से ऐसी आड़ी होकर गिरी कि दाहिना हाथ टूट गया। टूटी के नाम से इसकी पहचान हो गई। ये 6 साल की है।
1: बड़ा अजीब नाम है साहब, तसर। क्या मतलब है टसर का?
0: अमिया, टसर का मतलब कच्चा रेशम होता है।
1: वाह नूर साहब भोपाली, वाह, मजे आ गए।
0: अरे मियां, अपनी भाभी से तो मिलिए।
1: जी।
0: दुबली पतली कुटुंबिनार जैसी, नाम है इसका मरियम, मगर मैं इन्हें मरियल कहता हूँ।
1: मरियम को मरियल।
0: 6 बच्चों की हिम्मत वाली जननी है, लेकिन अब ब्रेक लग गया है। ए, चला चला चला, सब भाग जाओ यहाँ से। चलो भागो।
1: आपके परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
0: अरे मियाँ, मेरा 16 वर्षीय बेटा खादिम कहीं बाहर गया है, खारी चीजें खाने का बहुत शौक है मियाँ उसे, खादिम नाम पर चढ़ गया, खारा नाम। कोमल बाबू, एक शेर सुनाना।
1: जी, फरमाइए।
0: ये मेरे मासूम खिलौने, ये मेरे मासूम खिलौने, कुटिया के कंगाल, कौन बनेगा इंदिरा इसमें, कौन जवाहरलाल।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अरे, 3 बेटियों को जन्म देकर भी विश्वास है कि वे दुनिया में नाम रोशन करेंगे। अरे महंगाई के इस दौर में बच्चे पालना खिड़की में से हाथी निकालने जैसा असंभव है साहब।
0: अरे मियां, कोई नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जिसे पैदा करता है उसके नसीब का रिज़्क पहले ही धरती पर उतार देता है, हमें सिर्फ उसकी दूसरी जरूरत पूरी करने का इंतजाम करना पड़ता है। खान,
1: अच्छा,
0: एक शख्स जो दार्शनिक था
1: जी,
0: उसे 50,000 का इनाम मिल गया।
1: ठीक है।
0: वो 50,000 के बादाम पिस्ते काजू खोपरा खारक खरीद लाया।
1: अरे वाह।
0: पत्नी ने बहुत भली बुरी सुनाई, बोली तुम कितने मूर्ख हो, ये मेवा खरीद लाए, अरे इन रुपयों से 50 महीने का अनाज खरीद लाते। दार्शनिक बोला, ए बेवकूफ औरत, अनाज तो अल्लाह ने हमारी किस्मत में दिया है, वो कहीं से भी देगा,
2: मेवा तो उसने लिखा नहीं था तो वो मैं ले आया।
1: क्या बात है। अरे लड़के हो तो कोई चिंता नहीं, लड़कियों की चिंता खाए जाती है।
0: अरे कोमल बाबू, ये अपनी अपनी सोच है, आज हुनर भी लड़कियां लड़कों से आगे चल रही है। खां,
1: लड़के क्यों पीछे हैं लड़कियों से?
0: अमा खां, देखते नहीं, गली कूचों में, सड़कों पर, बाग बगीचों में, हर मुकाम पर लड़के लड़कियों के पीछे ही तो है।

0: देखिए कोमल बाबू, वैसे आज लड़कियों का घर से अकेला निकलना ठीक नहीं है, खतरा बना ही रहता है।
1: वाह वाह डॉक्टर साहब, आपके और मेरे विचार बिल्कुल एक जैसे हैं। सचमुच लड़कियों का जन्म परिवार के लिए अभिशाप ही है, बेटी का जन्म तो होना ही नहीं चाहिए। बेटी की चिंता माता पिता को निढाल कर देती है डॉक्टर साहब, निढाल, निहाल नहीं।
0: और बेटे कौन सा निहाल कर देते हैं? यहाँ मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ कोमल बाबू। बेटी की माँ के गर्भ में हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, क्रूरता है, हिंसा है, अपराध है, कानूनन जुर्म है। इसलिए सरकार ने बेटी बचाओ का देशव्यापी आंदोलन चलाया है। प्रकृति में हस्तक्षेप करने से हमें नुकसान ही होगा। बेटी आती है तो उसे आने दो, उसे उत्तम शिक्षा दो
1: जी।
0: अच्छे बुरे का फर्क बताओ।
1: आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है डॉक्टर साहब।
0: अरे कोमल बाबू, असमंजस में पड़ने का कोई कारण ही नहीं। आपने मुझे परामर्श देने को कहा तो मैंने बिना किसी संकोच के अपने विचार रखे, और डॉक्टर होने के नाते मैं आपको गर्भ में ही बेटी की हत्या की सलाह कभी नहीं दूंगा और ना ही ऐसा करने दूंगा।
1: धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: कोमल, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? इधर आ, मेरे पास आ। तू क्या पगला गया है? अरे अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गया तू?
1: अरे पहेलियाँ ना बुझाओ दादी माँ, पहेलियाँ ना बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है मुझे।
2: अरे नालायक, हट धर्मी, अभी तक तो हिमपात होते सुना और देखा है, अब ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू गर्भपात करवा रहा है?
1: अब वो ऐसा है दादी माँ, वो समय बीत गया जब घर का एक मुखिया कमाता था और 10 सदस्य खाते थे। अब 10 कमाए फिर भी गृहस्थी चलाना कठिन हो रहा है। आबादी कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ने का यही दुखदायी परिणाम है दादी माँ।
2: अरे मूर्ख, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंसानों की आबादी बढ़ने का विरोध तो मैं भी करती हूँ, मगर तू तो पुत्री के जन्म लेने का विरोध कर रहा है, और तेरे इस विरोध का विरोध मैं कर रही हूँ।
1: लेकिन लेकिन दादी माँ।
2: चुप रहना लायक, ज्यादा बातें बनाई तो जीप खींच लूंगी। तू तो किसी को जान दे नहीं सकता, तो जान लेने का क्या अधिकार है?
1: अरे दादी माँ, कलयुग में बेटी को संभालना बड़ा कठिन है, बेटी माता पिता के कांधों पर बोझ है बोझ।
2: अरे तेरी अकल की भैंस तो घास चरने गई है। अरे गया वो कठोर युग जब नारी बोझ लगती थी, उस पर अत्याचार होते थे, विधवाओं को सती होने पर मजबूर कर दिया जाता था, बाल विधवाओं को सफेद साड़ी पहनाकर उनकी तरुण भावनाओं को कुचल दिया जाता था।
1: दादी माँ हम मेरी सुनिए ना,
2: मैं क्या कर रहा है देखता नहीं? आज नारी हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। आज की बेटियाँ तो शिक्षा जगत में बहुत आगे है, कोई BSc, BA, BCom, कोई MA, MCom, MSc, अपनी चारों दिशाओं में दूर दूर तक नजर दौड़ा। अरे कितनी बेटियाँ शिक्षक, व्याख्याता, प्राचार्य, वकील, फौजी और जाने कौन कौन से उच्च पदों पर आसीन है। आज हमारी बेटियाँ क्रेन, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रेन, वायुयान तक चला रही है। क्या गलत कहा मैंने?
1: सच बिल्कुल सच कहा दादी माँ।
2: अरे हमारी भारतीय बेटियाँ तो अंतरिक्ष की सैर भी कराई है
1: जी।
2: उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी साहसपूर्ण कदम उठाए हैं। मेरे तजुर्बे की एक बात याद रख बेटा, शादी होने के बाद अधिकांश बेटे माँ बाप के त्याग, बलिदान और उपकार को भूल कर पराए हो जाते हैं। बेटियां तो पराई अमानत होती है, शादी के बाद भी पराई होने पर वो माँ बाप के प्रति समर्पित रहती है।
1: आपने मेरी आंखें खोल दी दादी माँ।
2: ले ये पत्र पढ़।
1: हा?
2: शासन ने मेरे विचारों से प्रभावित होकर मुझे बेटी बचाओ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
1: अरे वाह।
2: और हाँ, मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तूने जिस माँ की कोख से

0: जन्म लिया है वो माँ भी तो किसी सुसभ्य बाप की बेटी है ना।
1: हाँ।
0: यदि तेरी माँ का पिता अर्थात तेरा नाना तेरी नानी के गर्भ में ही तेरी माँ की हत्या करवा देता तो क्या आज दुनिया में तेरा अस्तित्व होता?
1: हाँ।
0: बोल कहाँ से आया तू? तेरा नाम कोमल सिंह नहीं कठोर सिंह होना चाहिए
2: होना चाहिए
0: होना चाहिए होना चाहिए।
1: हाँ मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था दादी माँ। सचमुच भ्रूण हत्या अपराध है। मैं ये अमानवीय अपराध कभी नहीं करूंगा दादी माँ, कभी नहीं करूंगा। और ना ही इस अपराध को किसी को भी करने दूंगा। दादी माँ मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि बेटी बचाओ आंदोलन में न सिर्फ हिस्सेदार बनूंगा बल्कि इस आंदोलन में मैं प्रमुख भूमिका निभाऊंगा दादी माँ, प्रमुख भूमिका। हाँ, लेकिन लेकिन दादी माँ ये कभी ना कहना कि
3: बोल कहां से आया तू। अभी आपने नाटक सुना, इसके लेखक थे खुर्शीद अजय, नियोजन रवि सोनी का था। भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय: कोमल सिंह आदिल कुरेशी, आशा अंजुश्री मुखर्जी, दादीमा यामिनी सोनवणे, नूर भोपाली संजीव मालवी, डॉक्टर अतिथि आदित्य सोनी। इसके निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे संजीव मालवीय।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक बोल कहां से आया तू। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश गंधर्व का वॉयलिन पर बजाया राग बिहाग।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे कैलाश गंधर्व का वॉयलिन पर बजाया राग बिहाग। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने

प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।